वंदे मातरम, सुप्रभात, नमस्कार। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूँ आप सभी का रेडियो साथी सैकत चैटर्जी। आप सभी स्वस्थ रहें, सानंद रहें, इसी मंगल कामना के साथ आपका स्वागत है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा में। आज है अंग्रेजी सन ईस्वी 2026 की सितंबर माह की 15वीं तारीख, तदनुसार शक संबत 1948 की भाद्र माह की 24वीं तिथि। अभी हमारी स्टूडियो की घड़ी में 5:58 होने को है। प्रारंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी

0: कृत्य आपराधिक कृत्य है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का संयुक्त उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल करेंगे। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढालकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है।
1: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जल विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी घरेलू बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच करीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली के यशो भूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि पार्टी की जीत झूठ की गूंज पर सच्चाई की जीत का साक्ष्य है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र मजबूत, सक्रिय और समयबद्ध है। उन्होंने न्यायपालिका में लगातार सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में कल आयोजित 6वें राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान में मुख्य भाषण देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुधार को नियमित प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वादा कर पैसे वसूले थे। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is

0: ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप इससे पहले हमारे दिल्ली केंद्र से जुड़कर सुन रहे थे हिंदी समाचार। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं खेत खलिहानों की, किसान भाइयों की। सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय है मिट्टी जांच का महत्व एवं तकनीक। आलेख एवं वाचन स्वर रेडियो साथी प्रतिमा वर्मा का है।
1: किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम खेती की बातें की आज की इस कड़ी में मिट्टी जांच महत्व एवं तकनीकी। जी हाँ किसान भाइयों, मिट्टी के रासायनिक परीक्षण के लिए पहली आवश्यक बात है खेतों से मिट्टी के सही नमूने लेना। ना केवल अलग अलग खेतों की मृदा की आपस में भिन्नता हो सकती है, बल्कि एक खेत में अलग अलग स्थानों की मृदा में भी भिन्नता हो सकती है। परीक्षण के लिए खेत में मृदा का नमूना सही होना चाहिए। किसान भाइयों, मृदा का गलत नमूना होने से परिणाम भी गलत मिलेंगे। खेत की उर्वरा शक्ति की जानकारी के लिए ध्यान योग्य बात यह है कि परीक्षण के लिए मिट्टी का जो नमूना लिया गया है वह आपके खेत के हर हिस्से का प्रतिनिधित्व करता हो। रासायनिक परीक्षण के लिए मिट्टी के नमूने एकत्रित करने के मुख्य तीन उद्देश्य हैं। पहला तो फसलों में रासायनिक खादों के प्रयोग की सही मात्रा निर्धारित करने के लिए। दूसरा, ऊसर और आम्लिक भूमि के सुधार और उसे उपजाऊ बनाने का सही ढंग जानने के लिए। और तीसरी जरूरी बात वो ये कि बाग और पेड़ लगाने हेतु भूमि की अनुकूलता तय करने के लिए। मिट्टी का सही नमूना लेने की विधि के बारे में जो तकनीकी बातें हैं हम आपको बता दें। सबसे पहले तो आप रासायनिक खादों के प्रयोग के लिए नमूना लें। जो भाग देखने में मृदा की किस्म और फसलों के आधार पर जल निकास और फसलों की उपज के दृष्टिकोण से भिन्न हो उस प्रत्येक भाग की निशानदेही लगाएं और प्रत्येक भाग को खेत माने। दूसरी बात, नमूना लेने के औजार जैसे कि मृदा का सफल नमूना लेने के लिए मृदा परीक्षण ट्यूब यानी सॉयल ट्यूब, बर्मा फावड़ा और खुरपी का प्रयोग किया जा सकता है। नमूना एकत्रित करने की विधि भी हम आपको बता दें किसान भाइयों। सबसे पहले तो मृदा के ऊपर की घास फूस आप साफ कर लें। यदि आपको फावड़े या खुरपे का प्रयोग करना हो तो वी आकार का 15 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा बनाएं। अब एक ओर से ऊपर से नीचे तक 10 से 12 अलग अलग स्थानों जैसे बेतरतीब ठिकानों से मृदा की टुकड़ियां ले लें और उन पर सबको एक भगोने या साफ कपड़े में इकट्ठा करें। अगर खड़ी फसल से नमूना लेना हो तो मृदा का नमूना पौधों की कतारों के बीच खाली जगह से लें। जब खेत में क्यारियां बना दी गई हों या कतारों में खाद डाल दी गई हो तो मृदा का नमूना लेने के लिए विशेष सावधानी रखें। एक बात और किसान भाइयों, रासायनिक खाद की पट्टी वाली जगह से नमूना ना लें। जिन स्थानों पर पुरानी बाड़ सड़क हो और जहां गोबर खाद डाली गई हो वहां से मृदा का नमूना ना लें। एक खेत में भिन्न भिन्न स्थानों से तसले या कपड़े में इकट्ठे किए हुए नमूने को सुखा लें। एक खेत से एकत्रित की हुई मृदा को अच्छी तरह मिलाकर एक नमूना बनाएं और उसमें से लगभग आधा किलो मृदा का नमूना लें जो समूचे खेत का प्रतिनिधित्व करता हो। उसके बाद जो जरूरी बात है वो है लेबल लगाना। हर नमूने के साथ नाम, पता और खेत का नंबर का लेबल लगाएं। अपने रिकॉर्ड के लिए भी उसकी एक नकल रख लें। दो लेबल तैयार करें, एक थैली के अंदर डालने के लिए और दूसरा बाहर लगाने के लिए। लेबल पर कभी भी स्याही से ना लिखें, हमेशा बॉल पेन या कॉपिंग पेंसिल से लिखें। सूचना पर्चा भरना भी जरूरी है किसान भाइयों। खेत और खेत की फसलों का पूरा ब्यौरा आप सूचना पर्चा में लिखें। यह सूचना आपकी मृदा की रिपोर्ट और सिफारिश को अधिक लाभकारी बनाने में सहायक होगी। सूचना पर्चा कृषि विभाग के अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है। मृदा के नमूने के साथ सूचना पर्चा में कुछ बातों की जानकारी अवश्य दें, जैसे कि खेत का नंबर का नाम, अपना पता, नमूने का प्रयोग, बीज वाली फसल या और दूसरी किस्म हो, मृदा का स्थानीय नाम, भूमि की किस्म, सिंचाई वाली है या बारानी है, सिंचाई का साधन, प्राकृतिक निकास और भूमि के नीचे पानी की गहराई, भूमि का ढलान, फसलों की अदल बदल, खादों या रसायनों का ब्यौरा जिसका प्रयोग किया गया हो, कोई और समस्या जो भूमि से संबंधित हो। इसके बाद जो जरूरी बात है वो है नमूने बांधना। हर नमूने को एक साथ कपड़े की थैली में डालें। ऐसी थैलियों में नमूने न डालें जो पहले खाद आदि के लिए प्रयोग में लाई जा चुकी हो या किसी और कारण से खराब हो। एक लेबल थैली के अंदर भी डालें। थैली अंदर से बंद करके उसके बाहर भी एक लेबल लगा दें। 3 या 5 साल के अंतराल पर अपनी भूमि की मिट्टी का परीक्षण एक बार जरूर करवा लें। एक पूरी फसल चक्र के बाद मृदा का परीक्षण हो जाना अच्छा है। वर्ष में जब भी भूमि की स्थिति नमूने लेने योग्य हो नमूने अवश्य एकत्रित कर लेना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि मृदा का परीक्षण केवल फसल बोने के समय करवाया जाए। किसान भाइयों, इसके साथ ही हमें कार्यक्रम खेती की बातों से अनुमति दीजिए। नमस्कार
0: दोस्तों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। विषय था मिट्टी जांच का महत्व एवं तकनीक। आलेख एवं वाचन स्वर रेडियो साथी प्रतिमा वर्मा का था। आइए दोस्तों, अब आध्यात्मिक कार्यक्रमों से जुड़ते हुए हम सुनते हैं रामचरित मानस गान की कड़ी संख्या 268।
2: एपिसोड नंबर 268, 268।

सुग्रीव को बालीवत के अपने निश्चय का आश्वासन देते हुए श्री राम ने सच्चे मित्र के लक्षण बताए। जेन मित्र दुख हुई दुखारी, तिनही बिलोकत पातक भारी। मित्र का धर्म है कि वो मित्र को बुरे मार्ग से विमुख कर अच्छे मार्ग पर ले जाए, अपनी सामर्थ्य भर सदैव मित्र के हित के लिए कार्य करे और विपत्ति के समय 100 गुना अधिक स्नेह करे। जो सामने तो ठुकुर सुहाती करता है, कोमल प्रिय वचन बोलता है और पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसे व्यक्ति का त्याग करना ही श्रेयस्कर है। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुलटा स्त्री और कपटी मित्र, ये शूल के समान पीड़ा देने वाले होते हैं। श्री राम के श्रीमुख से मित्र और कुमित्र के लक्षण सुनकर सुग्रीव के मन में वैराग्य का संचार हुआ और उन्होंने सब कुछ त्याग कर आजीवन श्रीराम का सेवक होकर रहने की कामना प्रकट की।

दोस्तों आपने सुना रामचरितमानस गान की कड़ी संख्या 268। आइए अब जुड़ते हैं चिंतन से और सुनते हैं सतत प्रयास ही सफलता की कुंजी। आलेख एवं वाचन स्वर रेडियो साथी निर्मला तिवारी का है।

बौद्धिक क्षमता में वृद्धि की चाहत तो सभी रखते हैं, खास तौर पर विद्यार्थी। उनमें कुछ विशेष ललक होती है। ज्यादातर विद्यार्थी किसी ऐसे नुस्खे, ऐसी तकनीकों की तलाश में रहते हैं जो उनकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा दे। यही सत्य जिंदगी के दूसरे दायरों में नजर आता है। बुद्धिमान हर कहीं बाजी मार ले जाते हैं, जबकि बुद्धिहीन विवशता में हाथ मलते रह जाते हैं। जबकि स्थिति यह होती है कि बुद्धि की क्षमता हम स्वयं बढ़ा सकते हैं। हम निरंतर प्रयास करें, लगातार प्रयास करें, मेहनत करें तो बुद्धि बढ़ती जाती है। जब हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो फिर सफलता कैसे मिलेगी? भारतीय विद्याओं के परम विद्वान डॉक्टर गोपीनाथ कविराज के विचार इस संदर्भ में बहुत ही माननीय हैं। जिन्हें भी भारतीय संस्कृति, दर्शन, आध्यात्म विद्या में रुचि है, उनके लिए गोपीनाथ कविराज का नाम अपरिचित नहीं है। कविराज जी महान विद्वान होने के साथ साथ अनुभवी साधक भी थे और चिंतक भी। उन दिनों जब वे प्रोफेसर थे, उनसे एक छात्र मिला। वो बहुत ही दुखी था, निराश, हताश था। कविराज जी ने उसे बड़े स्नेह के साथ घर आकर मिलने के लिए कहा। स्नेह पाकर उस छात्र के मन में कुछ आशा बंधी और वह उनके घर मिलने चला गया। प्रणाम करने के साथ उसने अपनी व्यथा सुनाई। उसकी परेशानी यह थी कि नियमित उपस्थिति के बावजूद उसे पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु समझ में नहीं आती है। जिंदगी के अन्य क्षेत्रों में भी वह अपनी बौद्धिक क्षमता के अभाव के कारण बहुत ही पीछे था, त्रस्त था। अपनी इसी असफलता के कारण वह एक दो बार आत्महत्या का प्रयास भी कर चुका था। उसकी इस मनोदशा से द्रवित होकर गोपीनाथ जी ने कहा कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। निर्बुद्धि कालिदास को परम बुद्धिमान कवि बना देने वाली जगत माता तुम्हें भी बुद्धि अवश्य देंगी। बस इसके लिए तुम्हें कुछ प्रयास करने होंगे। कविराज के इन शब्दों को सुनकर उस छात्र के अंदर आशा और उत्साह का संचार हो गया। पंडित गोपीनाथ जी से उसने कहा, बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए पहला उपाय क्या है? उन्होंने कहा, स्थिरता। ध्यान रहे, हमारी चंचल वृत्तियां ही हमारे बौद्धिक विकास को रोक देती हैं। इस अवरोध को हटाने के लिए आवश्यक है कि तुम धीरे धीरे ही सही क्रमिक रूप से निरंतर 3-4 घंटे बैठकर पढ़ने का अभ्यास करो। शरीर के स्थिर होने पर मन भी स्थिर हो जाएगा, साथ ही बुद्धि भी विकसित होगी। और इसी क्रम में दूसरा बिंदु है एकाग्रता। इसके लिए जरूरी है अपने अध्ययन विषय पर एकाग्र बन जाओ। न समझ आने के बावजूद भी उसे पूरी एकाग्रता के साथ समझने की कोशिश करो। निरंतर एकाग्रता का अभ्यास तुम्हारी समझ को विकसित करेगा। और इसी के साथ है जिज्ञासा, यानी जानने समझने की जागरूकता। तुम्हारे अंदर जिज्ञासा होगी तो पढ़ने की लालसा बढ़ेगी, तुम अधिक जानना चाहोगे। और इसी के साथ ही आवश्यक है बुद्धिमानों की संगति। तुम्हारी संगति जैसी होगी तुम ऐसे ही बन जाते हो, इसलिए अच्छे लोगों की, बुद्धिमान लोगों की संगति रखो तो तुम्हारे विचार भी उन्हीं के समान हो जाएंगे। और इसी के साथ है निराशा को हटा देना, आशावादी बन जाना। तुम आशावादी बनोगे तो तुम्हारे बुद्धि का विकास हो ही जाएगा। इसलिए निरंतर प्रयास करो, एकाग्र हो, आशावान बनो, अच्छे लोगों की संगति करो। ऐसा करने से बुद्धि विकास होगा। वह छात्र बहुत ही खुश हुआ और उसने ऐसा ही किया। आगे चलकर उसे हर क्षेत्र में सफलता मिली। कहने का तात्पर्य है कि बुद्धि के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बुद्धि विकास के लिए आवश्यकता है एकाग्रता की, प्रयास की और सतत प्रयास की। ऐसा करने से हम आगे बढ़ जाते हैं और हमारी बुद्धि का विकास होता है। इसलिए जो भी कार्य आप करें उस पर एकाग्र हो जाएं। लेकिन आज के समय में चिंता की यह बात है कि लोग एकाग्र नहीं हो पाते हैं, मन चंचल रहता है, वो जल्दी से जल्दी सफलता पाना चाहते हैं, इसलिए छोटा रास्ता अपना लेते हैं और इसी में उन्हें बार बार

सफलता भी मिलती है। इसलिए सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है, स्थिरता की आवश्यकता है। स्थिर रहिए, आगे बढ़िए, आपकी बुद्धि का विकास होगा।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे चिंतन सतत प्रयासी सफलता की कुंजी। आलेख एवं वाचन स्वर रेडियो साथी निर्मला तिवारी का था। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम आराधना। आज आराधना के हमारे कलाकार हैं हरिओम।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम आराधना। आज आराधना के कलाकार थे हरिओम शरण। आइए दोस्तों अब जुड़ते हैं स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम से और सुनते हैं भेड़वार्ता बढ़ती उम्र में बहरापन। भेड़वार्ताकार हैं डॉक्टर अभिषेक पॉल मिंज।
1: सभी श्रोताओं को संजय मिश्रा का नमस्कार। श्रोताओं इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे बढ़ती उम्र में बहरेपन की समस्या क्या है। आजकल ये आम समस्या देखने को मिल रही है कि उम्र के बढ़ते के साथ समस्याएं तो बहुत सारी होने लगती हैं लेकिन कम सुनाई देना एक आम समस्या होती बनती जा रही है। और इसके लिए हम बता दें आपको कि पूरे विश्व के लोगों ने 25 सितंबर को इस बार बहरापन दिवस मनाने का फैसला किया है। हालांकि ये सितंबर के 25 सितंबर को मनाया जाएगा जो आखिरी रविवार को मनाया जाता है। इस बार 25 सितंबर को मनाना है और इसमें सिर्फ ये कहना है कि आपको इतना जागरूक कर दिया जाए कि बहरापन की समस्या से आप इतने जानकार हो जाएं कि ये समस्या से आप दूर रह सकें। बहरापन की समस्या क्या है, इस समस्या क्यों होती है, कैसे इससे हम बच के रहें, कैसे इसे निजात पाएँ, ढेर सारी बातें हैं जो आप जानना चाहते होंगे। और इस कार्यक्रम में जवाब देने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं पलामू मेडिकल कॉलेज के विभागाध्यक्ष एवं नाक कान गला विभाग के अध्यक्ष और प्रोफेसर डॉक्टर अभिनव पॉल मिंज। डॉक्टर साहब हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब, ये क्या समस्या है कि उम्र के बढ़ते के साथ कम सुनाई देना शुरू हो जाता है लोगों को?
2: बढ़ती उम्र के साथ हमने देखा है कि जैसे आँख की रोशनी कम होती है वही सुनाई की क्षमता भी कम हो जाती है। तो ये क्षमता जो होता है आजकल ज़्यादा पाया जा रहा है क्योंकि क्रोनिक यूज़ बहुत कुछ लोगों को देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। इवन बुजुर्ग लोग भी रेगुलर बेसिस पे 1 घंटा से ज़्यादा पर प्रतिदिन कान में लगा के मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल या तो गाने सुनने के लिए या बातचीत करने के लिए करते हैं। दूसरा बड़ा कारण ये है कि कोई भी क्रोनिक डिजीज़ जैसे डायबिटीज़ हो या ब्लड प्रेशर या शुगर हो, दोनों कंडीशन में कान की नस और इवन आँखों की रोशनी सूखती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी मरीज़ को बहुत बढ़ते उम्र के साथ अगर वो डायबिटिक है या अगर पता नहीं भी है डायबिटीज़ है, अगर सुनने की क्षमता में कमी हो रही है तो वो अपना सुनने की क्षमता के अलावा अपने ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर का जाँच अवश्य कराएँ। इस बहरापन जो होता है समाज के लिए बहुत एक बोझ का की तरह हो जाती है क्योंकि माना जाता है जैसे आदमी बूढ़े होते हैं तो वो फिर एक बच्चा की तरह रूप में हो जाता है। अगर वो नहीं सुन रहा है तो आप उनसे जितने भी बात करेंगे वो नहीं रिप्लाई कर पाएंगे, तो मेंटली डिस्टर्ब होने का चांसेस या डिप्रेशन पर शिकार होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है।
1: हमने डॉक्टर साहब क्रोनिक बीमारी की जो बात हुई कि क्रोनिक बीमारी अगर है तो या फिर जैसे ज़्यादातर मोबाइल या तेज़ आवाज़ में कुछ लंबे समय तक सुनने की आदत, तो ये बहरापन की एक समस्या का कारण बन सकता है। ये मुख्य कारण है कि इसके अलावा भी और कई कारण हो सकते हैं? इसके
2: अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। जैसे आप नॉर्मली जो मेडिसिन्स होते हैं, बहुत सारे दवाई होते हैं जो ब्लड प्रेशर में चलाए जाते हैं, मलेरिया में चलाए जाते हैं, ये हम लोग कहते हैं ऑटो टॉक्सिक ड्रग। ऑटो मतलब कान के लिए टॉक्सिक रहते हैं। ये पुराने ज़माने में आपने सुना होगा जेंटामाइसिन जैसा हुआ, एंटी मलेरियल्स कुछ हुआ, तो ये सब ड्रग्स यूजुअली नॉर्डेज हम लोग अवॉइड करते हैं। इवन सर्टन हाइपरटेंसिव ड्रग जो ब्लड प्रेशर में यूज़ किए जाते हैं, ये क्रोनिक यूज़ से कुछ लोगों में देखा गया है कि ये बहरापन का बढ़ाते हैं। तो ये आपको जानना पड़ेगा अगर कोई दवाई खाने के कारण आपको ब्लड, जब से दवाई खा रहे हैं कुछ दिन के बाद से आपको सुनने में क्षमता कमी हो रही है तो वो आपको दिखाना पड़ेगा।
1: बहरे व्यक्ति की अपनी आदतों की वजह से भी बहरापन हो सकता है?
2: हाँ, बहरे व्यक्ति की अपनी आदतों की वजह से, अब अगर वो बहुत ज़्यादा, ये तो नॉर्मली मिडिल एज में दिखता है जो मोबाइल का योग या ईयरफोन का प्रयोग लगभग 1 घंटा से ऊपर हर दिन करते हैं, जैसे आजकल कॉरपोरेट्स ऑफिस हो गया इसमें, तो ये समस्या है, उसमें कान में सनसनाहट के साथ साथ बहरापन पाया जाता है। बुजुर्ग में भी अगर देखते, कुछ लोगों को है कि टीवी के सामने बैठ के टीवी हाई वॉल्यूम में देखते हैं या रेडियो के सामने रहते हैं, तो ये अगर कंटिन्यूस यूज़ है, एक्सपोजर ऑफ लाउड नॉइज़ है तो ये हम लोग बोलते हैं अकोस्टिक ट्रामा, कि आवाज़ के चलते जो ट्रामा हो रहा है जिसके कारण नस सूख रही है, तो ये पाया जाता है।
1: डॉक्टर अभिनव जी, जैसे एक ये समस्या आम लोगों को देखते हैं कि कान में किसी तिल्ली से या बर्ड से या किसी चीज़ से कान में लगा करके उसको खुजाते रहते हैं, तो ये समस्या के आगे चल के बहरेपन की ओर ले जा सकती है?
2: नहीं, कान खुजली करना एक कॉमन समस्या है, नॉर्मली जो रहता है अगर मॉइस्ट इन्वायरमेंट रहेगा, कान में मॉइस्चर ज्यादा रहेगा या फंगस ग्रोथ होगा, तब उसमें खुजली करते हैं, या जिसको टेंडेंसी रहता है शरीर में कहीं भी खुजली करने, खुजली करने से सीक या तिनका से जो भी खुजली करते उसमें दिक्कत कान के नस का नहीं होता है, डैमेज हो सकता है कान का पर्दा, उससे भी सुनने में क्षमता लगभग 40 डेसिबल का हो सकता है, तो उससे नस की कमजोरी नहीं होगी, लेकिन पर्दा डैमेज होने का चांसेस होता है, पर्दा डैमेज अगर होगा उसमें भी सुनाई की क्षमता कम होगी। हमारे पास जो बुजुर्ग लोगों में हम लोग बोलते हैं जो एज रिलेटेड हियरिंग लॉस है उसे प्रेस बाइक्यूसिस बोला जाता है, तो उसका मतलब उम्र के साथ साथ नस कमजोर होना। लेकिन और कारण बहरापन का हो सकता है, कान का पर्दा डैमेज होना, कान की छोटी छोटी हड्डियाँ उनका डिस्प्लेसमेंट होना, कान के हड्डी का फ्रैक्चर या लॉयड नॉइस एक्सपोजर, बॉम्ब ब्लास्ट इंजरी हो गया या कुछ ज़्यादा आवाज़ का एक्सपोजर, ये सभी कारण हैं। लेकिन नॉर्मली बुजुर्गों में एज रिलेटेड हियरिंग लॉस या प्रेसबाइक्यूसिस बोलते हैं, जो उम्र के साथ साथ नस सूखने का बीमारी है।
1: किसी तरह की चोट चपेट दुर्घटना भी इसका कारण बन सकता है क्या?
2: किसी की तरह की चोट नॉर्मली देखा जाता है कि हेड इंजरीज जितने होते हैं, अगर ब्रेन में इंजरी है, कान के पास इंजरी है, कान में खून आया है, कान का हड्डी का फ्रैक्चर है, तो ये आपको एसोसिएटेड हो सकता है हियरिंग लॉस से। दूसरा कारण है जो रिकरेंट, अगर रेगुलरली कान बह रहा है, किसी का कान में पानी या पीप रेगुलर बेसिस पे आ रहा है, तब भी वो सुनने का क्षमता कमी होती है।
1: डॉक्टर साहब, जैसे परेशानी बीमारी किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, लेकिन ये बहरापन की जो समस्या है, इसमें कोई खास उम्र या खास वर्ग के लोगों में समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, या ये समस्या बच्चों में भी कहीं देखने को मिलती है, किसी महिला हो पुरुष हो, तो ऐसे कुछ अलग कर सकते हैं कि या सभी के साथ ये समस्या हो सकती
2: है? देखिए, ये समस्या जो है किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन हम लोग देखते हैं नॉर्मली जो है जो बच्चों में ज़्यादातर पाए जाते हैं वो कंजेनाइटल डेफनेस होता है। उसका भी बहुत सारा कारण है, अगर माँ प्रेग्नेंट ही अपनी प्रेगनेंसी के समय कुछ ऐसा दवाई खा ली होगी जिसके कारण डेवलपमेंट बच्चा का डेवलपमेंट या डेवलपमेंट में दिक्कत हुआ होगा, वो कारण हो सकता है, या मलेरिया होगा, कुछ दवाई चला होगा, तो ये एक कारण। दूसरा है कंजेनाइटल कोई एनोमली हुआ या कंजेनाइटल कोई सिंड्रोमिक चाइल्ड हुआ, कुछ बच्चों को देखते हैं मंद बुद्धि होता है, उसका अगर कुछ सिंड्रोम का पार्ट हो गया कि ठीक है उसको साथ साथ हियरिंग लॉस भी है, तो ये बच्चों में पाया जाता है। बच्चों में ज़्यादातर कान दर्द के साथ, अगर स्कूल में बच्चा बैठा हुआ है सुनाई नहीं दे रहा, उसका कान बार बार दर्द देता है, तो कान का पर्दा फूला रहता है, उस केसेस में भी उसको सुनने का क्षमता कम रहेगा। नॉर्मली इस ये जो डिफरेंस होता है बुजुर्गों में ज़्यादा पाया जाता है, जो हियरिंग एड मशीन्स लगा के यूज़ कर सके उसको इम्प्रूव कर किया जा सकता है, उसके लाइफस्टाइल को, डे टू डे एक्टिविटी को, लेकिन बच्चों में ज़्यादातर या तो चोट लगने से, या तो कान का मैल जमने से, या कंजेनाइटल कुछ बीमारी होगा उससे सुनने का क्षमता कम होगा।
1: डॉक्टर साहब, चूँकि उम्र बढ़ने के बाद ये समस्या आम हो गई है, लेकिन कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि बच्चों में ये समस्या शुरू हो जाती है, तो उन बच्चों में तो ये उम्मीद नहीं की जाती है कि उन्हें क्रोनिक कोई बीमारी होगी, या फिर कोई चोट चपेट होगी, या फिर ज़्यादा मोबाइल यूज़ इस तरह का, तो ये समस्या कोई बीमारी के रूप में उत्पन्न होती है उनमें?
2: ये मोस्ट कॉमन कॉज बच्चों में जो डेफनेस है या हियरिंग लॉस का, या सुनाई का क्षमता कम होना, ये कान का मैल है सबसे कॉमन, वही पाया जाता है। बच्चों में मैल होने से उनकी सुनाई की क्षमता कम हो जाती है, वो क्लास में अटेंशन नहीं दे पाते हैं, टीचर आपको पता नहीं चलेगा गार्जियन को, लेकिन टीचर का कहना होगा कि ये सुनता नहीं है।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे स्वास्थ्य वार्ता, आइए अब जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से और बारी बारी से सुनते हैं संस्कृत, अंग्रेजी व हिंदी समाचार। कृपया कुछ पल प्रति

0: प्रतिपादितं यत् राज्यस्य प्रज्ञावता जनसमूहेन पुनरेकवारं स्पष्टीकृतं यत्ते द्वियन्त्रसर्वकारस्य नेतृत्वे सञ्चालितानाम् अभ्युदयसुशासननीतीनां पूर्णं समर्थनं कुर्वन्ति। जाल अपराध संशये बैंक इत्येतैः अद्य प्रभृति सम्पूर्ण कोष स्थगनस्य स्थाने केवलं विवादित धनांशस्य एव स्थगनं विधास्यते। सहस्ररूप्यकाणाम् अथवा तदधिकस्य संदिग्ध व्यवहाराणां प्रकरणे कृत्रिम बुद्धिमाध्यमेन निरीक्षणं भविष्यति। एषः नियमः 27-2000 अप्रैल मासस्य प्रथमदिनाङ्कात् प्रभावी भविष्यति। परीक्षा पारदर्शितां रक्षितुं झारखंड सीआईडी आरक्षिभिः द्वौ अभियुक्तौ निगृहीतौ। सीआईडी विभागेन प्रतिपादितं यत् धनं गृहीत्वा परीक्षा सफलतायाः मिथ्या प्रतिश्रुतिं यच्छन् संजीत कुमारः निगडितः। अपरञ्च जेएसएससी सीजीएल परीक्षा प्रकरणे पश्चिम बंगालात् अभियुक्तः दिलीप पासवानः न्यायिक अभिरक्षायां प्रेषितः। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशेन सूर्यकान्तेन न्यायाधीशानां विरुद्धं परिवादानां निवारणाय सर्वोच्च न्यायालयेन उच्च न्यायालयैश्च विकसिता व्यवस्था सुदृढा अतीव प्रत्युत्तरशीला समयोचिता च वर्णिता। अनेनैव तेन न्यायपालिकायां निरन्तर परिष्कारस्य अधिक पारदर्शकतायाश्च आवश्यकतायां बलं प्रदत्तम्। ह्यः नवदिल्ल्यां प्रत्यक्ष न्यायप्रदानं न्यायव्यवस्थायाः स्तम्भरूपेण पारदर्शिता जनविश्वासश्च इति विषयमाधृत्य आयोजिते 6ष्ठे रामजेठमलानी स्मृति व्याख्याने मुख्य भाषणं कुर्वन् मुख्य न्यायाधीशः अवोचत् यत् परिष्कारः एव शाश्वत नियमो भवेत्। समुद्र सुरक्षां प्रति संशयमुत्पादयन् अमेरिका ईरान देशयोः प्रत्यग्रह विवादः समुद्भूतः। ईरानीय सैन्यदलेन आख्यातं यत् तैलपोतः सुरक्षा सीमाम् अतिक्रम्य जलसुरंगेन विस्फुटः। परम् अमेरिका देशस्य मध्य कमाण्ड विभागेन अस्य खण्डनं कुर्वता प्रतिपादितं यत् ईरानीय ड्रोन इत्यनेन एव अस्य पोतस्य उपरि आक्रमणं विहितम्। नेपालस्य विद्युत् संकटम् अपाकर्तुं भारत सर्वकारः अग्रे आगतः। भारतेन दिसम्बर मासस्य 31 दिनाङ्कं यावत् प्रतिदिनं विद्युत् निर्यातम् अन्वमोदी। नेपाले आप्लावेन जलविद्युत् परियोजनाः विनष्टाः सञ्जाताः। प्रकृतिकोपस्य संकेतं ददत् भारतीय ऋतुविज्ञान विभागः प्रत्यपादयत् यत् अद्य दिल्ली हरियाणा असम प्रभृति राज्येषु अतिवृष्टिः भविष्यति। विभागेन अनेन प्रतिपादितं यत् दक्षिण भारते अपि अतिवृष्टिः भविष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सरकार ने कहा है कि बैंक ₹2000 तक के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई लेन देन और रूपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेन देन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। ये नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होगा। मंत्रालय ने कहा है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले यूपीआई लेन देन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी भी डिजिटल लेन देन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वे केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। हालांकि ये शुल्क भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेन देन पर लागू MDR से काफी कम होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने भारत

0: की अध्यक्षता में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल बताया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। एटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया है कि मुजफ्फरपुर ढालकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टकनपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है।
1: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जल विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी घरेलू बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच करीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे सम्मेलन का संयुक्त उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल करेंगे। सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। इसमें 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के अंतर्गत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशो भूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। यह वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वायदा कर पैसे वसूले थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए दोस्तों आगे जानते हैं प्रातकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। इससे पहले आप हमारे दिल्ली केंद्र से जुड़कर सुन रहे थे समाचारों को। दोस्तों अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 7:15 पर हम जुड़ेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग से। हम सुनेंगे के एस गोपाल कृष्णन द्वारा प्रस्तुत बांसुरी वादन। इसके बाद दोस्तों सुबह 7:45 पर हम जुड़ेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम से और स्वर सरिता के तहत सुनेंगे स्वाति नाटेकर से कुछ सुगम संगीत। इसके बाद दोस्तों 8 का समय होगा दिल्ली केंद्र से

जुड़कर समाचार प्रभात सुनने का, जबकि 8:15 पे सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज, 8:30 पे रांची केंद्र से जुड़कर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 8:45 पर वापस आएंगे आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र में एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर और सुनेंगे पुराने फिल्म गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। सुबह 9:00 का समय होगा जोहार पलामू से जुड़ने का और उसके बाद 9:30 पे हम सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का भाग 1372। दोस्तों 10:10 का समय होगा विविध भारती से जुड़कर सेहतनामा सुनने का, लेकिन उससे पहले 10:00 हम जुड़ेंगे दिल्ली केंद्र से और सुनेंगे समाचार। उसके बाद दोस्तों शाम 5:30 तक हम लगातार जुड़ते रहेंगे अपने दिल्ली, रांची व मुंबई केंद्र से, जहां से बारी बारी से सुनेंगे हिंदी समाचार, अंग्रेजी समाचार, प्रादेशिक समाचार और उसके बाद विविध भारती द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम सुनेंगे रंग तरंग। 12:00 यादों की महफिल, 1:20 पर सुरीला सफर, 2:15 पर दोपहर सभा, 2:30 पर सदाबहार नगमे, 3:00 सखी सहेली और 4:02 से सुनेंगे सेलुलाइड के सितारे। उसके बाद दोस्तों शाम 5:30 पर हम जुड़ जाएंगे आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर और अपने रेडियो दोस्त से सुनेंगे सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

यह है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप जुड़ेंगे हमारे शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग से। श्रोताओं, राग रंग के तहत आज हम सुनेंगे के एस गोपाल कृष्णन से बांसुरी वादन, राग श्री और राग हरिकम्बोजी पर आधारित।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम राग रंग। आपने सुना के एस गोपाल कृष्णन का बांसुरी वादन। आइए दोस्तों, अब जुड़ते हैं सुगम संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम स्वर सरिता से। कत्ल कर जाता तो दुनिया की नजरों में आ जाता। जी हाँ दोस्तों, कत्ल कर जाता तो दुनिया की नजरों में आ जाता। समझदार कातिल था, मोहब्बत करके छोड़ गया। आइए सुनते हैं स्वाति नाटेकर।

चांद तारों से तेरे सफारिश कर दूं, तेरे पीछे खुद को लावारिश कर दूं, गर्मी बहुत हो रही है आजकल, बादल बन जाऊं और तुम पे बारिश कर दूं। तू परी, तू अप्सरा, तू नाजनीन, तू परी, तू अप्सरा, तू नाजनीन, इतना काफ़ी है या थोड़ी और तारीफ कर दूं। आइए दोस्तों, फिर से एक बार सुनते हैं स्वर सरिता कार्यक्रम में स्वाति नाटेकर को।

सिसकती रूत को महकता गुलाब कर दूंगा, मैं इस बहार में सबका हिसाब कर दूंगा। मैं इंतजार में हूँ, तू कोई सवाल तो कर, यकीन रख मैं तुझे लाजवाब कर दूंगा। हजार पर्दों में खुद को छुपा के बैठ, मगर तुझे कभी न कभी मैं बेनकाब कर दूंगा। आइए दोस्तों, स्वर सरिता कार्यक्रम में फिर से एक बार सुनते हैं स्वाति नाटेकर को।

छोड़ो ना ये सफेद बालों की फिक्र, कोई तो होगा जो तुम्हारे सिर्फ माथे की बिंदी पे मरता होगा। छोड़ो ना बढ़ते हुए वजन की फिक्र, कोई तो होगा जो सिर्फ तुम्हारे खूबसूरत दिल पे मरता होगा। छोड़ो ना ये गालों पे आने वाली सिलवटों की फिक्र, कोई तो होगा जो सिर्फ तुम्हारी प्यारी सी मुस्कान पे मरता होगा। छोड़ो ना, तुम वही करो जिससे तुम्हारे दिल को खुशी मिले, क्योंकि कोई तो होगा जो सिर्फ तुम्हारे खुश रहने पे मरता होगा। आइए दोस्तों फिर से एक बार स्वर सरिता कार्यक्रम में सुनते हैं

झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। कितनी सच्चाई से मुझसे ये जिंदगी ने कह दिया, तू नहीं मेरा तो कोई दूसरा हो जाएगा। मैं खुदा का नाम लेकर पी रहा हूँ दोस्तों, जहर भी इसमें अगर होगा तो दवा हो जाएगा। सब उसी के हैं, हवा खुशबू जमीन व आसमां, मैं जहाँ भी जाऊँगा उसको पता हो जाएगा। बशीर बद्र के लिखे इस खूबसूरत लाइनों के साथ आइए फिर से एक बार सुनते हैं स्वर सरिता कार्यक्रम में स्वाति।

दोस्तों, आप आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से जुड़कर सुन रहे थे सुगम संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम स्वर सरिता। स्वर सरिता के तहत आपने सुना स्वाति नाटेकर को। आइए दोस्तों, अब जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से और रांची केंद्र से, जहां से बारी बारी से हम सुनेंगे समाचार प्रभात, मॉर्निंग न्यूज और प्रादेशिक समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक

0: प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने कहा 2000 रुपए तक के यूपीआई भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ। भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को मजबूत और कारगर बताया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की। और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपए तक के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई लेनदेन और रूपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेनदेन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले यूपीआई लेनदेन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेनदेन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। हालांकि ये शुल्क भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेनदेन पर लागू MDR से काफी कम होंगे। सरकार का यह स्पष्टीकरण भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में हालिया संशोधन के बाद यूपीआई लेनदेन पर शुल्क की आशंकाओं के बीच आया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा

0: मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल संयुक्त रूप से करेंगे। सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसमें 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक भाग लेंगे।
1: दो दिवसीय वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में विश्व भर से पर्यावरण विशेषज्ञ, नीति निर्माता, उद्योजक और शोधकर्ताओं हिस्सा ले रहे हैं। इस फोरम का मुख्य उद्देश्य पुरानी सामग्रियों और उत्पादों के पुनरुपयोग, रिसाइकलिंग और पुनर्चक्रण के माध्यम से सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस आयोजन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग, हरित ऊर्जा, रोजगार, वित्त और स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 4 प्लेनरी और 16 विषय आधारित सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में 125 से अधिक प्रदर्शक अपने व्यावहारिक सर्कुलर समाधानों का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद 17 और 18 सितंबर को दुनिया भर में 80 विशेष एक्सीलेटर सत्र आयोजित किए जाएंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। 5 दिन की ये वार्ता कल से शुरू हुई जो 18 सितंबर तक चलेगी। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, मूल स्थान के नियम तथा तकनीकी व्यापार बाधाओं सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
2: दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024-25 में $8.66 अरब से घटकर वर्ष 2025-26 में $7.95 अरब रह गया, जो 8.22% कम है। भारत से कनाडा को प्रमुख निर्यात में दवाइयां, लोहा और इस्पात, समुद्री खाद्य, सूती परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन शामिल हैं, जबकि कनाडा से भारत के प्रमुख आयात में दालें, मोती और अर्धकीमती पत्थर, कोयला, उर्वरक, कागज और कच्चा तेल शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेतकिन ने भारत और दक्षिण अमेरिका के प्रमुख व्यापार समूह मर्कोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को सुदृढ़, सक्रिय, समयबद्ध और बेहद कारगर बताया है। कल नई दिल्ली में राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान के 6th संस्करण में उन्होंने ये बात कही।
5: Given a choice, a judicial officer,
6: अगर किसी न्यायिक अधिकारी को अंतरिम आदेश देने पर, मामले की सुनवाई टालने पर या अंतिम आदेश पारित करने पर शिकायत का सामना करना पड़े तो हर चरण में उसके खिलाफ शिकायत आ सकती है। यह गंभीर बहस का विषय है कि क्या ऐसी हर शिकायत को किसी सार्वजनिक मंच या वेबसाइट पर रखा जाना चाहिए या फिर इसके लिए न्यायपालिका के भीतर ही एक मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था में पूरी निष्पक्षता और बिना किसी पूर्वाग्रह के शिकायतों पर विचार किया जाना चाहिए।
5: इन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मैनर मस्ट डील विद इट।
0: मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका में निरंतर सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के अंतर्गत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों के बीच प्रेम और सद्भावना बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे हृदय में प्रेम, सौहार्द और सद्भावना का विकास हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ये प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उनके सुरक्षाकर्मी डिनो मौर्या, रोहन रॉय, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती और पुलिस अधिकारियों सचिन वाजे तथा परमवीर सिंह सहित कई लोगों के नाम हैं। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वायदा कर पैसे वसूले थे। पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर गहरा गया है। यमन के ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने दक्षिणी सऊदी अरब के एक सैन्य हवाई अड्डे पर कई मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। सऊदी गठबंधन के अनुसार इस हमले में 13 नागरिक घायल हुए हैं, जिसके बाद 4 पड़ोसी शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के पास देश के पश्चिमी तट पर अपनी स्थिति मजबूत करना शुरू कर दिया है। इस बढ़ते तनाव के कारण खाड़ी देशों ने ईरान के साथ होने वाली बातचीत को फिलहाल टाल दिया है। जानकारों का मानना है कि यदि ये टकराव और बढ़ा तो लाल सागर के रास्ते होने वाली दुनिया की तेल आपूर्ति बड़ी मुसीबत में पड़ सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं। हालांकि उन्होंने इसे लागू कराने से जुड़ी जानकारी नहीं दी। सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करने और रूस भी ऐसा ही करने पर सहमत हुआ है। हालांकि पोस्ट में ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन ऊर्जा प्रतिष्ठानों को इस समझौते के दायरे में रखा जाएगा या क्या दोनों पक्षों ने कोई शर्त रखी है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले डाक से मतदान प्रतिबंधित करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना को खारिज कर दिया है। न्यायाधीशों ने संघीय न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें डाक सेवा को डाक मतपत्रों से जुड़े नए नियमों को लागू करने से अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। न्यायाधीश सैमुअल एलिटो और क्लेरेंस थॉमस ने संक्षिप्त आदेश से असहमति जताई। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी दिन भर ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में बिजली चमकने की आशंका है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। तीसरा और अंतिम मुकाबला दिल्ली में ही बृहस्पतिवार को होगा। भारत ने पहले T20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। एशियाई ट्रैप चैंपियन निशानेबाज सबीरा हारिस के नेतृत्व में 20 सदस्यीय भारतीय दल आज से इटली में ISSF जूनियर विश्व कप शॉटगन में भाग लेगा। प्रतियोगिता का समापन 19 सितंबर को होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद प्रियंका। आज अधिकांश अखबारों ने रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट को प्रमुखता से दिया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन ने घटाई सैन्य तैनाती, देश फिर से चौकस। दैनिक भास्कर ने लिखा है, रिपोर्ट में तकनीकी बदलाव का रोड मैप बताया गया। ऑपरेशन सिंदूर से सबक, ड्रोन के 9 फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट शुरू होंगे। अमर उजाला ने भारत चीन में भरोसा और बढ़ा शीर्षक से चीन के विदेश मंत्री का बयान दिया है, सुधार और नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे रिश्ते। नव भारत टाइम्स की खबर है, साइबर ठगी के आरोप पर बैंक खाते से लेन देन पर 60 दिन तक लग सकेगी रोक, RBI ला रहा नियम। हिंदुस्तान के आर्थिक पन्ने की खबर है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने करोड़ों अंशधारकों को दी बड़ी राहत, PF की सूचनाएं अब WhatsApp पर मिलेंगी। EPFO पोर्टल या उमंग ऐप पर बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को आसान हिंदी में समझ सकेंगे लोग, कल हिंदी दिवस पर न्यायालय की नई पहल को दैनिक जागरण सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने लिखा है, जन सूचना सेवा में सरल हिंदी सारांश के साथ ऑडियो वीडियो बुलेटिन भी मिलेंगे। जनसत्ता की ये खबर ध्यान खींचती है, लंदन में टेम्स नदी के तट पर पहली बार हुई गंगा आरती, हजारों लोग शामिल हुए, वाराणसी के घाटों जैसी दिखी झलक।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार ने कहा ₹2000 तक के UPI भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ, भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को मजबूत और कारगर बताया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की। और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस, UPI payments of up to 2,000 rupees to remain free of bank charges. World Circular Economy Forum 2026 to begin today at Gandhinagar in Gujarat. India and Canada begin next round of talks on proposed trade pact. Chief Justice of India Justice Suryakant says mechanism developed by Supreme Court and High Courts to deal with complaints against judges is robust and very responsive. CBI registers FIR in celebrity manager Disha Salian death case. And in men's cricket, second T20 international between India and Afghanistan to be played this evening in Delhi. And now the news in detail. Government has notified rules specifying that banks and payment system providers cannot impose charges on UPI transactions of up to 2,000 rupees. The Finance Ministry issued a Gazette notification yesterday under the Payment and Settlement Systems Act 2007. It listed UPI transactions of up to 2,000 rupees and debit card payments made through RuPay as electronic payment modes for which customers cannot be charged. More from our correspondent.
3: According to the Gazette notification issued by the Finance Ministry, no bank or system provider can impose any direct or indirect charge on a person making or receiving payments through RuPay-powered debit cards and UPI. The notification specifically categorized RuPay-powered debit cards and UPI transactions of up to 2,000 rupees as electronic modes of payment. The Ministry has notified the changes under the Payment and Settlement System Act to clarify the rules regarding charges on UPI transactions. Last month, the government clarified that consumers will not be charged for making payments through the UPI, while any future merchant discount rate will be limited to select transactions above a specified threshold. The Finance Ministry also said that all person-to-person P2P UPI transactions will continue to remain free and there will be no blank.

0: on Sunday. Despite the early loss of Sanju Samson, Abhishek Sharma played a blistering innings of 82 off 32 balls, supported by Ishan Kishan's 42 as India chased down target of 157 set by Afghanistan for the loss of 3 wickets in 13.4 overs. Earlier, put into bat, Afghanistan posted 156 runs for the loss of 8 wickets in their stipulated 20 overs. The third match of the series will be played at the same venue on Thursday. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Haryana, Chandigarh and Delhi today. Similar weather conditions are also expected to prevail over Kerala, Mahe, Punjab, South Interior Karnataka, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal for the day. And now for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria.
1: Thank you, Saira. The papers have widely noticed the turmoils happening in the Gulf. Hindustan Times writes, strike on key Saudi pipeline sparks turmoil in oil market. The Times of India writes, Saudi military airbase hit as Houthis launch fresh attacks. Ahead of FATF meet, Pakistan raises bounty on Jaish chief Azhar to 70 lakh Pakistan rupees, writes the Tribune. BJP trumps Congress in Rajasthan civic polls. Independents win on CM turf, writes the Indian Express. And finally, the Indian Express writes about a village in Jammu adopted by army. The paper writes, adopted by army after killings, Jammu village sees change as it fights tragedy. And with that, it's back to you, Saira.
0: Thanks, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. UPI payments of up to 2,000 rupees to remain free of bank charges. World Circular Economy Forum 2026 to begin today at Gandhinagar in Gujarat. India and Canada begin next round of talks on proposed trade pact. Chief Justice of India, Justice Suryakant, says mechanism developed by Supreme Court and High Courts to deal with complaints against judges is robust and very responsive. CBI registers FIR in celebrity manager Disha Salian death case. And in men's cricket, second T20 international between India and Afghanistan to be played this evening in Delhi. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे अब से बस थोड़ी देर में।
3: वेक्टर जनित रोग, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
4: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गाँव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
3: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: बस पोती का जन्म ठीक से हो गया, चलो सब घर चलते।
6: सुनिए, डॉक्टर साहब ने अस्पताल में दो रात रुकने को बोला था।
5: नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं।
6: अरे देख के, हाय गिर गए।
7: अच्छा मलहम लगाओ, पट्टी करो और एक्सरे करो जल्दी।
8: देखा आपने, कोई भी गड़बड़ होने पर यहाँ तुरंत इलाज हो जाता है। प्रसव के बाद के 48 घंटे माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, इसलिए अस्पताल में दो रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे की जान को लेकर चांस क्यों लेना,
9: चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना।
10: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
11: क्या बात है सुनीता, बहुत परेशान लग रही है।
12: बहन, मेरी बिटिया का बुखार उतर ही नहीं रहा और आज गाँव का चिकित्सा केंद्र भी बंद है।
11: अरे बहन परेशान मत हो, 104 नंबर डायल कर, जहां तुझे मिलेगी प्रशिक्षित सलाहकारों से चिकित्सा सलाह।
12: बहन पर इतनी रात में कौन बात करेगा इस नंबर पर?
11: अरे झारखंड सरकार की ये 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन तो 24 घंटे खुली है।
10: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन, किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
13: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। 14वीं जेपीएससी पीटी अनियमितता मामले में रांची से कोचिंग संचालक गिरफ्तार। जेएसएससी सीजीएल मामले में भी एक आरोपी को कोलकाता से पुलिस ने पकड़ा। झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ में औद्योगिक प्रदूषण पर दिया अहम निर्देश। फैक्ट्रियों को साल में दो बार होगी जांच। राज्य में एसआईआर के तहत दावा आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि आज। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को होगी प्रकाशित। राज्य के कई जिलों में अगले चार दिनों तक गरज के साथ बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और रांची चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब आकिब लेवन ने जीता। फाइनल मुकाबले में जगन्नाथ स्पोर्टिंग क्लब को 70 रनों से हराया। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड लोक सेवा आयोग की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं में सीआईडी ने कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को रांची के रातू रोड इलाके से गिरफ्तार किया है। शिवांगन कोचिंग चलाने वाले संजीत पर आरोप है कि उसने एजेंट बनकर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वादा कर पैसे वसूले थे। एक अलग कार्रवाई में सीआईडी ने पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान से वांछित आरोपी दिलीप कुमार पासवान को भी गिरफ्तार किया है। झारखंड उच्च न्यायालय में आज जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा सीडीपीओ फूड सेफ्टी ऑफिसर और जेएसएससी सीजीएल परीक्षाओं के विज्ञापन रद्द करने संबंधी सरकारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। मामला न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में सूचीबद्ध है। अदालत ने राज्य सरकार को 7 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था, लेकिन सोमवार तक सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया था। झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ में औद्योगिक प्रदूषण के मामले में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नियमित और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने रामगढ़ के बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड और दयाल स्टील लिमिटेड का हर वर्ष दो बार निरीक्षण करने को कहा है। इनमें कम से कम निरीक्षण बिना पूर्व सूचना के होगा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस जातिगत जनगणना में ओबीसी के लिए अलग कॉलम शामिल करने की मांग को लेकर कल रांची में लोक भवन मार्च करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में होने वाले मार्च में मंत्री, विधायक, वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता उज्ज्वल प्रकाश तिवारी ने कहा कि मार्च के बाद कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगा।
1: शहीद चौक से लोक भवन तक मार्च करते हुए हम लोग राजभवन लोक भवन घेराव करेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे आदरणीय राज्यपाल महोदय को, और उसके बाद एमएमडीआर और चंदा चोरी पर 5 से 10 तारीख तक हर प्रखंड कार्यालय में एमएमडीआर और चंदा चोरी पर धरना प्रदर्शन होगा और ज्ञापन सौंपा जाएगा।
0: झारखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत मतदाता सूची पर दावा और आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि आज है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार इसके बाद दावों और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा और अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित होगी। दुमका जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत मतदाता सूची को लेकर सुनवाई की प्रक्रिया जारी है। 2026 की पुनरीक्षित प्रारूप मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं होने वाले मतदाता निर्धारित तिथि पर सुनवाई में शामिल होकर अपने दावे पेश कर रहे हैं। पेश है हमारे दुमका संवाददाता की रिपोर्ट।
2: दुमका जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तहत मतदाता सूची को लेकर सुनवाई की प्रक्रिया जारी है। दुमका से बाहर रहने वाले कई मतदाता भी अपना नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के लिए जिले में पहुंच रहे हैं और जरूरी दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत कर नाम शामिल करने का दावा कर रहे हैं। निर्धारित अवधि तक दावों और आपत्तियों पर सुनवाई के बाद प्राप्त दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। इसके आधार पर अंतिम मतदाता सूची तैयार कर प्रकाशित की जाएगी। आर के नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका।
0: एमएमडीआर कानून में संशोधन के खिलाफ झारखंड सरकार केंद्र सरकार के सामने अपना पक्ष रखेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 17 सितंबर को दिल्ली में प्रस्तावित बैठक में राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर शामिल होंगे। वे संशोधित कानून, विशेषकर नई धारा 1D से झारखंड को होने वाले संभावित आर्थिक नुकसान और राज्य के खनिज अधिकारों का मुद्दा उठाएंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हिंदी दिवस के अवसर पर रांची में प्रमंडलीय राजभाषा कार्यालय दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने की। उपायुक्त ने कहा कि हिंदी को विज्ञान, नवाचार, शोध और रोजगार परक बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। 59वें अभियंता दिवस समारोह के मौके पर झारखंड अभियंत्रण सेवा संघ की ओर से आज रांची में तकनीकी प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मंत्री योगेंद्र प्रसाद मुख्य अतिथि होंगे और मंत्री दीपिका पांडे सिंह और हफीजुल हसन विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। रांची में हुए हर्षवर्धन अपहरण कांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। सिटी SP के अनुसार इस मामले में 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
3: जो व्यक्ति जो संदिग्ध थे वो वहीं घटनास्थल पर मौजूद मिले, वहां से उनको बड़ी ही वियर्ड सिचुएशन में उनको रिकवर किया गया। उनको काफी टॉर्चर किया गया था इन व्यक्तियों के द्वारा और काफी आपत्तिजनक उनकी वीडियो भी उनके द्वारा बनाई गई थी और एक स्टैम्प पेपर पर भी जबरन जो है साइन करवाया गया था। वहां से XUV500 रिकवर किया गया है, 5 स्मार्टफोन रिकवर किए गए हैं, साथ ही साथ 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।
0: धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिटी SP ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि तकनीकी साक्षियों और CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई गई।
4: 4 लोगों की अरेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है, कुछ 2-3 लोग अभी बाकी है जिनकी अरेस्टिंग की प्रक्रिया अभी चल रही है, उन्हें आइडेंटिफाई किया जा रहा है। साथ ही साथ मैं ये बता दूं, घटना में प्रयुक्त जो धारदार हथियार था उसे भी कवर कर दिया गया है, कैसे कैसे क्या चीजें हुई थी, और वही अभी आने वाले कुछ दिनों में जो रिमेनिंग कल्प्रिट्स है उनको भी अरेस्ट कर लिया जाए।
0: राज्य के कई जिलों में अगले 4 दिनों तक गरज के साथ हल्की बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। रांची के पिनाकल क्रिकेट ग्राउंड होचर में आयोजित रांची चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब आकिब 11 ने जीत लिया है। कल खेले गए फाइनल में आकिब 11 ने जगन्नाथ स्पोर्टिंग क्लब को 70 रन से हराया। अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य के लगभग सभी अखबारों ने JPSC परीक्षा में कथित गड़बड़ी में हुई गिरफ्तारी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि CID की जांच में वसूली के साक्ष्य मिले, दिलीप ने रटवाया था जवाब। हिंदुस्तान और दैनिक जागरण ने लिखा है रांची के कोचिंग संचालक समेत 2 गिरफ्तार। प्रभात खबर की सुर्खी है मौत को साथ लेकर दौड़ रहे भारी वाहन, सुरक्षा के इंतजाम नहीं। और अब अंत में मुख्य समाचार। 14वीं JPSC PT अनियमितता मामले में रांची से कोचिंग संचालक गिरफ्तार। JSSC CGL मामले में भी 1 आरोपी को कोलकाता से पुलिस ने पकड़ा। झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ में औद्योगिक प्रदूषण पर दिया अहम निर्देश, फैक्ट्रियों की साल में 2 बार होगी जांच। राज्य में SIR के तहत दावा आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि आज, अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को होगी प्रकाशित। राज्य के कई जिलों में अगले 4 दिनों तक गरज के साथ बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और रांची चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब आकिब 11 ने जीता, फाइनल मुकाबले में जगन्नाथ स्पोर्टिंग क्लब को 70 रनों से हराया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: मैं चली।
6: कहाँ?
5: बच्चे को पोलियो खुराक पिलवाने।
7: पोलियो खतरनाक बीमारी है जिससे बच्चा जीवन भर के लिए अपाहिज हो सकता है।
8: अचानक हाथ पाँव लुंज-पुंज हो जाता है या बच्चा चल फिर नहीं सकता।
7: बच्चे को एक साल की उम्र तक पोलियो की 3 खुराकें
8: एक एक महीने के अंतर पर दिलाएं।
7: जानकारी के लिए सहिया स्वास्थ्य कार्यकर्ता से मिलें।
8: पोलियो की खुराक सभी सरकारी अस्पताल
7: डिस्पेंसरी या हेल्थ सेंटर में मुफ्त मिलती है।
8: 2 बूंद जिंदगी के।
9: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
10: भूल गए आज कौन सा दिन है?
11: गुरुवार है, क्या हुआ तो?
10: अरे गुरुवार और शनिवार को आंगनबाड़ी केंद्र और शहरी स्वास्थ्य केंद्र पर एक साथ

0: तक के बच्चों को मुफ्त टीके लगाए जाते हैं।
1: अच्छा चलो जल्दी फिर।
0: आप भी याद रखें, टीकाकरण कराएं और बच्चों की जिंदगी को सुरक्षित बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें।
2: हर गुरुवार और शनिवार को आंगनबाड़ी केंद्र और शहरी स्वास्थ्य केंद्र पर एक साल तक के बच्चों को मुफ्त टीके लगवाएं।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

श्रोताओं, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आपका रेडियो साथी सैक चटर्जी। आइए दोस्तों, जुड़ते हैं आप सभी की पसंदीदा कार्यक्रम गीत गुंजन से। दोस्तों, आज गीत गुंजन कार्यक्रम की शुरुआत दो लाइन आपको नजर करके करना चाहता हूं और वो ये है कि तलब करें तो ये आंखें भी दे दूं मैं, मगर ये लोग आंखों के ख्वाब मांगते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की जो गीत संगीत होगी, जो हम महफिल सजाएंगे गीत गुंजन में, वो आंखों पर आधारित होगी। और मैंने कई दफा आपसे कहा है कि हमारा जो ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, इसमें ढूंढो तो किन किन सब्जेक्ट पे गीत नहीं मिलते, और आंख ये तो समंदर है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले सुनते हैं 1973 में आई फिल्म बॉबी के उस गीत को, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और आवाज लता मंगेशकर की।

दोस्तों 1973 के बाद पीछे लौटते हुए पहुंचते हैं 1967 में और सुनते हैं अशोक कुमार, माला सिन्हा, विश्वजीत अभिनीत फिल्म नई रोशनी की उस गीत को जिसे गाया था मोहम्मद रफी ने, लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत दिया था।

दोस्तों आज इस खूबसूरत कार्यक्रम गीत गुंजन में हम बात कर रहे हैं आंखों की, और आइए तीसरे पादान पर हम सुनते हैं जाने अनजाने फिल्म से रफी और लता मंगेशकर के गाए उस गीत को जिसे लिखा था गुलशन बावड़ा और स्वरबद्ध यानी कि संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने, और इसमें अभिनय किया था शम्मी कपूर, लीना चंद्रवारकर और विनोद मेहरा जैसे शख्सियतों ने।

दोस्तों हम सुनेंगे 1969 में आई फिल्म किस्मत से उस गीत को जिसे गाया था आशा भोसले और शमशाद बेगम की जोड़ी ने, लिखा था SH बिहारी और संगीत दिया था OP नई।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत गुंजन। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त रेडियो साथी सैकत चैटर्जी। आइए दोस्तों अब सुनते हैं एक और बेहतरीन कार्यक्रम जोहार पलामू।
1: जोहार पलामू।

0: जोहार पलामू कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए श्रोताओं आपको बताते चलें कि हिंदी दिवस के अवसर पर साहित्यिक संस्था परिमल प्रवाह द्वारा एक कवि गोष्ठी सह साहित्यकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। परिमल प्रवाह के 12वें स्थापना दिवस भी इस दिन था और इस अवसर पर इस कार्यक्रम को बहुत ही शानदार ढंग से आयोजित किया गया। 14 सितंबर को दिन सोमवार को आयोजित यह कार्यक्रम कुसुमदाहा मंदिर परिसर में हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर नारायण चंद्र अग्रवाल मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त वरिष्ठ साहित्यकार हरिवंश प्रभात, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे लोकतंत्र सेनानी रचनाकार सह संरक्षक परिमल प्रवाह रविशंकर पांडे। संचालन कर रहे थे वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर विजय प्रसाद शुक्ल। आइए सुनते हैं इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर एनसी अग्रवाल ने क्या कहा।
1: और यही मैं समझता हूँ कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इसका लाभ मुझे मिला है कि इतना अच्छा गोष्ठी में मेरे को अध्यक्ष में मेरे को उद्घाटन करता ही चुना गया है। मैं आप लोग सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। साहित्य के संवर्धन के लिए ये जो संस्था है परिमल प्रवाह, मैं इस क्षेत्र से नहीं हूँ तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा, लेकिन साहित्य की सेवा भी एक बहुत बड़ी सेवा होती है। हम लोग के टाइम में साहित्य को समझा जाता था, बचपन में जब हम लोग थे दो 1955 से 65 के बीच में, तो लोग बोलते थे कि आज कौन सा क्लास है तुम्हारा, तो हम लोग बोलते थे कि साहित्य का क्लास है। हालांकि वहाँ हम लोग हिंदी पढ़ते थे, तो हिंदी इज नॉट साहित्य, हिंदी ही साहित्य नहीं है। हिंदी तो एक भाषा है और उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाना ही साहित्य है। मेरे समझ से हम बहुत मेरे को नहीं मिलता है सोचा थी, लेकिन उस भाषा को आप कितना सुंदर रूप से सुगंधित रूप से आगे बढ़ाते हैं। ये आपने नाम इस संस्था का इतना अच्छा दिया है परिमल प्रवाह। परिमल का मतलब ही है कि आप सुगंध फैला रहे हैं साहित्य के लिए। सुगंध फैलाने की एक ये जो गोष्ठी बनाया हुआ संगठन बनाया हुआ, ये तो बहुत साहित्य के उत्थान के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं बता पाऊँगा, लेकिन पंकज श्रीवास्तव साहब थे एक करीब साल भर पहले गोष्ठी किया था, उन्होंने उसमें भी हम मेरे को एक बार बुलाया गया था। उससे हम लोग को समझ में आया कि साहित्य के बारे में कुछ एक यहाँ चर्चा चल रही है पलामू में। ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे किताब लिखने वाले भी साहित्यकार हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है पलामू के लिए।
0: इससे पहले कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया और सरस्वती वंदना भी किया गया। राजीव नयन के द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत किया गया। आइए

0: कार्यक्रम में शिक्षक सह लेखक परशुराम तिवारी को भी सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के बाद उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि
1: परिमल परवार में न सिर्फ इस तरह के आयोजन करता है बल्कि वह एक मंच प्रदान करता है यहाँ के लेखकों के लिए और उनका संवर्धन करता है, उनके जड़ों को सींच कर संवर्धन करता है। मेरा साहित्य में कोई योगदान नहीं है, मैं इसका एक एग्जाम्पल हूँ। सर ने तो 3-4 पुस्तकें लिखी हैं, मैंने उनके पुस्तक में देखा है। हम साहित्य के क्षेत्र में अगर उसको साहित्य भी नहीं कर सकते हैं, अपना विभाग में एक ज्योत पत्रिका का हम संपादन किए थे, यत्र तत्र जो साझा संकलन है उसमें एक आध दो कविताएँ हमारी छपी हैं, कुछ थोड़ा बहुत लिखता हूँ। प्रोफेसर सुभाष चंद्र मिश्रा सर हमारे गुरुवर, उनके बारे में जो उनके शिष्य हैं और उनके चाहने वाले शुभेच्छु, उनसे मैंने संकलन किया उनके लेखों का और उसका संग्रह करके और उसको हम प्रस्तुत कर दिया लोगों के बीच में ही, उसका मैंने संपादन किया। तो साहित्य के क्षेत्र में हमारा कोई योगदान नहीं है। मेरा योगदान यही है कि सब आप लोग जो आगे आगे चलते हैं तो मैं भी आपके साथ चलने की कोशिश करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि जंगल को जलाने वाला में मेरा नाम नहीं रहे, जंगल लगाने वाला में नाम रहे, पेड़ पौधा लगाने वाला में नाम रहे। और मैं समझता हूँ कि इसी सोच के साथ परिमल परवाह ने मुझे चुना होगा सम्मानित करने के लिए कि छोटे से प्रयास की भी हम सराहना करते हैं। ये परिमल परवाह के दिमाग में बात आ सकती है कि कोई ऐसा ना समझे कि कोई बड़ी बड़ी पुस्तक, मोटी मोटी पुस्तक लिखेगा उसी को सम्मानित किया जाएगा। परशुराम तिवारी जैसा एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ साथ चलने का मादा रखता है और मन में भाव रखता है उसको भी सम्मानित किया जाता है। मैं समझता हूँ कि आने वाले पीढ़ियों के लिए आपने एक बहुत अच्छा संदेश दिया है, इसलिए परिमल परवाह का मैं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। हिंदी दिवस है आज 14 सितंबर 1949 को आधिकारिक रूप से हिंदी को राजभाषा माना गया था, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा। और 14 सितंबर 1953 से ही मनाना शुरू हुआ, उतना समय का अंतराल रहा। बहुत लड़ाई हुई वहां, स्ट्रगल हुआ आपस में, संघर्ष हुआ कि इसको राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। तब उसमें राजगोपालाचारी जी आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि देखिए अब दक्षिण भारत के लोग कह रहे हैं कि इसको राष्ट्रभाषा हम नहीं बनने देंगे, उत्तर भारत के लोग आप लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रभाषा बनने देंगे। तो उन्होंने एक उपाय निकाला कि अवरोध तो रहेगा नहीं, इस गतिरोध को तो खत्म करना है। तो उन्होंने कहा कि राष्ट्र की जितनी भाषाएं, अब तब तक 26 जनवरी 1950 को संविधान भी लागू हो गया और संविधान में 14 भाषा को अनुसूचित भी कर दिया गया उस समय। तो कहा गया कि देखिए जितनी भी भाषाएं हैं हमारी वो सब राष्ट्र की भाषा है, इसलिए वो सब राष्ट्रभाषा है, लेकिन हिंदी को हमको अलग महत्व देना है इसलिए उसको हम लोग उसको राजभाषा कहेंगे और इसको राजभाषा कहा गया। इसलिए हम लोग बीच बीच में भी मामला उठाते हैं राष्ट्रभाषा की और राजभाषा की। फिर एक भाषा को उसमें लाया गया, फिर बढ़ाया गया, उस समय 14 था, आज उस अनुसूची में 22 भाषाएं हैं।
0: कार्यक्रम के दौरान कई कवियों ने अपनी अपनी कविताएं भी प्रस्तुत की। आइए सुनते हैं डॉक्टर आभा मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत कविता।
2: मैंने कुछ पंक्तियों को जोड़ा है। हिंदी दिवस का पर्व मिलकर मनाइए, हिंदी दिवस का पर्व मिलकर मनाइए, हिंदी भाषा का दीप हृदय में जलाइए, हिंदी भाषा का दीप हृदय में जलाइए। होठों के दो द्वार निज भाषा से सजाइए, होठों के दो द्वार निज भाषा से सजाइए, हिंदी भाषा का दीप हृदय में जलाइए। कबीर सुर रस खान की अमर साधना और तुलसी के छंदों में वेदों की प्रार्थना, तुलसी के छंदों में वेदों की प्रार्थना। अब देखिए अगली पंक्तियां। दिन करके ओज की ज्वाला इसमें जलती है, निराला के स्वाभिमान की धारा बहती है, निराला के स्वाभिमान की धारा बहती है। और पंत जी हमारे सुकुमार कवि प्रकृति के, यह पंत के सुकुमार भावों का श्रृंगार है, महादेवी की वेदना का पावन आधार, महादेवी की वेदना का पावन आधार है। अब जयशंकर प्रसाद के गीतों की मिठास इसमें, जयशंकर के गीतों की इसमें मिठास है, गुप्त जी की राष्ट्रभक्ति का विश्वास है, मातृभाषा की छाओ में आंचल फैलाइए, मातृभाषा की छाओ में आंचल फैलाइए, होठों के दो द्वार निज भाषा से सजाए,

0: बार बार बधाई देंगे।
1: श्रोताओं, इस अवसर पर विजय शंकर सिंह, प्रयाग तिवारी, वंदना श्रीवास्तव, रविशंकर पांडे, अमित कुमार, विश्वकर्मा जी उर्फ गांधी जी, संतोष दुबे, रीना प्रेम दुबे, अरविंद सिन्हा, आचार्य धनंजय, उमेश कुमार रानू, हरिवंश प्रभात आदि कवियों ने भी अपनी अपनी रचना प्रस्तुत की। इस अवसर पर परिमल प्रवाह के सचिव विजय शंकर मिश्र ने परिमल गीत भी

श्रोताओं, आप सुन रहे थे गीत तू मेरा जानू है। कलाकार थे अनुराधा पौड़वाल और मनहर उदास। म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जबकि गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने। इसी के साथ साथियों, आपको एक बात बताते चले कि आज है 15 सितंबर, आज है राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस। भारत के महान इंजीनियर और भारत रत्न से सम्मानित सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन को हर साल 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। 15 सितंबर 1959 को भारत का राष्ट्रीय प्रसारण सेवा दूरदर्शन की एक प्रायोगिक ट्रायल भी शुरू हुई थी और इस दिन को दूरदर्शन भी खास तौर पर मनाता है। आइए दोस्तों, जान जाते हैं 15 सितंबर को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे क्या है। दोस्तों, 15 सितंबर को मनाए जाने वाला राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे वास्तव में भारत के महान सिविल इंजीनियर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की याद में मनाया जाता है। उन्हें आधुनिक भारत का मुख्य वास्तुकार भी कहा जाता है। सर एस एम विश्वेश्वरैया से जुड़े कुछ मुख्य तत्व ऐसा है दोस्तों कि उन्होंने मैसूर का कृष्णराज सागर बांध बनाया था। उन्होंने इस विशाल बांध के निर्माण

का नेतृत्व किया था जो उस समय एशिया के सबसे बड़े जलाशयों में से एक था। उन्होंने पानी का बहाव को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष ऑटोमेटिक गेट प्रणाली का आविष्कार किया जिसे पहली बार 1903 में पुणे के खड़कवासला जलाशय में लगाया गया। देश के विकास में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें 1955 में भारत सरकार द्वारा भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। दोस्तों, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के बात आती है तो खड़कवासला जलाशय में जो पहली बार स्वचालित फ्लड गेट लगाया गया था उसकी बात बरबस निकल कर आती है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जान जाएं कि स्वचालित फ्लड गेट क्या है। साथियों, उस समय आम समस्या ये थी कि यदि बांध के गेट समय पर न खोले जाए तो बाढ़ का पानी बांध को तोड़ सकता था, लेकिन अगर गेट पहले ही खुले रखे जाए तो पानी जमा नहीं हो पाता था। सर एमबी ने एक ऐसी प्रणाली बनाई जो बिना किसी मानवीय मदद या बिजली के काम करती थी। उसमें एक काउंटर वेट, भारी वजन और फ्लोट, तैरने वाली वस्तु की प्रणाली का उपयोग किया गया था। जैसे ही जलाशय में पानी का स्तर एक सुरक्षित सीमा से ऊपर जाता, पानी एक कुएं में भर जाता था जिससे फ्लोट ऊपर उठता था और गेट अपने आप नीचे गिरकर खुल जाते थे। पानी का स्तर सामान्य होते ही गेट अपने आप बंद हो जाते थे। इस आविष्कार ने बिना बांध की ऊंचाई बढ़ाए पानी की भंडारण क्षमता को बहुत बढ़ा दिया था। इसके अलावा कृष्ण सागर बांध भी उनकी जीवन की एक बड़ी उपलब्धि थी। कर्नाटक की मांड्या में कावेरी नदी पर बना यह बांध उस समय एशिया का सबसे बड़ा जलाशय था। इसके निर्माण में वहां की बंजर भूमि इतनी उपजाऊ हो गई कि वहां चीनी उद्योग फलने फूलने लगा। इसके बाद उन्होंने साल 1908 में हैदराबाद की मूसी नदी में भीषण बाढ़ जो आई थी उससे भी हैदराबाद को बचाया। निजाम के बुलाए पर उन्होंने शहर के लिए एक विशेष जल निकासी ड्रेनेज प्रणाली तैयार की और उस्मान सागर तथा हिमायत सागर जैसे जलाशयों का निर्माण करवाया जिसने हैदराबाद को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। सिंध जो अब पाकिस्तान में है उसमें सुक्कुर जल परियोजना का निर्माण भी इन्होंने कराया। सिंधु नदी के किनारे बसे सुक्कुर शहर में गंदे और मिट्टी वाले पानी की बड़ी समस्या थी। उन्होंने वहां कलेक्टर वेस विशेष कुएं की अनूठी तकनीक से शहर को साफ पानी पीने के लिए मुहैया कराया। 1912 से 1918 तक मैसूर साम्राज्य के 19वें दीवान प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने वहां स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, मैसूर सोप फैक्ट्री जैसे संस्थानों की स्थापना की। दोस्तों, भारत में इंजीनियर्स डे 2026 की जो आधिकारिक थीम है वो है नवाचार और डिजिटलीकरण के माध्यम से एक सतत सुरक्षित भविष्य के लिए स्मार्ट इंजीनियरिंग। यह थीम बताती है कि आज के आधुनिक दौर में इंजीनियरों को AI, डिजिटल टूल्स और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों का उपयोग करके ऐसी चीजें बनानी चाहिए जो लंबे समय तक समाज का भला कर सके। दोस्तों, हमारे आकाशवाणी परिवार में भी कई इंजीनियर्स सेवा दे रहे हैं। कई तकनीकी विशेषज्ञों के मदद से हम कार्यक्रमों का प्रसारण अबाध गति से आप तक कर रहे हैं। तो आज इस अवसर पर आकाशवाणी में कार्यरत तमाम इंजीनियर्स को भी हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आइए दोस्तों, इसके बाद जोहार पलामू कार्यक्रम का समापन करते हैं और चलते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की ओर।

0: दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। आप सबका उमंग कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आइए हमेशा की तरह पहले सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। लिखा है, किसी का भी उदय अचानक नहीं होता, उसमें समय, धैर्य और तपस्या की जरूरत होती है। धन्यवाद आप दोनों का। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। छत्तीसगढ़ सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुली चंद साहू, सतीबाई साहू और सत्यम साहू जी ने लिखा है, प्रिय उद्घोषक जी मन से नमस्कार। आप दोनों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और ज्ञानवर्धक बात बताई। आपका संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद। करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर। छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू ने लिखा है, उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से हमें भरपूर मनोरंजन तो होता ही है और इससे हमें सीख व प्रेरणा भी मिलती है। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए पूरी टीम को हार्दिक बधाई और धन्यवाद। आपका भी संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में अब आप सबका स्वागत है। इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी कुछ घटनाएं और कुछ लोक कथाएं। ये लोक कथाएं कुछ ऐसी हैं जिन्हें सुनकर यदि आप कभी किसी पेड़ के पास से गुजरें तो आप उसे सिर्फ एक पेड़ नहीं समझेंगे, आपके देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। आपने अक्सर उत्तराखंड के चिपकू आंदोलन और उससे जुड़ी गौरा देवी के बारे में जरूर सुना होगा। इस पर हमारा कार्यक्रम भी है, लेकिन आज हम बात करेंगे चिपकू आंदोलन मूल रूप से कब शुरू हुआ। आज की कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गाँव खेजड़ली की और एक ऐसी महिला की जिसने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन तक न्योछावर कर दिया। कहानी लगभग 300 साल पुरानी है। सन 1730 की बात है। राजस्थान की गर्म और रेगिस्तानी धरती, चारों ओर रेत और उस धरती पर जीवन का सहारा बने हुए थे खेजड़ी के पेड़। एक दिन गांव में कुछ लोग पहुंचे, उनके हाथों में कुल्हाड़ियां थीं। उन्हें वहाँ के राजा अभय सिंह के द्वारा पेड़ों को काटने का आदेश मिला था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। गांव की एक महिला उनके सामने आ खड़ी हुई। उसका नाम था अमृता देवी बिश्नोई। उन्होंने पेड़ को अपनी बाहों में भर लिया और पेड़ काटने वालों से कहा, पेड़ को काटना है तो पहले मुझे काटना होगा। जरा सोचिए श्रोताओं, क्या दृश्य रहा होगा। सामने कुल्हाड़ी लिए लोग और दूसरी ओर एक निहत्थी महिला। पेड़ काटने वालों ने उसे धमकाया, लेकिन अमृता देवी पीछे नहीं हटी। उनकी तीन बेटियां भी अपनी माँ के साथ खड़ी हो गईं और फिर जो हुआ वो भारतीय पर्यावरण इतिहास की अमर घटना बन गया। अमृता देवी का दृढ़ संकल्प देखकर गांव के लोग भी आने लगे और एक एक करके पेड़ों से चिपकने लगे। किसी ने कहा, ये पेड़ हमारे पशुओं का चारा है। किसी ने कहा, ये हमारे जीवन का सहारा है। और किसी ने शायद ये महसूस किया कि पेड़ कटेंगे तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी कट जाएगा। श्रोताओं, इसके बाद शुरू हुआ क्रूर संहार। इस बेहद दुखद आंदोलन में 363 बिश्नोई लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। जब ये समाचार महाराजा तक पहुंचा तो वे सन्न रह गए और शोक में डूब गए। अंततः खेजड़ली क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी गई। साथियों, आज से लगभग 300 साल पहले जब पर्यावरण संरक्षण जैसे शब्द आम बातचीत का हिस्सा भी नहीं थे, तब इन लोगों ने प्रकृति के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। हम आज कहते हैं पेड़ बचाओ, पानी बचाओ। सोशल मीडिया पर, अखबारों में ये संदेश भरे पड़े हैं। बड़ी बड़ी कार्यशालाएं होती हैं, उपदेश होते हैं और जिसमें लोग कहते हैं पर्यावरण बचाओ, लेकिन अमृता देवी ने केवल कहा ही नहीं था, उन्होंने करके दिखाया था। अंग्रेजी की एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, यानी हमारे शब्दों से ज्यादा हमारी खामोशी में किए गए कार्य बोलते हैं। तो श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम के द्वारा आज हम विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि अगली बार जब आप किसी पेड़ की छाया में बैठें, उसके फल खाएं, उसकी ठंडी हवा को महसूस करें, तो एक पल के लिए राजस्थान की खेजड़ली गांव की उस महिला अमृता देवी बिश्नोई को जरूर याद कीजिएगा, जिनके लिए पेड़ केवल लकड़ी मात्र नहीं थे लेकिन वो जीवन का आधार थे। आइए सोचें, पेड़ हमारी सांस हैं, हमारे लिए शीतल छाया हैं। वे हमारे जल और मिट्टी के रक्षक हैं और सबसे बढ़कर वे आने वाली पीढ़ियों की विरासत हैं। तो आज हम उमंग कार्यक्रम में मन की उमंग से चलते चलते एक छोटा सा संकल्प क्यों न लें। एक पेड़ को केवल लगाएंगे नहीं, उसे बड़ा भी करेंगे और उसे बचाएंगे भी। एक नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी तर्ज पर आज हम उमंग कार्यक्रम की ओर से एक नया नारा देना चाहेंगे, पेड़ लगाओ पेड़ बढ़ाओ पेड़ बचाओ। और शायद ही यही चिपको आंदोलन की मूल माता अमृता देवी बिश्नोई को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अमृता देवी की कहानी पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में पेड़ बचाने के लिए अपना जीवन देने का अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। बता दें, देश ने उनके अतुल्य बलिदान को नहीं भुलाया। आज भारत सरकार

0: ये कार्यक्रम बंगाल की उल्लेखनीय शिक्षाविद भगिनी निवेदिता के जीवन और उनके योगदान के बारे में जानकारी देता है। कार्यक्रम बताता है कि किस प्रकार वे श्रीमती मार्गरेट नोबल के रूप में भारत में आईं और स्वामी विवेकानंद की शिष्या बनकर भगिनी निवेदिता कहलाईं।
1: उत्तरी कलकत्ता के बाग बाजार मोहल्ले में एक विद्यालय है। श्री रामकृष्ण शारदा मिशन सिस्टर निवेदिता गर्ल्स स्कूल। वैसे तो हमारे देश में दूसरे विद्यालयों की ही तरह ये भी एक साधारण सा विद्यालय है, लेकिन कुछ अर्थों में ये बड़ा असाधारण भी है। जानते हो क्यों? क्योंकि इस विद्यालय का प्रारंभ कुछ असाधारण लोगों के द्वारा बड़ी ही असाधारण परिस्थितियों में किया गया था। सुनना चाहते हो इसकी कहानी? तो सुनो।

0: विवेकानंद आए हैं, उनके साथ एक अंग्रेज मेम साहब भी है।
1: अरे तो उन्हें बाहर क्यों खड़ा करके आया? जरा मेरी शॉल तो दे लो।
0: अच्छा बाबू।
1: और सुन
0: जी,
1: मालकिन से कह देना कि तैयार रहेगी, हैं? भगिनी निवेदिता
0: है?
1: अरे वही अंग्रेज मेम साहब, शायद तेरी मालकिन और चुन्नी दीदी से मिलना चाहें।
0: क्या कह रहे हैं बाबू, मालकिन भला मेम साहब से कैसे बात करेंगी, वो क्या अंग्रेजी पढ़ी लिखी है?
1: इसकी चिंता मत कर माधो, ये मेम साहब दूसरी मेमो जैसी नहीं है।
0: अच्छा?
1: हाँ, बंगला बोल लेती है।
0: ओ।
1: बड़ी नेम धर्म वाली है, स्वामी विवेकानंद की खास शिष्या है।
0: अच्छा?
1: अपना घर बार छोड़कर 100 समुन्दर पार से यहाँ आई है, हमारी लड़कियों को पढ़ाएंगी, यहाँ कलकत्ते में एक कन्या पाठशाला खोलेंगी।
0: वो तो ठीक है, पर बाबू।
1: अरे दुष्ट, स्वामी जी को दरवाजे पर खड़ा कर रखा है और यहाँ पर कर रहा है, जा भाग यहाँ से।
0: अच्छा।
1: पहले मैं उन्हें भीतर ले आऊं। आइए आइए स्वामी जी, भीतर आइए। धन्य भाग है हमारे जो आपकी चरण रज से मेरा घर पवित्र हुआ।
2: अरे अरे, ये क्या करते हैं बोस बाबू, उठिए उठिए, माँ काली आपका कल्याण करे, इनसे मिलिए। यही वो आयरिश महिला है मिस मार्गरेट नोबल, जिनके विषय में मैंने आपसे चर्चा की थी।
1: कुटिया में आपका हार्दिक स्वागत है मिस नोबल।
3: धन्यवाद बोस बाबू, किंतु आप यदि मुझे स्वामी जी के दिए हुए नाम से पुकारे तो मुझे अधिक प्रसन्नता होगी।
1: यदि ऐसा है तब मैं आपको सिस्टर निवेदिता ही कहूँगा। आइए स्वामी जी, यहाँ बैठिए। आप भी बैठिए सिस्टर।
3: धन्यवाद।
2: अब बताइए बोस बाबू
1: जी,
2: क्या सलाह है? इधर बाग बाजार में स्कूल खोलने पर यहाँ के लोग अपनी लड़कियों को पढ़ने भेजेंगे या नहीं?
1: देखिए स्वामी जी, मैंने इस बारे में कई लोगों से बात की है। जो लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाना भी चाहते हैं, वो भी समाज के डर से उन्हें स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है।
3: अरे, अगर कोई आदमी अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना चाहता है तो इसमें समाज का क्या नुकसान है?
1: नुकसान तो है ही सिस्टर, पुराने लोगों को डर है कि यदि लड़कियाँ पढ़ गईं तो फिर अपनी बुद्धि से सोच सकेंगी, अपना भला बुरा समझ सकेंगी, तब वे समाज से अपनी दुर्दशा का कारण पूछने लगेंगी, समाज की हर गलत सही और उल्टी सीधी प्रथा को मानने से इनकार करने लगेंगी, तब फिर इस अंधे समाज का क्या होगा? समाज में तो हाहाकार मच जाएगा ना।
3: कैसी बातें कर रहे हैं आप बोस बाबू, जब परिवार की बहु बेटियां पढ़ी लिखी होंगी तो उससे तो पूरे समाज का लाभ होगा ना।
1: देखिए सिस्टर, ये बात मैं समझता हूँ, कुछ और पढ़े लिखे लोग भी समझते हैं, लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग न तो इस बात को समझता है और न मानने को तैयार है।
3: तब क्या ये स्कूल नहीं खुल सकेगा?
2: खुल सकेगा और खुलेगा। जिस कार्य के लिए तुमने इतना बड़ा त्याग किया है, माँ बहन भाई मित्र सहयोगी सब छोड़ छाड़ कर यहाँ आई हो, तुम्हारा वो कार्य अवश्य सिद्ध होगा, तुम्हारा विद्यालय अवश्य खुलेगा।
3: लेकिन वो शुभ दिन कब आएगा स्वामी जी?
2: उतावली ना हो निवेदिता, हर काम का समय निश्चित होता है। हाँ तो बोस बाबू
1: जी,
2: यही बोसपाड़ा में अगर कोई छोटा मोटा मकान किराए पर मिल जाए तो उसमें निवेदिता अपना विद्यालय खोल सकेंगी।
1: मकान की व्यवस्था आप मेरे जिम्मे छोड़ दीजिए स्वामी जी, किंतु मेम साहब के पास घर का कामकाज करने के लिए कोई स्त्री तैयार होगी या नहीं, इस विषय
2: वो व्यवस्था हो गई है। माँ शारदा मणि के पास एक वृद्धा ब्राह्मणी आती थी, गोपाल की माँ, उससे माँ ने कहा तो वो निवेदिता का खाना बनाने और घर द्वार संभालने के लिए राजी हो गई।
1: चलिए, तब तो ये चिंता भी दूर हुई, अब केवल आपके लिए छात्राओं की व्यवस्था कर ली है। वैसे एक छात्रा तो मेरे घर में भी है, मेरी छोटी लड़की चुन्नी। मैं चाहता हूँ कि वो भी कुछ पढ़ना लिखना सीख ले, पर उसकी माँ किसी भी तरह तैयार नहीं होती, कहती है कि अगर चुन्नी पढ़ लिख गई तो फिर कोई उससे शादी नहीं करेगा।
3: अरे वाह, ये तो उल्टी बात हुई, आजकल के पढ़े लिखे युवक तो चाहते हैं कि उनकी पत्नी भी पढ़ी हो। बोस बाबू, आप मुझे एक बार मिसेस बोस से मिलवा सकते हैं? शायद मैं उन्हें चुन्नी को स्कूल भेजने के लिए राजी कर सकूं।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए मैं आपको भीतर ले चलता हूँ।
2: जाओ निवेदिता, शायद ये चुन्नी ही तुम्हारी पहली शिष्या हो।
4: इस तरह स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से और बलराम बोस जैसे कुछ और समझदार लोगों के सहयोग से 13 नवंबर 1898 को बाग बाजार के बोस पाड़ा लेन के एक छोटे से मकान में निवेदिता ने अपनी कन्या पाठशाला का शुभारंभ किया। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी मां शारदामणि भी इस अवसर पर उपस्थित थी। निवेदिता अपनी थोड़ी सी छात्राओं को केवल लिखना पढ़ना ही नहीं अपितु चित्र बनाना, सीना पिरोना, हिसाब किताब रखना, सभी कुछ सिखाकर उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना चाहती थी। लेकिन परंपरागत शिक्षा के आदि लड़कियों के माता पिता शिक्षा के इस ढंग को बिल्कुल समझ नहीं पाए।
5: गुड मॉर्निंग गर्ल्स।
6: गुड मॉर्निंग दीदी।
3: ये सुभाषिनी आज फिर नहीं आई, क्या बात है, बीमार तो नहीं पड़ गई? चारू, तुम गई थी उसके घर?
7: हाँ दीदी, आज मैं उसके घर गई थी। उसकी माँ कहने लगी, इश ये कैसा स्कूल है जी तुम्हारा, वहाँ हम लड़की को पढ़ने भेजते हैं या खिलौनों से खेलने?
3: फिर तुमने क्या कहा?
7: मैंने कहा कि हमारी निवेदिता दीदी खिलौनों से खेलने को कहती हैं और फिर ना जाने कैसे खेल खेल में हमें बहुत सारी बातें सिखा देती हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता। इस पर वो बोली कि आज वो स्वयं आपसे मिलने आएंगी।
3: अच्छा ठीक है, तुम तो आज हमें अल्पना बनाकर दिखाने वाली थी ना चारू?
7: हाँ दीदी।
3: ये लो कागज और रंगीन पेंसिल, एक सुंदर सी अल्पना बनाकर उस पर अपना नाम लिखो। और चुन्नी, तुम मुझे कल वाली कविता सुनाओ तो।
8: क्या मैं अंदर आ सकती हूँ?
7: दीदी ये माशी माँ है, सुभाषिनी की माँ।
3: आइए आइए ना माँ, वहाँ द्वार पर ही क्यों खड़ी है, भीतर आइए ना। जाते चारू, माशी माँ के लिए एक आसन तो ले आ।
8: अच्छा दीदी।
3: नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आप हमारे विद्यालय की पहली अतिथि हैं, हम आपको ऐसे खड़े खड़े ही थोड़ी लौट जाने देंगे।
7: दीदी ये लीजिए आसन।
3: बैठिए ना माँ। सुभाषिनी कहती है आप बहुत सुंदर गाती हैं, आप हमारी लड़कियों को चंडीदास के एक दो गीत जरूर सुना कर जाइएगा। किंतु मेरे गाने से इनकी पढ़ाई का हर्ज नहीं होगा, क्या कहती है माँ? आप गीता भागवत का पाठ करती हैं तो उनसे आपको कुछ नहीं मिलता?
9: क्यों नहीं मिलता, जो गीता का उपदेश समझ ले उसका तो जीवन ही सुधर जाए।
3: वही तो मैं भी कहती हूँ, शिक्षा का मतलब केवल अक्षर ज्ञान थोड़ी है, शिक्षा का मतलब है व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। आप जो घर में सुभाषिनी को अल्पना बनाना सिखाती हैं, उसे पहनने ओढ़ने का सलीका सिखाती हैं, वो भी तो शिक्षा ही है ना माँ?
9: हाँ सो तो है।
3: मेरी लड़कियाँ जीवन के हर पक्ष से, हर रंग से शिक्षा प्राप्त करती हैं, मैंने इसीलिए ये स्कूल खोला है माँ।

उन्होंने कलकत्ता में स्त्री शिक्षा का जो नन्हा सा दीप जलाया था वो बढ़कर एक अखंड ज्योति में परिवर्तित हो गया। पर निवेदिता सिर्फ इतने से ही संतुष्ट नहीं थी, वे चाहती थी कि भारत मुक्त हो, अज्ञान से मुक्त हो, निर्धनता से मुक्त हो और विदेशी दासता से मुक्त हो। उनका घर बंगाल के कितने ही क्रांतिकारियों का आश्रय स्थल था और उस समय जब वंदे मातरम का उच्चारण भी अपराध समझा जाता था, निवेदिता के विद्यालय में प्रतिदिन सरस्वती वंदना के साथ वंदे मातरम का स्वर भी गूंजता था।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपए तक के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई लेन देन और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेन देन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले यूपीआई लेनदेन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेनदेन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल संयुक्त रूप से करेंगे। सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने के प्रयास में है। 5 दिन की ये वार्ता कल से शुरू हुई जो 18 सितंबर तक चलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को सुदृढ़, सक्रिय, समयबद्ध और बेहद कारगर बताया है। नई दिल्ली में कल राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान के 6वें संस्करण में उन्होंने ये बात कही। साथ ही मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका में निरंतर सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशो भूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वादा कर पैसे वसूले थे। अमेरिका

0: और अब हमारे श्रोताओं को बताइए कि आज एक बहुत बड़ी समस्या और है, डायबिटीज के मरीज बढ़ रहे हैं और थायराइड की समस्या ज्यादातर हो रही है, तो क्या आहार के जरिए, सही न्यूट्रिशन के जरिए क्या इस पर नियंत्रण किया जा सकता है?
1: अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो अगर आपके फैमिली में या आपके परिवार में माता पिता को, चाचा चाची को, जो इमीडिएट फैमिली होती है, तुरंत आपके माता पिता, भाई बहन, किसी को भी डायबिटीज़ है, आपको डायबिटीज़ होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको ये जानकारी है तो आपको आपके आहार या पोषण का ध्यान पहले से रखना शुरू कर देना चाहिए। आपके खाने में क्या होना चाहिए ये आप समझ गए तो आप अपने ब्लड शुगर को आराम से मैनेज कर पाओगे, आपको डायबिटीज के लेवल पे आप पहुंचोगे नहीं। अगर आप प्री डायबिटीज के लेवल पे किसी वजह से पहुंच गए, सही आहार से आप उसको रिवर्स कर सकते हो। अगर आपका लेवल डायबिटीज में चला गया और आपको डॉक्टर ने डायग्नोस कर लिया कि आपको डायबिटीज है या आपको शक्कर की बीमारी लग गई है, तो उस वक्त के बाद से आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब वो चला जाएगा ऐसा हो नहीं सकता। उस लेवल के बाद से आप बस वो शक्कर की मात्रा को कंट्रोल में रख सकते हैं, तब भी आपको आहार की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो टाइप का आपको डायबिटीज है, भले वो जेस्टेशनल डायबिटीज जो कि प्रेगनेंसी में होता है, टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, उसके हिसाब से और आपको कौन सी दवाएं दी जा रही है और आपका करंट ब्लड शुगर कितना है, उस हिसाब से आहार को डिजाइन किया जाता है, ताकि आपका जल्द से जल्द शुगर कंट्रोल में आए, आपको दवाइयां कम लेनी पड़े, या अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो वो अच्छे से आपके ऊपर काम करे कम से कम डोज में। तो आहार इतनी आपकी हेल्प कर सकता है कि आपका 16-15 ऐसा HbA1c है तो वो 7-6 पे भी लेकर आ सकते हैं 3 से 4 महीने में।
0: जी बिल्कुल।
1: बट लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट, दवाई ले लेंगे मगर खाना नहीं छोड़ेंगे, और यहाँ पे दिक्कत आती है। बिना खाने को ठीक किए आपकी दवाई काम नहीं करने वाली है या कम काम करेगी।
0: बिल्कुल सही बात है, मतलब कि हमारे जीवन में सही

0: और संतुलित आहार का बहुत महत्व है।
1: बहुत महत्व है।
0: अदिति जी, हमें बताइए कि सप्लीमेंट की कितनी जरूरत होती है पोषक तत्वों के साथ साथ? कई बार लोग खाना पीना तो ठीक ठाक रखते हैं, उसके बावजूद उन्हें विटामिन की कमी होती है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो सप्लीमेंट किस तरह से लेना चाहिए और कितना इसका महत्व है और कितनी हानि है?
1: सप्लीमेंट कुछ लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, कुछ लोगों के लिए वो जरूरी नहीं है। अगर आप संतुलित आहार ले रहे हैं, आपका रहन सहन सही है, नींद ठीक है, पानी ठीक है, आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं है, तो अक्सर आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। मगर अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं या आपके रिपोर्ट्स में आ गया कि आपको कोई विटामिन या मिनरल की कमी है, तो कभी कभार आपको वो लेने पड़ते हैं।
0: जी,
1: जो भी आप सप्लीमेंट ले वो हमेशा डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह से ले, और डाइटिशियन आपको दवाई नहीं दे सकते हैं। डाइटिशियन आपको विटामिन मिनरल के बारे में जरूर बता सकते हैं, मगर ये विटामिन और मिनरल भी एक समय के लिए लेना चाहिए, एक उसका विशिष्ट रूप होता है जिस तरीके से लेना चाहिए। और विटामिन मिनरल्स ऐसी चीज है जिसका कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है सप्लीमेंट में, तो वो पेशेंट की जरूरत के हिसाब से हम देते हैं, बिना किसी की सलाह के, बस इसलिए क्योंकि विटामिन मिनरल मिल रहा है और किसी दोस्त ने या रिश्तेदार ने बता दिया आपको विटामिन ये लेना है, कैल्शियम ये लेना है, आपको वो अवॉइड करना चाहिए। अगर सलाह दी है तब भी ले लीजिए, और उतने वक्त के लिए ही लेना जितना बताया गया है।
0: बिल्कुल,
1: वो सही वक्त पे लेना, सही तरीके से लेना जरूरी है। अभी कौन से विटामिन मिनरल ज्यादातर लगते हैं? अगर आपकी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, मतलब आपके शरीर में कोई भी विटामिन या मिनरल की कमी बहुत ज्यादा है, तब आपको सप्लीमेंट की जरूरत लगती है। उसके साथ साथ आपको आहार को भी आपके ठीक करना पड़ता है, क्योंकि आपका जो रोज का आहार है वो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आपकी जरूरतें पूरा करेगा। सप्लीमेंट जो कि आपका बैकलॉग है, जो कि आपके शरीर में ऑलरेडी कम है, वो चीजें को भरेगा, तो वो सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। वैसे ही जैसे विटामिन डी की बात करें, तो विटामिन डी का मेन तो धूप से मिलता है, मगर हम आजकल धूप में ज्यादातर जाते नहीं
0: हैं,
1: या फिर हम पूरे कपड़े पहनते हैं, या ऐसे कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्रीम्स या कुछ भी शरीर पे, जिससे विटामिन डी अब्सॉर्ब नहीं होता।
0: अच्छा।
1: और खाने में विटामिन डी की मात्रा कम है, तो आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप विटामिन डी बहुत, क्योंकि कम है, सबको कम होता है, हम हर रोज लेंगे या हर हफ्ते लेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि विटामिन डी फैट सॉल्युबल है, उससे आपकी बॉडी में विटामिन डी स्टोर हो सकता है और आपको टॉक्सिसिटी हो सकती है। सो बिना सलाह किए कभी भी उनको नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज, आप कोई भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं या कोई डाइटिशियन के पास जा रहे हैं, आप जो भी सप्लीमेंट ले रहे हैं, एक चिट्ठी पे लिख के उन डॉक्टर को थमा दीजिए कि मैं ये ऑलरेडी ले रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि दिक्कत ये हो जाती है, आप एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने भी कैल्शियम दिया, किसी और ने भी कैल्शियम दिया, और आपने उनको बताया नहीं, तब भी ज्यादा हो सकता है आपके लिए। तो सप्लीमेंट कभी भी कितने भी आसानी से मिले, कितने भी करीबी रिश्तेदार ने आपको बताए हो, बिना जांच पड़ताल या बिना कोई प्रोफेशनल सलाह के नहीं लेने चाहिए।
0: जी बिल्कुल। एक गाना सुनते हैं यहाँ पर।
1: जी,
0: कौन सा गाना आपके पसंद का?
1: आजकल तेरे मेरे प्यार।
0: जब सेहत सही रहती है तो भाई जाहिर सी बात, मन ठीक रहता है।
1: हाँ,
0: मन में अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे तो प्यार की भावना भी उपजती है।
1: Absolutely.
0: सुनते हैं ये गाना।

0: अदिति जी, हमें बताइए कि कुछ लोगों का ये मानना होता है कि खाने से पहले एक गिलास पानी पी लो, खासतौर से वो लोग जो वजन घटाने की मुहिम चला रहे होते हैं। और कुछ लोगों का ये मानना होता है कि खाने के बीच बीच में पानी पीते जाओ थोड़ा थोड़ा। और कुछ लोग ये मानते हैं कि खाना खाने से पहले ना तो पानी पीना है, ना खाने के दौरान, ना खाने के बाद। ये जरा स्पष्ट कीजिए, क्या करना चाहिए?
1: इस सवाल का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है, और मैं वही सोच रही हूँ कि सही अल्फाज क्या है इसके लिए, थोड़ा स्पष्टीकरण देने के लिए, क्योंकि ये सब विचारधारणा है। ये किसी किसी को आप अप्लाई कर सकते हो, हर किसी के लिए नहीं है। सीधी बात है, आपको पानी लगता है, आप पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप खाने के पहले एक गिलास पानी पियोगे, क्या हो जाएगा, आपके खाने पे असर पड़ेगा,
0: भूख कम हो जाएगी
1: आपकी
0: तुरंत।
1: भूख कम तो हो जाएगी, मगर ऐसा भी हो सकता है आप कम भूख के कारण खाने की कोई विशिष्ट चीज जो आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है आप
0: जरूरी
1: उसी को निकाल दो।
0: जी जी
1: जैसे भूख कम हो गई तो आपने रोटी सब्जी कर ली, दाल छोड़ दी, तो आपको दिक्कत देगा। अगर आप कर रहे हो तो उसके पीछे का शास्त्र समझ लो कि आप पानी पी रहे हो ताकि आपकी थोड़ी भूख कम हो जाए, मगर ऐसा करने के बाद अगर आपको 4 बजे बड़ी जोर की भूख लग रही है तो फिर क्या ही फायदा उस चीज करने का।
0: बिल्कुल।
1: वैसे ही आप पानी आधा घंटे पहले मत पियो, आधा घंटे बाद मत पियो, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। पानी किसको संभाल के पीना चाहिए? कुछ लोग जो होते हैं ना, जो खाना खाने के वक्त पे कम चबाते हैं, या उनको चबाना पसंद नहीं आता, तो ऐसे लोग जो है थोड़ा चबा लेते हैं खाना, बाकी पानी पी के उसको थोड़ा सा गटक लेते हैं। मुझे उसका सही अल्फाज नहीं पता, बट उसको पूरा स्वॉलो कर लेते हैं।
0: जी जी जी
1: तब आपके खाने की मात्रा बहुत कम हो जाती है और आप पानी से ही आपके खाने को अंदर ढकेल रहे हो। ये आपको तकलीफ देगा, और बहुत ज्यादा तकलीफ देगा, आपके डाइजेशन के हिसाब से भी तकलीफ देगा और आपको भूख के हिसाब से भी तकलीफ देगा। ऐसे वक्त पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा सिप सिप करके पानी पी रहे, घूट घूट लेके पानी पी रहे खाने के दौर में, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
0: जी बिल्कुल। और एक सवाल और है, वो ये कि एक वक्त में दो अनाज खाएं, एक अनाज जैसे कि या तो दाल चावल खाएं या फिर रोटी सब्जी खाएं, रोटी सब्जी शाम को खा लें, दिन में दाल चावल खा लें, ऐसा लोग बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पूरी थाली, जैसे पुराने जमाने में पूरी थाली सजा के खाई जाती थी, तो आपका क्या कहना है?
1: इसमें सीधी सी बात है, धान धान होता है, आपको आखिर में देखना है धान की मात्रा आपकी थाली में कितनी है। आप अगर रोटी भी कर रहे हैं और चावल भी कर रहे हैं और आपकी आधी थाली उसी से भर रही है, तो उसमें दिक्कत है। हमने क्या बात की थी कि थाली में 1/4 धान होना चाहिए। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि आप रोटी सब्जी अलग करें, दाल चावल अलग करें या साथ में करें। प्रॉब्लम ये आती है या दिक्कत ये आती है जब आप उसका प्रमाण बदल देते हो। अगर आपकी थाली में रोटी सब्जी है

0: मगर आप सब्जी को अचार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, और दाल चावल है मगर आप दाल को अचार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो कम मात्रा में,
1: जी,
0: तब आपकी थाली का संतुलन बदल जाता है। और 90% लोगों का यही इशू होता है कि उनकी थाली में आधे से ज्यादा धान होता है, एक छोटी मात्रा में सब्जी होती है और बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होता है।
1: जी, खाने का सही तरीका बहुत जरूरी है, और जिसको पित्त की समस्या, एसिडिटी की समस्या हो, तो उसे तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत गलत फहमी है लोगों में कि कब क्या खाएं, दो भोजन के बीच में कितना गैप होना चाहिए।
0: इसका कोई एक सरल फॉर्मूला तो है नहीं, क्योंकि हर इंसान अलग होता है। किसी किसी को दिन में 3 बार खाने की आदत होती है, किसी को 5 बार खाने की आदत होती है। मुझे ऐसे लगता है, और मैं हमेशा पेशेंट्स को भी यही बताती हूँ, कि आपकी जो जिंदगी है, आपका जो रूटीन सेट है, आप उस तरीके से काम करो। अगर आप 3 बार खाते हो, 3 बार खा लीजिए, मगर ये देखिए कि वो आहार संतुलित हो। अगर हम बात करें भूख की, दिक्कत ये है शहर में आजकल लोगों को यही समझ नहीं आता भूख कब लग रही है और प्यास कब लग रही है। बस 1 बज गया है तो अभी लंच करने जाना है, ये समझ में आता है। तो सबसे पहले आपको अपने शरीर को समझना जरूरी है कि मुझे भूख कब लग रही है, मुझे प्यास कब लग रही है।
1: तो क्या जब भूख लगे तभी खाना चाहिए या
0: ऐसा
1: टाइम?
0: जरूरी नहीं है, शरीर को जरूरत है उसकी समझे, और आप अपना रूटीन सेट करें उस हिसाब से। अब मैं ये कहूंगी, पहले तो रूटीन सेट करिए और उस वक्त पे आपके बॉडी को ट्रेन करिए कि आपको उस वक्त पे भूख लगे। मगर भूख लगना उस वक्त पे जरूरी है, बस 1 बजा है इसके लिए मुझे खाना है, ये नहीं होना चाहिए। मुझे 1 बजे भूख लगनी चाहिए क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, ये होना चाहिए। जब आपको भूख लगेगी, वही अनाज वही थाली आपको अच्छे से, शरीर आपका उसको एब्जॉर्ब करेगा। आपके 2 खाने के बीच में कितना गैप होना चाहिए ये निर्भर करता है आप कितनी मात्रा में खाते हो। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग क्वांटिटी में ज्यादा खाते हैं, खाने की मात्रा उनकी ज्यादा होती है, और कुछ लोग होते हैं जो एक वक्त पे 1 रोटी या 2 रोटी के ऊपर नहीं खा सकते। जो कम खाते हैं उनको कई बार थोड़े थोड़े अंतर पे खाना जरूरी है, तो 2-3 घंटे के अंतर पे आप थोड़ा थोड़ा खा लेंगे अच्छा रहता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपकी खाने की मात्रा ज्यादा है तो आप दिन में 3 बार खा लोगे, आप ठीक रहोगे। अगर आपको जैसे एसिडिटी या गैस की दिक्कत है तो आपको थोड़ा थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। आपको ब्लड शुगर की इश्यू है तब भी आपको थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए ताकि आपका शुगर स्टेबल रहे। अगर आप दिन में 3 बार खा रहे हो जस्ट इसलिए कि अभी ट्रेंड चल रहा है दिन में 1 बार खाने का, आप डायरेक्टली 3 से 1 पर आ गए, वो दिक्कत करेगा।
1: जी, अभी 2 टाइम का भी चल रहा
0: बहुत
1: है
0: ज्यादा
1: फैशन कि सिर्फ 2 टाइम खाना खा रहा है। यहाँ पर एक जरूरी बात जहन में आई है, वो ये कि कई बार लोग एक साथ खाना खाने बैठते हैं तो सलाद भी रख लिया, दही भी रख लिया, फल भी रख लिया काट के, और पूरी थाली भी।
0: हाँ,
1: तो क्या फल और खाना एक साथ खाना चाहिए या उसे बीच में गैप देना चाहिए?
0: हमेशा मुझे ऐसे लगता है कि फल ऐसी चीज है जो हमारे पूरे खाने में, हम उसे बिना पकाए खाते हैं,
1: जी,
0: तो उसे ऐसे वक्त पे खाएं जहां आप उसका मजा अलग से ले पाए।
1: जी
0: जहां पका हुआ खाना जा रहा है वहां पे वो होना चाहिए। सलाड आपके खाने में जा सकता है, वो कच्चा होता है, मगर सलाड हर किसी को सूट करता है ऐसा नहीं है। इसका मतलब कच्चा खाना सबके लिए है नहीं,
1: जी बिल्कुल
0: आपकी सेहत के हिसाब से, आपके पेट कैसा काम कर रहा है उस हिसाब से आपका सलाद पका हुआ हो या कच्चा होना चाहिए, ये देखना आपको जरूरी होता है। फल आपको हमेशा अलग से ही खाने होते हैं, और कभी भी फल के साथ आपके नट्स जाने चाहिए। अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लें कि नॉर्मली लोग 8-9 बजे नाश्ता कर लेते हैं, 1 बजे खाना खाते हैं, और जो रात का खाना होता है वो अक्सर 8-9-10 बजे चला जाता है। तो आपके दोपहर के खाने और रात के खाने में बहुत बड़ी गैप हो जाती है। तो ऐसे वक्त पे इसके बीच में वहां पे फल और आपका जो नट्स है वो बहुत आसानी से इस्तेमाल हो सकता है। अभी आपको ये भी देखना है कि 5 से 7 के बीच में ही आपको समोसे चाट की जरूरत पड़ती है, तो वो भूख लगने के पहले और आपके दोस्त आपको बताने के पहले कि चलो हम जाके समोसा
1: जी
0: खाते हैं, उस वक्त पे आपका फल और नट्स खा लीजिए और
1: हाँ
0: आपकी सेहत बढ़िया रहेगी।
1: जी, एक गाना सुने,
0: जी
1: कौन सा?
0: क्यों ना, ये जीवन है
1: इस
0: पिया
1: जीवन
0: का घर,
1: जी इस जीवन का यही
0: इस
1: है रंग
0: जीवन का।
1: रूप।

0: और कुछ लोगों का ये भी मानना है रोटी के मामले में कि गेहूं की रोटी नहीं पचती है, देर से पचती है, और मोटा अनाज ज्वार बाजरा और नाचनी, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
1: अगर हम गेहूं की बात करें, एक ट्रेंड चल रहा है जहां पे लोग बोलते हैं कि गेहूं बहुत बुरा है। गेहूं हर किसी के लिए बुरा नहीं है। अगर आपको एलर्जीज हैं या IBS IBD जैसे कोई मेडिकल कंडीशन है, तब आपको, या आप गेहूं जब भी खाते हो आपको थोड़ी बहुत डाइजेशन की इश्यू होती है, गैस की इश्यू होती है, तब गेहूं दिक्कत दे रहा है आपको और तब आपको उसको अवॉइड करना चाहिए।
0: तो वहां
1: मतलब
0: पर
1: आपकी थाली में गेहूं नहीं होना चाहिए या कम मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि वो आपको तकलीफ दे रहा है। बाकियों को गेहूं से दूर रहने की कोई जरूरत नहीं है। कि आप गेहूं कौन से तरीके का यूज कर रहे हो ये देखिए।
0: जी।
1: जिसमें आपके पास खपली गेहूं है जो सबसे बेहतर है, उसके बाद आपके पास अलग अलग तरीके के गेहूं हैं, आप कौन सी वैरायटी यूज कर रहे हो ये भी देखिए। और उसमें आप जो गेहूं के ऊपर का छिलका होता है, ब्रान होता है, वो इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं खाने में, रोटी में, ये देखिए, आप सही रहोगे। रोटी गलत नहीं है, रोटी हर किसी को तकलीफ देती है ऐसा भी नहीं है। अगर हम ज्वार बाजरा की बात करें, मिलेट्स बहुत ज्यादा चर्चा में है एक दो
0: बिल्कुल
1: सालों से, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मिलेट्स हम पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं अपने देश में, आज उसकी मात्रा बहुत बढ़ गई है, मगर लोगों को उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना आज भी नहीं आता है। ये जो मिलेट है या मोटे अनाज है, ये बहुत बार आप देखोगे थोड़े सूखे या ड्राई टेंडेंसी के होते हैं। ये कम खाएंगे तब भी आपको एकदम ऐसे लगेगा कि भरा भरा पेट लग रहा है या पेट बहुत टाइट हो रहा है, या आप और एक ज्वार की रोटी के ऊपर नहीं खा सकते। अच्छे हैं मगर वो भी सही मात्रा में आपके दिन में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको थायराइड जैसा इशू हो और आप पूरी तरीके से मिलेट्स पे रह जाए, आपको दिक्कत होगी। तो एक संतुलन गेहूं और मिलेट्स के बीच में रखना, चावल के बीच में रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने वो संतुलन जमा लिया तो आपका पेट सही रहेगा। दूसरी चीज मुझे ये हमेशा दिखती है कि कुछ लोग जो होते हैं ना, आंकड़ों के पीछे पड़े रहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि उनके प्लेट में उनको या थाली में उनको दो रोटी चाहिए होती है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो गेहूं की है, ज्वार की है, बाजरा की है। अभी ये दिक्कत है कि एक फुल्का या एक रोटी जो है 20 से 30 ग्राम आटे की बनती है, और एक ज्वार की रोटी जो है 50 से 60 ग्राम आटे की बनती है।
0: बिल्कुल
1: तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपने ज्वार बाजरा जो भी है वो बहुत ज्यादा मात्रा में खा लिया, जहां कि आप रोटी एकदम हल्के फुल्के में काम चला लेते हैं।
0: तो पाचन पर असर पड़ेगा।
1: जी, तो ये लोग सोचते ही नहीं है क्योंकि ये उन्होंने कभी उस तरीके से सोचा ही नहीं है। तो ये आपको देखना जरूरी है कि आपकी पाचन क्रिया कैसी है, आपका पेट कैसा है, क्या आप मिलेट्स को डाइजेस्ट कर पा रहे हो, और अगर आप मिलेट्स को आपके खाने में, रोजमर्रा की जिंदगी में इंट्रोड्यूस करना चाहते हो या डालना चाहते हो, आप किस तरीके से डाल रहे हो।
0: जी
1: आप अगर मिलेट्स बिल्कुल भी नहीं खा रहे तो तुरंत से पूरे हफ्ते मिलेट्स ना करें, हफ्ते में एक दो बार करें, फिर 3-4 बार करें, धीरे धीरे मिलेट्स की आदत लगाएं। और ज्वार बाजरा नाचनी के आगे भी हमारे पास धान है, उसका
0: जी
1: भी इस्तेमाल करें, जैसे कोड़ो हो गया, कांग हो गया, पोरसो हो गया, महाराष्ट्र में वरी हो गया, ये सारे भी तो धान हैं, वो भी तो
0: जी
1: इस्तेमाल कर सकते हैं। सूडो मिलेट्स हैं जैसे कि किनवा हो गया, कुट्टू हो गया, बकवीट जिसे बोला जाता है। किनवा को तो हिंदी मराठी नाम है नहीं, किनवा को किनवा ही बोलते हैं।
0: सावा।
1: नहीं,
0: अच्छा
1: सामा है जो कि होता है महाराष्ट्र में वरी, बार्नयार्ड मिलेट। तो ये
0: जी।
1: सारी चीजें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। हमें सिर्फ रोटी और उसके आगे ज्वार बाजरा नाचने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है। हमें बस कुछ चीजें पता नहीं है और कुछ चीजें हमें इस्तेमाल करनी नहीं आती। तो आप सही तरीका सीख लो तो हो जाएगा। जब भी आप मोटे धान की बात करें और आप अगर अक्खा धान यूज कर रहे हैं तो उसको अच्छे से 4 से 6 घंटे भिगो के रखना बहुत जरूरी है, और सही मात्रा में पानी डाल के उसको पकाना बहुत जरूरी है। उसके साथ आप किस तरीके की सब्जी खा रहे हो, अगर आप मोटा धान इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके साथ जो सब्जियों में पानी का अंश ज्यादा होता है, जैसे दूधी हो गया, कद्दू हो गया, पेठा हो गया, इसका इस्तेमाल ज्यादा करें, तो वो आपका सूखी रोटी और उसके साथ गीली सब्जी, ये थोड़ा सा बैलेंस आपके पेट के लिए बहुत अच्छा ठहरता है।
0: अच्छा, क्या बात है
1: तो
0: ये
1: ये
0: तो।
1: थोड़ा संतुलन आपको समझना चाहिए और आपको धीरे धीरे अपने खाने को उस तरीके से बदलना जरूरी है।
0: एक गाना सुने
1: जी,
0: कौन सा
1: आप भी बता दीजिए कोई गाना।
0: सुनते हैं ये गाना।
1: एक

0: जो आप धान की बात कर रही थी, धान में ये सारी चीजें आती हैं।
1: जी
0: धान में सिर्फ वो चावल जो हम रोज खाते हैं वो नहीं,
1: हाँ
0: बल्कि कोदो और जो नाम
1: बहुत
0: आपने
1: ज्यादा।
0: बताया।
1: और आप अगर चावल की ही बात करें तो भारत ऐसा देश है जहां हमारे पास 150-200 तरीके के चावल है,
0: बिल्कुल,
1: मगर हम एक ही चीज जानते
0: सिर्फ
1: हैं,
0: खुशबूदार
1: सफेद
0: चावल।
1: चावल,
0: बिल्कुल, और खुशबू।
1: खुशबूदार चावल, बासमती चावल, इतना ही जानते हैं। थोड़ा हमारे जो चावल के अनाज है जो हमारे पास है, जैसे अंबे मोहर है, मट्टा है केरला का, या असम का ब्लैक राइस है, जो आपके यहाँ है, या कृष्ण कमोद है, आप वो चावल का
0: ब्राउन
1: इस्तेमाल
0: राइस
1: करें।
0: भी एक आता है।
1: ब्राउन राइस आता है, मगर उससे अच्छा हमारे पास बहुत सारे चावल है। अनपॉलिश्ड वैरायटी का चावल इस्तेमाल करें या सेमी पॉलिश्ड वैरायटी इस्तेमाल करें। बहुत खुशबूदार, बहुत फ्लेवरफुल चावल आते हैं हमारे पास। सफेद चावल में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं रहता है, उसका
0: अच्छा,
1: सब कुछ निकाला हुआ होता है, बस हल्का सा बी विटामिन्स आपको मिल जाएगा, बाकी सब वो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट है।
0: क्या बात है, बहुत सही जानकारी आपने दी है। पहले ग्रामीण इलाकों में आज भी
1: आज भी वही
0: धान को
1: इस्तेमाल।
0: उबाल कर चावल बनाया जाता है, वो उसको उसना चावल कहते हैं,
1: हाँ,
0: वो बहुत
1: हमारे यहाँ
0: मोटा
1: उकड़ा
0: होता है।
1: तांदूल बोलते हैं
0: हाँ
1: महाराष्ट्र में, जहाँ हम वही राइस को यूज करते हैं,
0: जी जी जी
1: जिसमें अच्छा ब्रांड भी होता है, विटामिन भी होते हैं,
0: हाँ
1: वो मोटा होता है तो आप कम भी खाते हो।
0: अदिति जी, बहुत जरूरी मुद्दा है आजकल तेल के बारे में, कि पुराने जमाने में तो हम सबको याद है कि सरसों का तेल सब्जियों में इस्तेमाल होता था, और कुछ जगहों पर नारियल का तेल, साउथ में खासतौर से, अलग अलग जगहों पर। और आजकल तरह तरह के तेल हैं, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, सनफ्लावर, राइस ब्रॉन, तो बताइए कि कौन सा तेल सब्जियों के लिए सही होता है इस्तेमाल करना।
1: आप जिस जगह रहते हो उस जगह आपके आजू बाजू में कौन से पेड़ ज्यादा है, उस हिसाब से उस इलाके में वो तेल ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट की बारे में बात करें तो वहां पे आपको सरसों का इस्तेमाल ज्यादा मिलेगा। महाराष्ट्र की बात करें या साउथ की बात करें तो नारियल का तेल ज्यादा मिलेगा। आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है तो ये सारे तेल अभी हम सबको मिल रहे हैं। कोई तेल बुरा हम नहीं बोल सकते, हर तेल अपने तरीके से सही है। किसी के लिए वो अच्छा हो सकता है, किसी के लिए वो बुरा हो सकता है। मुख्य क्या होता है कि आपके खाने में तेल की मात्रा कितनी है। आप अगर आपके खाने में, जैसे एक इंसान को पूरे दिन में तेल की मात्रा 3 से 4 चम्मच रखनी चाहिए,
0: ओहो
1: छोटे चम्मच,
0: हो,
1: 5 ml के चम्मच, उसके ऊपर नहीं।
0: जी
1: मगर हम कभी गिन के थोड़ी ना तेल इस्तेमाल करते, अंदाजे से भिंडी की सब्जी को थोड़ा ज्यादा तेल डाल दिया, कोई पत्ते की सब्जी है तो उसमें कम तेल डाल दिया, हम स्वाद अनुसार तेल इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। अगर हम तेलों की बात करें कि कौन सा सबसे अच्छा होता है, सबसे पहले आप देखिए कि आपको मेडिकल इश्यूज है या नहीं। कुछ मेडिकल इश्यूज में कुछ तेल हम मना कर देते हैं, बाकी केस में अगर आपको कोई इश्यूज नहीं है, आप सेहतमंद है, आपको बस आपकी तबीयत का ख्याल रखना है, तो इसका सिंपल तरीका यह है कि आप पारंपरिक तौर से आप जो तेल खा रहे हो उसका इस्तेमाल करें, बाकी तेल भी अपने रूटीन में रखें, उसको थोड़ा सा साइकिल करें। मतलब अगर 1 महीना आप सरसों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा फिर राइस ब्रैन को लेकर आए, फिर आप सरसों पे चले जाए, फिर सनफ्लावर का इस्तेमाल करें, ऐसे थोड़े आप बदलाव लेकर आ सकते हैं। आखिर में आपकी तेल की मात्रा कितनी है ये मायने रखता है।
0: जी
1: कुछ तेल होते हैं जिनको बहुत बुरा नाम पड़ा है, जैसे पाम ऑयल है, क्योंकि ये ज्यादा करके पैकेज फूड, बेकरी आइटम्स में इस्तेमाल किया जाता
0: जी
1: है,
0: जी जी
1: तो हाँ ये बुरा है क्योंकि उसकी जो गुणधर्म है वो आपको तकलीफ दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप पैकेज फूड और प्रोसेस फूड कितना खा रहे हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: आखिर में गिन के आप पूरे दिन में तेल कितना खा रहे हो। और तेल भी दो तरीके से हम देखते हैं, नॉर्मल लोग सिर्फ तेल को गिनते हैं, हम डाइटिशियंस दो तरीके से देखेंगे,
0: जी
1: विजिबल सोर्सेस जो कि दिखते हैं, मतलब आपका तेल, घी, बटर, चीज, और दूसरा होता है इनविजिबल सोर्सेस, मतलब दूध में से आने वाला फैट, आपके नट्स में से आने वाला फैट, ये भी तो जरूरी है।
0: जी जी
1: तो अगर आप पूरे दिन में 2 मुट्ठी ड्राई फ्रूट ही खा रहे हैं और आपकी सब्जी तेल में तैर रही है
0: बिल्कुल
1: तो आप ज्यादा तेल खा रहे हो, आपको तकलीफ
0: होनी
1: होने
0: होनी
1: ही
0: है।
1: वाली
0: बिल्कुल,
1: है। आखिर में तेल की मात्रा कितनी है वो ज्यादा मायने रखती है। और अपने तेल को बदलते रहिए, कौन सा तेल अच्छा है, क्या केमिकली रिफाइंड तेल अच्छा है, फिजिकली रिफाइंड अच्छा है, वुड प्रेस्ड अच्छा है, कोल्ड प्रेस अच्छा है, तो फिजिकली रिफाइंड या घानी, वुड प्रेस, कोल्ड प्रेस, ये अच्छे हैं। जितना हो सके केमिकल जो फिल्टर्ड होता है वो थोड़ा सा दूर रखें। अगर शहर में रह रहे हैं या आपको दिक्कत है, आपको एक्सेसिबिलिटी या फाइनेंस का इशू है, तो आप जो भी तेल मिल रहा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको फाइनेंशियली अफोर्डेबल है तो घानी का तेल, कोल्ड प्रेस ऑयल, वुड प्रेस ऑयल, इसकी तरफ थोड़ा सा मुड़ जाइए। वो तेल थोड़ा सा गाढ़ा भी होता है, तबीयत के लिए भी अच्छा होता है और उसमें गुणधर्म भी अच्छे खासे होते हैं।
0: जी जी,
1: तो
0: जी,
1: वो इस्तेमाल आप कर सकते हो।
0: जी बिल्कुल, घानी का तेल यानी जो कोल्हू के बैल से निकाला जाता है ताजा तेल, सरसों का तेल खास तौर से होता है। एक गाना सुनते हैं यहाँ पर।
1: जी।

0: और घी के बारे में भी बताइए। घी के बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियां, लोग चुपड़ के घी खाते हैं कुछ लोग कहते हैं कि अरे इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, घी खाते ही नहीं, तो घी क्या है बताइए।
1: घी भी फैट का एक ही रूप है। आप तेल खाओ, घी खाओ, बटर खाओ, चीज खाओ, उसके रूप अनेक है।
0: अच्छा।
1: आखिर में मात्रा आपकी मैटर करती है, जो कि मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि दिन में आपकी 3 से 4 चम्मच तेल होना चाहिए, उसमें घी भी आता है। आप 4 चम्मच घी इस्तेमाल करना चाहते हो या उसमें से 1 चम्मच घी इस्तेमाल करना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। क्या घी खाने से फायदा है? हाँ, पेट के लिए अच्छा है, तबीयत के लिए अच्छा है। आप वेट गेन करने की कोशिश कर रहे हो तब भी आपको फायदेमंद ठहरेगा। अगर आपको ब्लॉकेज इश्यूज है, हार्ट इश्यूज है, या आपको कोई मेडिकल बाकी के कंडीशन है, तो आपको घी को थोड़ा कंट्रोल में रखना जरूरी है। अगर आप घी नहीं खाते हो, क्या आपको कोई नुकसान है? नहीं, बिना घी खाए भी आप अच्छे खासी जिंदगी निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको घी खाना जरूरी है जिंदगी में। तो आखिर में आप कितनी मात्रा में खा रहे हो, ये महत्वपूर्ण है।
0: जला हुआ घी नहीं खाना चाहिए, पराठे
1: नहीं
0: के रूप
1: जी,
0: में, पूड़ी और पराठे के
1: बहुत
0: रूप
1: ज्यादा।
0: में। अदिति जी, घी तेल सब कुछ शामिल हो गया, और हर खाने में मिठाई भी शामिल होता है। कुछ लोगों के साथ तो ये दिक्कत है कि हर खाने के बाद उनको मीठा चाहिए, तलब होती है। तो ये मिठाई के खाने के बारे में बताइए कि खाने के बाद, खाने के साथ खाना जरूरी है, खाने से पहले या बाद में, या नहीं खाना चाहिए?
1: अगर आप मिठाई खाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिठाई की जरूरत नहीं है। शक्कर कम खाने से आपकी शक्कर कम नहीं होने वाली। मिठाई भी शक्कर का ही एक अलग रूप है, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं। अगर आपके पूरे दिन में आपके आहार में कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण बहुत ज्यादा है, तो मिठाई उसे और बढ़ाएगा। और मिठाई जो है, छोटा बम बड़ा धमाका है। छोटे से बाइट में बहुत ज्यादा कैलोरीज होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा फैट भी होता है, और उतनी ज्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाते हैं। तो क्या मिठाई जरूरी है? नहीं। अगर आप मिठाई हर खाने के बाद खाना चाहते हो, तो ये आपको कम करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, आपकी तबीयत के हिसाब से। तो एकदम से अचानक से अगर आप बंद नहीं करना चाहते, पहले तो दिन में एक ही बार कर लीजिए, और फिर उसी मिठाई के थोड़े से हेल्दी रूप थोड़े से देख लीजिए। जैसे आपको खजूर मिल जाएगा, या आपने थोड़ा चना और गुड़ ले लिया, या आपने छोटा चिक्की चिक्की का टुकड़ा ले लिया, आप इसका इस्तेमाल करें, ना कि गुलाब जामुन या और कोई तली हुई मिठाई, मावा जलेबी, इसका इस्तेमाल करें। जैसे मैंने कहा, आखिर में पूरे दिन में आपने कार्बोहाइड्रेट कितने खाए हैं वो मायने रखता है। कुछ लोग जो है खाने में भी शक्कर और गुड़ का इस्तेमाल बहुत करते हैं, तो मतलब आप चाय में शक्कर गुड़ खा रहे हैं, आपके खाने में गुड़ और शक्कर जा रहा है, और फिर आपकी मिठाई में भी शक्कर है। तो आपने यहाँ फॉर्मूला बना लिया आपका ब्लड शुगर बढ़ाने का।
0: जी
1: इससे आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा, क्योंकि आप हर जगह पे मिठाई खा रहे हो। अभी कुछ लोग बोलेंगे, हमें तो ब्लड शुगर नहीं है, हम तो जिंदगी भर खा रहे हैं। अच्छी बात है, हो गए, आपकी तबीयत उतनी अच्छी है, हो गया। मगर क्या ये हर कोई कर सकता है? नहीं, वो हर किसी को तकलीफ दे सकता है।
0: जी
1: तो मिठाई भी आखिर में आपको ये देखनी है कि क्या ये मेरे को फायदा देने वाली है। आज के टाइम में हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी मिठाई आ रही है, जो कि आपकी तबीयत को भी संभाल सकती है और मीठे की क्रेविंग को भी संभाल सकती है। जैसे डार्क चॉकलेट हो गया, या आप छेना इस्तेमाल करो, रसगुल्ले का छेना वो आप यूज करो।
0: खीर घर में बना के।
1: खीर भी आखिर में दूध और शक्कर ही आई, और उसमें अगर आपने साबुदाना डाल दिया तो खत्म।

0: तो आपने एकदम एकदम ऐसा फॉर्मूला बना दिया जहाँ पे शुगर बढ़ जाएगा। तो ये कितने मात्रा में खा रहे हैं, पूरे दिन में कितनी शक्कर गुड़ जा रही है, और ओवरऑल आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक कितना है, इस पे निर्भर करेगा कि क्या आप मिठाई खा सकते हो या नहीं। दूसरी चीज ये होती है कि बहुत ज्यादा मीठा खाने से ना कुछ लोग कई सालों तक उनको आदत होती है मीठा मीठा खाने की, कार्बोहाइड्रेट खाने की। इसकी वजह से उनकी टेस्ट बड्स जो है ना वो भी थोड़े चेंज हो गए।
1: जी
0: उनको हर चीज उस तरीके से टेस्ट नहीं आती, तो जब वो मिठाई थोड़े दिन के लिए निकाल लेते हैं तब उनको वही मिठाई कितनी मीठी है वो पता चलेगी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो मिठाई बिल्कुल नहीं खाते हैं, वो फटक से बोलेंगे आपकी 1 चम्मच शक्कर भी बहुत ज्यादा है। वो क्यों बता पा रहे हैं? क्योंकि उनके टेस्ट बड अभी वापस ट्रेन हो गए कि जो निसर्ग में जो चीजें जैसी हैं वो उनके फ्लेवर्स का मजा उस तरीके से ले ले। तो
1: बिल्कुल,
0: हमें उस चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है।
1: मतलब ये भी है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम खाना कम खा लें, मिठाई ज्यादा खा लें, तो
0: हाँ
1: वो भी ठीक नहीं है,
0: ठीक नहीं है।
1: क्योंकि मीठा तत्व तो आपके शरीर
0: हाँ,
1: में जा रहा
0: और
1: है जो
0: कुछ लोग
1: हानिकारक
0: ऐसे बोलते हैं कि मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, डाइट भी कर रही हूँ, मगर वेट लॉस नहीं हो रहा है या मेरी शक्कर कम नहीं हो रही है, तभी भी अक्सर गुनहगार वो मिठाई ही होती है।
1: बिल्कुल। तो अब इस मिठाई के साथ ही मीठी मीठी बातों को हम विराम दे रहे हैं। अदिति जी, बड़ी ढेर सारी जानकारी आपने साझा की हमारे श्रोताओं के साथ। एक गाना सुने
0: जी।

पोषण माह के उपलक्ष्य में सेहतनामा कार्यक्रम में आज आपने सुना न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग मिला मंगेश सांगले से। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: पॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
1: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
2: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं शंकर महादेवन और साथियों की आवाजों में इस गणेश वंदना के साथ।

पेशे खदमत है एक सूफी कलाम जिसे हमने लिया है सूफी जॉय एल्बम से, असीस कौर ने गाया इसे।

या तो मिट जाइए या मिटा दीजिए। ये प्यारा सा कलाम अभी आप सुन रहे थे, वाजिदा तबस्सुम का था ये कलाम, जगजीत सिंह की आवाज़, और एल्बम इंसर्च से हमने लिया था इसे। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं लोकगीत कजरी, हेमंत कुमार की आवाज़ है।

श्रोताओं, कजरी के रंग से आप सराबोर हो रहे हैं, तो चलिए एक और कजरी आपको सुनवा देते हैं। मनोरमा श्रीवास्तव ने गाया है इसे, मिर्जापुर कैला गुलजार हो।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
1: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। तो लीजिए सुनिए सुरैया की आवाज में मिर्जा गालिब का ये कलाम, जिसे संगीतबद्ध किया है गुलाम मोहम्मद ने। फिल्म का नाम भी है मिर्जा गालिब।

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम रंग तरंग। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं एक राजस्थानी लोकगीत मारा रंगीलो राजस्थान, और इसे गाया है शोभा गोटू ने, संगीतबद्ध किया है बाबू सिंह ने।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम रंग तरंग। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं कबीर दास जी के कुछ दोहे, जिसे गाया है जगजीत सिंह ने और इसे संगीतबद्ध भी किया है जगजीत सिंह जी ने ही।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं मिश्र संगीत का कार्यक्रम रंग तरंग। आइए अब सुनते हैं उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत जिसे गाया है सुजाता चक्रवर्ती ने।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए। तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम रंग तरंग। लीजिए अब सुनिए एक कव्वाली जिसे गाया आशा भोसले और साथियों ने। साहिर लुधियानवी के हैं बोल और रोशन की है तर्ज। फिल्म का नाम दिल ही तो है। निगाहें मिलाने को जी चाहता है।

नमस्कार और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में आप सुन रहे थे दो जासूस फिल्म का ये गाना। मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में, लिखा है इसे आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: दोस्तों अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि इस कार्यक्रम में एक इबारत यानी कि टेक्स्ट हम पोस्ट करते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, और आपको उनमें से उस इबारत में से शब्द चुनना होता है और शब्दों से गाने। लेकिन आज हमने एक अलग खेल किया है, वो ये कि इबारत हमने आपके लिए लिख दी है और साथ में हमने आपसे ये कहा है कि आप भी मिलती जुलती इबारत लिखिए। उसके लिए हमने शब्द भी दिए हैं, लेकिन जरा पहले हम अपनी वाली इबारत आप तक पहुंचा दें। बहुत सारे श्रोताओं ने इबारत लिखने की कोशिश भी की है। यहां हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि जो लोग अब लिख रहे हैं इबारत, तो जरा बहुत संक्षेप में लिखें ताकि हम बहुत सारे श्रोताओं के की इबारत को शामिल कर सकें। तो सुनिए, गीत जब शब्दों की देहरी से निकलकर सुरों की दुनिया में आते हैं तो महज गीत नहीं रहते, वे मन की कोई अनकही बात बन जाते हैं। हिंदी के ललित गीतों की यही तो खूबसूरती है, इनमें प्रेम की कोमल आहट है, विरह की नमी है, प्रकृति की छुअन और जीवन के अनगिनत रंग हैं। कभी कोई गीत चांदनी रात में मन का हमसफर बन जाता है, तो कभी बरसात की फुहारों के साथ पुरानी यादों की खिड़की खोल देता है। कुछ गीत जो बरसों बाद भी कानों में पड़ते हैं, किसी भूली हुई गली किसी चेहरे
1: दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के हित तेजी से दुनिया भर से जुड़ रहे हैं और भारत से विश्व की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपए तक के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई लेनदेन और रुपए डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेनदेन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखारव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी के उम्मीदवार होंगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को भारी नुकसान हो सकता है। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 147 अंक गिरकर 74,635 पर और निफ्टी 74 अंक की गिरावट के साथ 23,324 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Defense Minister Rajnath Singh has said measures have been taken to ensure that India does not remain dependent on imports in the defense sector but moves towards self-reliance. Addressing the DRDO Industry Synergy Meet Vimarsh 2026 in the national capital today, Mr. Singh said self-reliance should become a part of the nation's character and attitude.
3: अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स देखे हैं,
4: द रिफॉर्म्स विटनेस्ड इन द डिफेंस सेक्टर ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स आर अनप्रेसिडेंटेड एंड सेवरल

0: सरकार दे रही बढ़ावा। किताहसिले रेलखंड पर विकास कार्य के कारण आज कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। कुछ ट्रेनों का होगा आंशिक समापन और प्रारंभ। और बोकारो में आयोजित तीसरे कोल्हान फुटबॉल टूर्नामेंट में एक्स आर्मी बॉयज ए ने सोरेन एंड यूनाइटेड बोकारो को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपए तक के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई लेनदेन और रुपए डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने यूपीआई लेनदेन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले यूपीआई लेनदेन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी भी डिजिटल लेनदेन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया घरों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। हालांकि ये शुल्क भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेनदेन पर लागू MDR से काफी कम होंगे। सरकार का यह स्पष्टीकरण भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में हालिया संशोधन के बाद यूपीआई लेनदेन पर शुल्क की आशंकाओं के बीच आया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: कोल इंडिया के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक बी साईराम ने राजमहल परियोजना का निरीक्षण कर खनन उत्पादन तकनीकी व्यवस्था संचालन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर परियोजना की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने हुर्रा OCP और हुर्रा CCHP का भी निरीक्षण किया तथा ऊर्जा नगर कॉलोनी परिसर स्थित गुड़िया मंदिर में पौधरोपण किया। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन सरकार MMDR एक्ट का विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि इसमें अवैध खनन के खिलाफ कड़े प्रावधान हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए और ग्रामीणों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए।
2: और जो बार बार 1,36,000 करोड़ का रोना रोते हैं, आप बताएं किस किस मद में मगध परियोजना का कितना बाकी है, अगर कोई संथाल में परियोजना चल रही वहां कितना बाकी है, CCL के अशोका प्रोजेक्ट का कितना बाकी है, आपको डिटेल देना होगा। ये कोई बाबा जी का दुकान है 40,000, 60,000, 30,000? ठोस रिलीफ चाहते हैं केंद्र से या सुप्रीम कोर्ट से।
0: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश ठाकुर ने MMDR बिल को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस बिल के बाद राज्य में विस्थापन और बढ़ेगा और इसके विरोध में 23 सितंबर को कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी।
3: एक तो सबसे पहले जो हमारा बकाया है रॉयल्टी का पैसा है वो मिलना चाहिए, और जो ये एक लूट की योजना बना रहे हैं उसको भी रोकने के लिए हम लोग आगे बढ़, पूरे झारखंड में 23 तारीख को हम लोग उस पर बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं और जामुमो के साथी भी करेंगे। लेकिन हमें लगता है कि अब इन सांसदों के घरों को घेरने की जरूरत है।
0: रांची नगर निगम ने पिछले एक वर्ष के दौरान निगम की भूमि और महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों से अतिक्रमण हटाकर उनके सीमांकन संरक्षण और जनोपयोगी इस्तेमाल की दिशा में व्यापक कार्रवाई की है। निगम के अनुसार मोराबादी, कुसुम विहार, करमटोली तालाब, डोरंडा सहित विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि पर बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जा रहा है। रांची स्थित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की इकाइयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2026 के तहत विशेष वेंडर मीट का आयोजन किया गया। बैठक में सेल की खरीद प्रक्रिया, वेंडर रजिस्ट्रेशन, जेम पोर्टल, मेक इन इंडिया पहल और स्थानीय तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। पिछले कुछ वर्षों के दौरान जन जन तक जानकारी फैलाने, संस्कृति को सुदृढ़ करने और राष्ट्रीय एकता के लिए यह एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। रांची रेल मंडल के किता सिल्ली रेलखंड पर विकास कार्य के लिए ब्लॉक लेने के कारण आज कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। मान हटिया बर्धमान मेमू एक्सप्रेस का गोमो स्टेशन पर आंशिक समापन और प्रारंभ होगा तथा गोमो हटिया के बीच परिचालन रद्द रहेगा। वहीं खड़गपुर हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस का आद्रा स्टेशन पर आंशिक समापन और प्रारंभ होगा। आसनसोल रांची आसनसोल मेमू पैसेंजर का मुमरी स्टेशन पर आंशिक समापन होगा। गुजरात सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली में प्रस्तावित ब्रिक्स सम्मेलन को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में गुजरात साइबर क्राइम पुलिस ने देवघर से गुलशन कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। गुजरात साइबर पुलिस के एसपी ने बताया कि पुलिस के अनुसार यह धमकी भरे ईमेल नेटवर्क से जुड़ा था।
4: ट्रेडमिल 10th ऑफ सितंबर को गुजरात सचिवालय को जो ब्रिक्स का भी सम्मेलन चल रहा था तो उसके रिगार्डिंग भेजा गया था और बम से उड़ाने के लिए धमकी दी गई थी मेल पे। और टेक्निकल एनालिसिस से ये पता चला कि ये जो थ्रेट मेल भेजने का जो डिवाइस है उसका वो पाया गया है बिहार के भगलपुर में। उसका नाम था रोशन कुमार। उसको पकड़ा गया तो फिर और भी काफी चीजें इंटरेस्टिंग चीजें सामने आई कि ये पता चला कि ये जो थ्रेट मेल है उसको कहीं और से उसको बोला गया था कि ये तुम भेजा जाए इसको। फिर करा तो पता चला कि वो भेजने वाला बंदा था वो झारखंड के देवघर डिस्ट्रिक्ट में था।
0: चतरा में कृषि विभाग के नाम पर किसानों से ठगी के प्रयास का मामला सामने आया है। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी गौतम कुमार ने बताया कि अनजान नंबर से फोन कर किसानों से 10,100 रुपए मांगे जा रहे हैं। उन्होंने किसानों को अनजान कॉल से सावधान रहने की अपील की है। घरेलू इक्विटी मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स में शुरुआती बढ़त खत्म हो गई और आज सुबह के सेशन में वे गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे थे। आखिरी जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 131 अंक गिरकर 74,651 पर आ गया, जबकि निफ्टी 66 अंक गिरकर 23,332 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,43,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,40,000 रुपए प्रति किलो है। बोकारो के बिरसा बासा में चल रहे 30वें कोल्हान फुटबॉल टूर्नामेंट के दूसरे दिन एक्स आर्मी बॉयज ए ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। रोमांचक मुकाबले में एक्स आर्मी बॉयज ए ने सोरेन एंड यूनाइटेड बोकारो को टाई ब्रेकर में 3-2 से हरा दिया। इस 5 दिवसीय टूर्नामेंट में 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं और यह प्रतियोगिता 17 सितंबर तक चलेगी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड भुगतान पर शुल्क को लेकर सरकार ने नियम किए स्पष्ट। 2,000 रुपए तक के यूपीआई भुगतान पर बैंक नहीं लगा सकेंगे कोई शुल्क। कोल इंडिया के अध्यक्ष बी साईराम ने गोड्डा स्थित राजमहल परियोजना का किया निरीक्षण। खनन और उत्पादन गतिविधियों की ली जानकारी। एमएमडीआर बिल पर सियासी बयानबाजी तेज। कांग्रेस ने लगाया विस्थापन बढ़ाने का आरोप। बीजेपी का पलटवार, कहा अवैध माइनिंग को राज्य सरकार दे रही है बढ़ावा। किता सिल्ले रेलखंड पर विकास कार्य के कारण आज कई ट्रेनें रहेंगी प्रभावित। कुछ ट्रेनों का होगा आंशिक समापन और प्रारंभ। और बोकारो में आयोजित 30वें कोल्हान फुटबॉल टूर्नामेंट में एक्स आर्मी बॉयज ए ने सोरेन एंड यूनाइटेड बोकारो को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: वो अभी भी कोशिश कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि लंबी इबारत लिखें। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म लव इन टोक्यो के लिए कि ये बड़ा ही बेहतरीन गाना है। इस गीत में किसी प्रिय के आने की खुशी, मन की हल्की सी शरारत और प्रेम की मीठी आहट महसूस होती है, जैसे किसी की दस्तक से अचानक सूना सा मन भी खिल उठे। कोई मतवाला आया मेरे द्वारे, सुनते ही लगता है जैसे कोई चुपके से मन के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी हो। गीत की मिठास लता जी की आवाज मिलकर प्रेम की ऐसी हल्की सी आहट देती है जो सुनते ही चेहरे पर मुस्कान ले आए। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं जा रहा था मंदिर दर्शन करने, सोचा दर्शन के बाद रोज के कामकाज यानी दुकान खोलने के लिए दर्शन करने के बाद रास्ते में पुराना दोस्त मिल गया। कहने लगा बहुत दिन हुए कोई फिल्म देखने चली, मॉर्निंग शो में राज कपूर जी की फिल्म चल रही है आवारा देखी, लगता है कोई पुरानी बात इन्हें याद आ गई। और जरा बीच में हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगला गाना कौन सा होना चाहिए, कहीं आपकी प्लेलिस्ट में यही गाना तो नहीं जो हम सुनवाएंगे, जरा बूझिए ये भी। और अगले दो तीन गाने आप सुझाइए, हम आप जो सुझाएंगे गाना वही गाना आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन हाँ, इबारत वाले शब्द होने चाहिए। एक श्रोता ने लिखा है कि वो मेरा मनमीत जो मुझे अनायास एक चांदनी रात में ट्रेन के सफर में मिल गया, एक रात के लिए मेरा हम सफर, ट्रेन की खिड़की यादों की खिड़की बनी, कितनी अनकही बातें जुबान पर आ गईं और ट्रेन रुकी, उसको जाना था मुझे भी, अब के बिछड़े कभी न मिलने को। चलिए अब बारी है गाने की, गाना सुनिए और बूझिए जरा फिर एक बार हीरो हीरोइन का नाम, साथ में गीतकार का नाम, देखते हैं गीतकार का नाम सही बता पाते हैं आप या नहीं।

हंसते जख्म फिल्म का गाना था। हमने गीतकार का नाम पूछा था, बहुत जल्द जवाब आया श्रोताओं की ओर से। कैफी आजमी के बोल थे मदन मोहन का संगीत था। कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है, कुछ अधूरी रह गई तमन्नाओं के जख्मों को नगमे अपनी मरहम से नासूर बनने से रोकती है, एक ऐसा ही गाना है। जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला। एक श्रोता ने लिखा है कि खो जाती सुधबुध जब खुलती यादों की है वो खिड़की, इस चांदनी रात की शीतलता अंतर मन को है छूती, वो हम सफर बना मनमीत जब चले हैं बन साथी, जीवन के अनगिनत रंगों की परिभाषा तब है सजती। भाई जो आपने इबारत लिखी है उसके जो शब्द मैंने दिए थे उन शब्दों से गीत के बोल नहीं लिखे, जरा वो शब्द टटोलिए और उसके गीत भी लिख डालिए। अभी हमने आपसे पूछा था कि कौन से वो गाने हैं जो आप सुनना चाहते हैं समय, तो कुछ श्रोताओं ने लिखा है और कुछ श्रोताओं ने नहीं लिखा है, तो हम जो गाने आप लिख रहे हैं वही गाना हम अगला सुनवाएंगे। उसके बाद कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं जरा फिल्म का नाम जरूर लिखिए। एक श्रोता की टिप्पणी है कि गीत सिर्फ कागज पर लिखे शब्द न रहकर सुरों की सांसें पाते हैं तो वो सीधे रूह में उतर जाते हैं, हिंदी के सुरीले और ललित गीतों का यही तो जादुई असर है। इनमें कहीं किसी की यादों की महक है, कहीं पहले मोहब्बत की मासूमियत है, तो कहीं तन्हाई का सुकून भरा सन्नाटा है। कभी कोई धुन दिल के सुनेपन को गुदगुदा जाती है तो कभी कोई बंदिश आंखों में गुजरे जमाने की कोई खास तस्वीर सजा देती है। बहुत बड़ी बड़ी टिप्पणी लिख रहे हैं आप, जरा छोटी छोटी टिप्पणी लिखिए ताकि बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां शामिल हो सके। अब जरा सुनिए ये गाना, आप सभी की ओर से गाना आया है, बताइए फिल्म का नाम और गीतकार संगीतकार का नाम भी। इबारत में कौन सा शब्द है जिसके जरिए ये गाना सुनवाया जा रहा है?

0: आशिक फिल्म का गाना था, मुकेश की आवाज़ थी, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत था और कुछ श्रोताओं ने बहुत सही जवाब दिया और जल्द जवाब दिया, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है और अभी भी कुछ श्रोता लिख रहे हैं। तो आप अब बताइए कि अगला गीत कौन सा लिया जाए, मतलब आपके जहन में कौन सा गीत आ रहा है, हमारी इबारत से शब्द चुनकर बताइएगा और तब तक हम आपकी टिप्पणी आप तक पहुँचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सुरीला सफर और विविध भारतीय सुनते सुनते कभी गर्म कभी ठंडी हवाओं के झोंकों से यादों की खिड़की खुल जाती है और मन पुरानी यादों में खो जाता है। याद आती है वो बहुत सारे प्रोग्राम के नाम लिखे हैं, भूले बिसरे गीत और ऐसे गीत जो जीवन से आज भी जुड़े हैं, जीने का सहारा बनते हैं, जैसे एक दिन बिक जाएगा, नदियाँ चले चले रे धारा वगैरह वगैरह। भाई भूले बिसरे गीत तो आज भी प्रसारित होता है 7 बजे, आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी फिल्मों के गीत न होते तो हम सभी संगीत प्रेमियों श्रोताओं का जीवन नीरस हो जाता। ये बात तो बिल्कुल सच है, हम सभी का जीवन नीरस हो जाता। एक श्रोता लिख रहे हैं कि ललित गीत केवल शब्द और सुरों का मेल नहीं बल्कि मन की अनकही भावनाओं की आवाज होते हैं। इनमें कुछ भाव ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द कह नहीं पाते मगर एक मधुर गीत उन्हें सहज ही दिल तक पहुंचा देता है। और दोस्तों यूं भी होता है कि जब हम एक गीत सुन रहे होते हैं तो मन में बहुत सारे विचारों का झोंका आता है, तो आप बताइए कि आपके मन में इस समय कौन से विचार आ रहे हैं और साथ में आप मन की बात को कब कब सुनते हैं, मतलब मन में जो बातें आपके भीतर आती हैं तो वो कैसे आप मानते हैं। कई बार मन बहुत कुछ कहता है जो आप नहीं करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मन में जो बात आती है लगता है इसे किसी तरह से हम पूरा कर लें। तो एक शब्द आज की इबारत में मनमीत है, उससे जुड़े हुए कौन से गाने हैं जरा बताते चलिएगा। फिलहाल प्रेम पुजारी फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, आपको बूझना है हीरो हीरोइन का नाम और गीतकार का नाम।
1: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

दोस्तों, हमने आपसे मनमीत शब्द से गाना पूछा है जिसमें मीत शब्द भी चलेगा, वो गाने आप बताइए। बहुत सारे श्रोता इबारत लिख रहे हैं लेकिन गाने के बोल फिल्म का नाम नहीं लिख रहे हैं।

प्रेम पुजारी फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में नीरज की रचना थी, सचिन देव बर्मन का संगीत था और हमने आपसे फिल्म का नाम भी पूछा था, गीतकार का नाम भी पूछा था। एक श्रोता ने लिखा है कि ललित गीतों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी गायकी होती है। ओपी नैयर, रवि जयदेव, एआर रहमान जैसे महान संगीतकारों ने इन ललित शब्दों को ऐसे मधुर धुनों में पिरोया जिससे गीत केवल सुनने तक सीमित नहीं रह जाते बल्कि दिल में असर करते हैं। बिल्कुल सही कहा है दोस्तों आपने। एक श्रोता लिख रहे हैं कि मन का अंतर्द्वंद्व और उसका बोलना मनुष्य के जीवन की एक बहुत ही स्वाभाविक लेकिन गहरी स्थिति है। कहते हैं कि मन कभी कभी बहुत बातें करता है, मतलब है कि हमारे भीतर विचारों का एक ऐसा ज्वार उठ रहा है जिसे शांत करना मुश्किल हो रहा है। जब बाहरी दुनिया में हमारे पास बात करने या व्यस्त रहने का कोई साधन नहीं होता तब मन खुद को व्यस्त रखने के लिए खुद से ही बातें करने लगता है। दोस्तों हम तो आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि कब आप अपने आप से बतियाते हैं, कब अपने मन से बतियाते हैं, कब वो लम्हा कौन सा होता है जब आप खुद से गुफ्तगू करते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि चांदनी रात में जब हम सफर साथ हो तो सिर्फ सफर रास्तों का नहीं होता, वो यादों का सफर बन जाता है। यादों की खिड़की से झांकता हर बीता पल कभी मुस्कान देता है, कभी आंखें नम कर जाता है। मनमीत के साथ तो जीवन के अनगिनत रंग और भी गहरे हो जाते हैं। और हमने आपसे पूछा था मनमीत शब्द से कौन सा गीत, बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, किसी ने अभिमान फिल्म का गाना लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है और हमारे पास ये गाना है। तो जरा सुनिए ये गाना और बताइए फिल्म का।

मृग तृष्णा फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी, संगीतकार थे शंभू सेन, और हमारे श्रोताओं ने इसका भी जवाब बिल्कुल सही दिया है और बहुत जल्द जवाब आया है श्रोताओं की ओर से। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि नगमों की दुनिया निराली होती है, कुछ नगमे तराने बन दिल की देहरी लांग ताऊ उम्र साथ चलते हैं, कुछ पुरानी अधूरी यादों को दस्तक दे जाती हैं, कुछ तन्हाई के आलम में हम सफर अतीत वर्तमान और आगामी अनंत काल तक एक सुखद एहसास प्रदान करती है। एक श्रोता ने लिखा है, आपके शब्द हमारी कविता, जीने के अनेक ढंग हैं, जीवन के अनगिनत रंग हैं, यादों की खिड़की खोल कर देखो, मेरे मन मीत चांदनी रात थी तुम भी साथ थे। एक श्रोता लिख रहे हैं कि चांदनी रात थी, खिड़की से झांकती चांद को निहारती, यादों के पन्ने को पलटने लगती है वो, हम सफर के साथ बिताए उस मीठे पल का एहसास मन को आनंदित कर देती है, जीवन में कई सुनहरे रंग खिल उठते हैं। एक श्रोता ने लिखा है, आज का सफर

आपके साथ अपने खूबसूरत शब्दों की इबारत है, कितने सुंदर और भावात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक शब्द के भाव और उनको संगीत के सुर में उतारना, हर भाव को जीवंत होते देखना है। जीवन के हर पड़ाव में इस तरह की बातें आम बात बन जाती हैं, कुछ यादें बन जाती हैं। और भी बहुत कुछ लिखा है, एक श्रोता ने लिखा है, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है, और साथ साथ नगमे गाए थे हम सफर मेरे, और गानों के बोल लिख के इन्होंने माला पिरोई है। तो चलिए अब अगला गीत सुनते हैं और बूझिए जरा गीतकार संगीतकार का नाम। फिल्म है आखिरी दांव। गीतकार और संगीतकार का नाम आपको बताना है।

आखिरी दांव फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज। गीतकार का नाम हमने पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया, जल्द जवाब दिया। मजरूह सुल्तानपुरी मदन मोहन संगीतकार। और एक श्रोता ने लिखा है, वाह वाह वाह जबरदस्त गीत। एक श्रोता ने लिखा, वाह क्या गीत है, तेरी एक नजर की बात है। और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं, मेरी हर खुशी तेरे दम से है, मेरी जिंदगी तेरे गम से है। और एक श्रोता ने लिखा है कि धर्म पत्नी अगर रूठ जाए तो मुझे फिल्मी गीत गाकर मनाना पड़ता है। और एक श्रोता ने लिखा है, नूतन बुआ जी, शेखर जी, मजरूह सुल्तानपुरी। भाई बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने के लिए लिखा है, वाह वाह। तो अगर आपको लगता है कि अगला गीत भी आप करना चाहते हैं, वाह वाह, और आप सभी की पसंद का हो, तो लिख डालिए अगला गीत कौन सा होना चाहिए। हम बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि चांदनी रात में जब कोई अपना हम सफर बनकर साथ चलता है तो यादों की खिड़की से बीते लम्हे भी मुस्कुराने लगते हैं। कभी मनमीत की मीठी यादें दिल को छू जाती हैं तो कभी हम सफर का साथ जीवन को और खूबसूरत बना देता है। इन्होंने आगे ये भी लिखा है, किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चलने देना छोड़कर। भाई क्या बात है, गाने तो आप बेहतरीन चुन रहे हैं, लेकिन

बहुत सारे श्रोताओं ने ये गाना भी चुना है, तो देखिए आपने भी चुना था क्या ये गाना? जरा फिल्म का नाम बताइए और आवाजें किसकी है बूझिए जरा। बहुत ही आसान सवाल पूछा है, देखते हैं कितनी जल्दी जवाब आता है। अगले गीत की फरमाइश भी आप कर सकते हैं, अगला गीत कौन सा होना चाहिए, हम वही गाना बजाएंगे जो आप चाहेंगे सुनना।

पूर्णिमा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में गुलजार के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। श्रोताओं ने फिल्म का नाम सही बूझा, आवाजें भी सही बूझी। मुकेश की आवाज, लता मंगेशकर की आवाज, भला कौन नहीं पहचान सकता है। और अगले गाने के लिए हमने आपसे कहा था कि आप लिखिए कौन सा गाना हो सकता है। बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि अब आएगा चांदनी रात में, ये वाला गाना, लेकिन और भी गानों के लिए जिक्र किया है श्रोताओं ने, तो हम चाहते हैं कि और जो गाने हैं उसका भी जिक्र कीजिए। ये गाना अब आप अक्सर सुनते रहते हैं विविध भारती से, हम वो गाना सुनवाएंगे जो आप अक्सर नहीं सुनते हैं, तो जरा और गाने भी याद कर लीजिए, शायद आप वाला गाना ही हम आपको सुनवा दें। एक श्रोता ने टिप्पणी लिखी है कि वाह, मैं सुरीला सफर का पोस्ट पढ़ने से अनुमान लगा रही थी कि आज अवश्य आप आएंगी, और देखिए आपका आगमन हो गया और आपकी बात कहने का अंदाज एक अलग ही स्तर का मन मोह लेता है, और आप सभी का अंदाज हमारा मन मोह लेता है। आप सभी जिस अंदाज में टिप्पणियां लिखते हैं तो हम भी मोहित हो जाते हैं कि कैसे आप इतनी जल्द जवाब देते हैं, कैसे इतनी सारी इबारत लिख लेते हैं, हमें भी अचरज होता है और अच्छा भी लगता है। यही तो है आपका और विविध भारती का साथ, इसीलिए तो सुरीला है और हमेशा हमेशा के लिए है। एक श्रोता ने लिखा है कि चांदनी रात में जब कोई अपना हमसफर बनकर साथ चलता है तो यादों की खिड़की खुलती है, ये वाली लाइन मुझे लगता है बहुत सारे श्रोताओं ने

लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि मन का मीत प्रेमी प्रियतम या साजन हो सकता है, वहीं दूसरी ओर दिलदार दोस्त या मित्र सखा हो सकता है। और बहुत सारे श्रोताओं ने आज इबारत लिखी है और हमने कोशिश की कि सभी की टिप्पणी आज हम शामिल करें। अब सुनिए ये गीत और जरा याद कीजिए, आपने सोचा था कि ये गाना आप सुन सकेंगे, फिल्म का नाम अगर बता सकते हैं तो बताइए। गीतकार और संगीतकार का नाम भी आपको ही बताना है, बूझिए फिल्म का नाम। गाने के बोल तो समझ गए होंगे ना अब तक, या अभी नहीं समझ में आया, इंतजार कीजिए अभी बोल आ ही जाएगा।

फिल्म का नाम दोस्तों हमने आपसे पूछा था, फिल्म थी मुक्ति, मुकेश की आवाज थी, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था। सभी श्रोताओं ने जानकारी बिल्कुल सही दी, हमें लगता है आप सभी की जानकारी बहुत समृद्ध है, इसी तरह से समृद्ध बना रहे। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा वाह वाह ये गाना तो बहुत दिनों बाद सुना, और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है वाह सुरीला सफर सुरीली प्रस्तुति, तो हम भी आपसे कह रहे हैं वाह सुरीली टिप्पणियां, और बड़े अच्छे अंदाज में आज आपने टिप्पणी भेजी है, इस बात के लिए सभी का शुक्रिया। अब आज का सुरीला सफर कार्यक्रम समाप्त होता है, कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

दुनिया बहुत तेजी से बदलती चली जा रही है। एक जमाने में इंटरनेट इतना सुलभ नहीं था, आज इंटरनेट की स्पीड इतनी तेज है कि लोग अपने मोबाइल फोन्स पर तरह तरह का वीडियो कंटेंट भी देख सकते हैं और बहुत ही उन्नत किस्म के वीडियो गेम्स भी खेलते हैं। जो बुजुर्ग पीढ़ी है उसके लिए

0: श्री सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन उद्योग सहभागिता सम्मेलन विमर्श 2026 को संबोधित करते हुए ये बात कही।
1: अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स देखे हैं, मैं कह सकता हूं कि वह अनप्रेसिडेंटेड है। हमारे प्रधानमंत्री के विजन और लीडरशिप में हमने कई गेम चेंजिंग फैसले लिए हैं, चाहे वह पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट हो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, आईडेक्स हो, अदिति हो, या फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए एलोकेशन का फैसला हो।
0: श्री सिंह ने डीआरडीओ तथा उद्योग के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
1: टीडीएफ के माध्यम से स्टार्टअप्स को ग्रांट्स दिए जा रहे हैं और अनेक टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंच चुकी हैं। आईडेक्स ने भी डिफेंस इनोवेशन के लिए एक नया इकोसिस्टम भी तैयार किया है, जहां स्टार्टअप्स हमारी वास्तविक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर सॉल्यूशंस विकसित कर रहे हैं। अब डीआरडीओ और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप केवल प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, रिसर्च, डिजाइन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन में साझेदारी हमें बढ़ानी हो।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि संघर्षों और विरोधाभासों से जूझ रही दुनिया में नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता उल्लेखनीय है। भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWA के रजत जयंती समारोह में उन्होंने सर्वसम्मति से अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा को बड़ी उपलब्धि बताया। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के हित तेजी से दुनिया भर से जुड़ रहे हैं।
2: इंडिया टुडे, भारत का संबंध आज कहीं अधिक व्यापक देशों और क्षेत्रों से है। हमारी जिम्मेदारियां और दुनिया की भारत से अपेक्षाएं दोनों बड़ी हैं। भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। भारत की वैश्विक भूमिका बढ़ने के साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हमारी बौद्धिक भागीदारी को भी उसी गति से आगे बढ़ना होगा।
3: आवर इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट विद इंटरनेशनल अफेयर्स मस्ट कीप पेस।
0: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री CR पाटिल, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय जल संसाधन सचिव और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव भी उपस्थित थे। इससे पहले इसी वर्ष जून में गृहमंत्री अमित शाह ने इस संबंध में इन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि केशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना की 90% लागत केंद्र सरकार द्वारा जबकि शेष 10% लागत 6 भागीदार राज्यों द्वारा वहन की जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया है। गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन में श्री यादव ने कहा कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, EPR विनियमों और मिशन लाइफ जैसी पहलें चक्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण कदम है।
5: अंडर द EPR मैकेनिज्म,
6: EPR व्यवस्था के अंतर्गत EPR प्रमाण पत्रों का हस्तांतरण पुनर्चक्रणकर्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिससे क्षमता विस्तार, तकनीकी उन्नति और पुनर्चक्रण गतिविधियों में वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। ये सभी मिलकर संपूर्ण पुनर्चक्रण मूल्य श्रृंखला में रोजगार सृजन और आजीविका में योगदान करते हैं। विभिन्न EPR ढांचों के अंतर्गत 83,000 से अधिक उत्पादक और 4,802 पुनर्चक्रणकर्ता पंजीकृत हैं।
0: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। एक रिपोर्ट।
7: गांधीनगर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी कि EPR

0: निर्णयों और मिशन लाइफ जैसे पहलों को भारत की चक्रीय अर्थव्यवस्था यात्रा के लिए महत्वपूर्ण बताया। ब्रिक्स नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत यूरोपीय संघ सहकार में चक्रीयता के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि चक्रीयता की शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। समारोह को संबोधित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि विकास पारिस्थिति समृद्धि और स्थिरता को एक साथ आगे बढ़ना होगा। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिनिश इनोवेशन फंड सिट्रा और गुजरात सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस दो दिवसीय मंच में AI के अनुप्रयोग, हरित ऊर्जा, टिकाऊ वित्त सुशासन और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र जैसे विषयों पर 4 पूर्ण सत्र और 16 विषयगत सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से कहा कि नए सदस्यों की नियुक्ति होने तक अर्ध न्यायिक निकायों के सेवानिवृत्त होने वाले पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों का कार्यकाल करीब 1 महीने तक बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे कामकाज प्रभावित न हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी की उम्मीदवार होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के रात्रिभोज में कांग्रेस शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अनुपस्थिति की आलोचना की। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा नेता और सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब भारत और राष्ट्रहित की बात आती है तो किसी भी प्रकार के मतभेद की कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर साल 15 सितंबर को भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष में मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
2: इंजीनियर्स भारत के विकास की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। वे देश के जरूरी बुनियादी ढांचे को तैयार करने के साथ साथ नई तकनीकों और ज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। एम विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने नई तकनीकों, दूरदर्शी योजना और व्यवहारिक समाधानों के जरिए देश के बुनियादी ढांचे के विकास में बड़ा योगदान दिया। आज जब भारत तेजी से तकनीकी विकास और बदलाव के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, तब इंजीनियर्स की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। ऋषु के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि एम विश्वेश्वरैया एक इंजीनियरिंग प्रतिभा थे, जिनकी राष्ट्र निर्माण की दूरदृष्टि नागरिकों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी।
3: महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला, जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं, और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके। मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदरपूर्वक नमन करता हूं।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने भी एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट, @AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को भारी नुकसान हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने इस साल जुलाई में इस नियम को अंतिम रूप दिया था। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवाओं जैसे सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए 100% आबादी

0: पहुंचने वाला माध्यम है।
1: 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की स्थापना के साथ भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत हुई। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी दिन दूरदर्शन के पहले प्रसारण का उद्घाटन किया था। वर्ष 1982 में दिल्ली एशिया खेलों के दौरान रंगीन टेलीविजन की शुरुआत ने दूरदर्शन के प्रसारण और दर्शकों की संख्या को नई ऊंचाई दी। वर्तमान में दूरदर्शन के 35 सैटेलाइट चैनल और 66 स्टूडियो केंद्र हैं। ये 24 से अधिक भाषाओं और विभिन्न बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन ने रामायण, भारत, हम लोग, बुनियाद, चाणक्य, मालगुडी डेज, शक्तिमान, चित्रहार, फौजी सर्कस और उड़ान जैसे कई लोकप्रिय और यादगार धारावाहिक भी प्रसारित किए। आरजू के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पुदुचेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता जारी की। एक रिपोर्ट।
2: राज्य के 15 जिलों के 88 प्रखंडों में करीब 49 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय दल के बिहार दौरे को लेकर उनकी गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है।
3: आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक टीम बनाने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री जी का फोन आया था कि हम लोग एक केंद्रीय टीम केंद्रीय मंत्री के स्तर पर बिहार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ।
2: आकाशवाणी समाचार के लिए से
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। पहले मैच में रविवार को भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। तीसरा मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 337 अंक गिरकर 74,445 पर आ गया, जबकि निफ्टी 130 अंक गिरकर 23,268 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, भारत सतत विकास के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की बैठक गांधीनगर में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। अमरीकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, कच्छ, तमिलनाडु, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज शाम दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये पहला गीत, आवाज लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है आकाशदीप। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों का गाया हुआ। फिल्म का नाम है अमर ज्योति। इस गीत को पंडित भरत व्यास ने लिखा है और धुन बनाई है वसंत देसाई।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी। अम्बिका
0: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज है, फिल्म का नाम है चांद और सूरज। इसे शैलेंद्र ने लिखा है और धुन बनाई है सलील चौधरी ने।

आइए सुनते हैं खयाम साहब के संगीत निर्देशन में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत। गायिका हैं सुमन कल्याणपुर और फिल्म का नाम है मोहब्बत इसको कहते हैं।

0: गड्डिले
1: जो संगीत की साधना में बीता।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ।

0: यह आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था भीगी रात। इसे मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था और धुन बनाई थी रोशन ने।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला और गड्डी ले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी याद।

0: गीतों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ
1: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली, बस थोड़ी ही देर में।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: आरती श्रीवास्तव का
1: प्यार भरा
2: नमस्कार।
1: कहिए आरती, कैसी हो?
2: बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, क्योंकि चल रहा है गणेश उत्सव।
1: बिल्कुल, और हम खा रहे हैं मोदक। भाई घर घर में गणपति बप्पा के आगमन की जो तैयारी हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, और लोग अपने घर पर बुला रहे हैं, बाकायदा भोजन करवा रहे हैं और गणपति बप्पा को याद भी कर रहे हैं।
2: बिल्कुल, और जब अलग अलग घरों में जाओ ना, जो वो शोभा देखने को मिलती है ना, इतनी सुंदर झांकी सी सजा के रखते हैं गणपति बप्पा को, इतना सुंदर सजाया हुआ है, उनके चारों तरफ कहीं फूल हैं तो कहीं अलग अलग तरीके की उन्होंने सजावट करके रखी हुई है, बहुत अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम लोग हमें बुला रहे हैं और हम उनके घर जाते हैं तो देखते हैं कि इतने सुंदर तरीके से बप्पा को उन्होंने सजाया है, आसपास गुलाबी फूल, कहीं लाल फूल, कहीं पीले फूलों से सजावट की गई है, और आसपास वाद्य यंत्र भी रखे गए हैं। कई जगह मैंने देखा सितार रखा है, तानपुरा रखा है, इस तरह से भी जो है उस मंदिर को लोगों ने अपने घर में सजाया है।
2: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगता है देख के, एक एक सकारात्मक अपने अंदर आते हैं ना, एक ऐसी भावना आती
1: बिल्कुल,
2: है
1: बिल्कुल।
2: कि चलो ये जो त्योहारों के दिन होते हैं ना, जब हम निकलते हैं तो वहाँ भी जो सड़कों पे भी जाइए तो वहाँ पर भी इतना अच्छा सब जगह जगह देखने को मिलता है कि सजावट है, दुकानें भी सजी हुई हैं, हर जगह बहुत अच्छा लगता है।
1: लोगों का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है, और कहते भी हैं कि जो गणेश जी हैं सिर्फ विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि ज्ञान और विवेक के प्रतीक भी हैं, तो लोगों में जो है उनका बड़ा ही एक महत्व है। हम कितना जैसे ही हमारा कोई काम नहीं बनता, हम तुरंत गणपति बप्पा मोरिया को याद करने लगते हैं और कहते हैं कि हे गणेश देवता, ये जो भी विघ्न बाधाएं आ गई हैं उन्हें आप दूर कर दें और हमारे जीवन को सुचारू रूप से चला दें, है ना?
2: बिल्कुल,
1: तो हम यही कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के जरिए भी कि भाई जो ये खास दिन हम मना रहे हैं, हमारे जो बप्पा हैं हमारे जीवन के सभी विघ्न हर लें और खुशियों के रास्ते हमारे सभी श्रोताओं के, सभी सखियों और सखाओं के जीवन के खोल दें, ताकि हम अपनी जो राह है जहाँ जगह जगह पर हर्डल्स हमें दिखाई देती हैं वो न दिखाई दें और हम अपना रास्ता अच्छे तरीके से तय कर लें।
2: बिल्कुल, मीठा खाते खाते है ना।
1: हाँ बिल्कुल, मोदक के साथ साथ और एक सुरीला गीत भी सुन लेते हैं, लेकिन इससे पहले हमारे श्रोता तो जानना चाहेंगे ना, आज आप क्या विषय लेकर आई,
2: कौन से विषय पे हमें बातें करनी है, ये भी जानना जरूरी है। तो आज हम लेकर आए हैं जो विषय है वो है खत्म होती जा रही सहनशीलता।
1: ओहो,
2: किस तरीके से हम अपनी सहनशीलता को खत्म करते जा रहे हैं और हम उतावले हो रहे हैं हर चीज के लिए, तो इसके बारे में भी
1: हम तुरंत किसी चीज को पाना चाहते हैं ना। पहले सहन शक्ति होती थी हमारे अंदर, और अभी ये हो गया है कि हमें किसी ने कुछ कह दिया है तो हम तुरंत उसका जवाब दे देते हैं। पहले हम पहले सोचते थे, गुनते थे, मनन करते थे कि हमें इसका जवाब देना भी है कि नहीं देना है, है ना, शांत रहते थे, लेकिन अभी तुरंत जवाब देना सीख गए हैं
2: जी। तो और हम सिर्फ अभी मुंह से जवाब नहीं देते, हाथ पैर भी चलने लगते हैं।
1: हाँ, ये तो और भी गलत तरीका है। तो ये जो आपने कहा कि सहन शक्ति खत्म हो गई, इस पर वाकई हम चर्चा करेंगे और अपने श्रोताओं से भी चाहेंगे कि वो बताएं कि उनके जीवन में कितनी सहन शक्ति बची है।
2: बिल्कुल, वो अपने विचार हमारे साथ साझा करें। साथ ही हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत सुमिता घोष की, जो कि रंग सूत्र की संस्थापक हैं।
1: क्या बात है।
2: और आज हम मुहावरों की दुनिया में लेकर आए हैं कान भरना।
1: बहुत से लोगों का शौक होता है ये, आपको पता है ना कि लोग एक दूसरे के कान भरते रहते हैं। घरों में देख लीजिए, पड़ोस में देख लीजिए, कार्यालयों में देख लीजिए,
2: हर जगह
1: आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके लिए किसी दूसरे का कान भर रहे हैं।
2: बिल्कुल,
1: और सामने वाले का कान भी कच्चा होता है यार।
2: बिल्कुल, इसी के साथ में जुड़ा हुआ कि आपके कोई कान भर रहा है तो आप कान के कच्चे हैं, इसका मतलब आप जो बातों में आ रहे हैं
1: उन बातों में आ जाते हैं और उसे सच्चा मान लेते हैं।
2: बिल्कुल, और आज हम बात करने जा रहे हैं हल्की फुल्की बातों के अंतर्गत खाने की अतरंगी आदतों की।
1: जैसे
2: जैसे कि किसी किसी को शौक होता है ना कि जलेबी को सॉस में डुबो के खाने का।
1: ओहो,
2: बिल्कुल अजीब अजीब, सच में मैंने देखा है, शौक होते हैं लोगों के। और इस तरीके की बातों पे हम बात करें, क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं, जो सखियां हैं, जो सखा हैं, क्या उनके अंदर भी इस तरीके की कोई आदत है कि उनको मीठे के साथ नमकीन को मिक्स करके खाना अच्छा लगता है, या कुछ इस तरीके से जैसे मैंने बताया जलेबी को सॉस में डुबा के खाना अच्छा लगता है।

0: तो इस तरीके की अगर आदतें हैं आपके अंदर या आपके किसी जानने वाले के अंदर तो आप हमारे साथ उसको साझा करिए।
1: हाँ बिल्कुल, एक अलग किस्म की ये आदतें हैं जो हर एक में नहीं होती और हर एक इस तरह का स्वाद लेना पसंद भी नहीं करता है। तो आप बताइएगा कि आपके घर में आप कोई व्यंजन बनाते हैं या किसी के घर जाते हैं या आपके घर में बच्चे ऐसा करते हो कि किसी चीज के साथ और कोई ऐसी चीज मिला के खाते हैं,
0: अजीब
1: होती, कॉम्बिनेशन ही नहीं है उस चीज का, है ना। तो इस तरह की बातें हम चाहेंगे आज बहुत अच्छी तरीके से हम श्रोता के साथ सेलिब्रेट करेंगे। और अभी गीत सुन लें।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: आरती, ये गीत तो बहुत ही सुंदर था और बहुत कम सुनने में आया है ये गीत, है
1: बहुत
0: ना?
1: प्यारा लगता है ना।
0: हाँ। अच्छा एक बात बताओ आरती, अगर तुम्हारे घर पर किसी जरूरी फैसले पर सबकी राय ली जाए तो क्या मानती हो तुम, वो लोकतंत्र है?
1: बिल्कुल लोकतंत्र माना जाएगा उस चीज़
0: माना
1: को
0: जाएगा
1: मेरी नजर में तो माना जाएगा
0: बिल्कुल, मतलब बात छोटी सी है लेकिन लोकतंत्र की जो भावना है हम समझते हैं यहीं से शुरू हो जाती है,
1: जी,
0: है ना? सबकी बात सुनी जाए और फैसले में लोगों की भागीदारी भी हो, और यही वजह है कि हर साल हम 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाते हैं। और ये दिन हमें ये भी याद दिलाता है आरती कि लोकतंत्र केवल चुनाव और मतदान तक सीमित नहीं होता, ये समानता, स्वतंत्रता, भागीदारी, संवाद और जिम्मेदारी की भावना से भी जुड़ा होता है।
1: बिल्कुल, इसको एक उदाहरण देके समझा सकते हैं लोकतंत्र को।
0: हाँ?
1: बहुत छोटा सा उदाहरण है।
0: हाँ?
1: आप शायद हंस भी पड़े इस पर कि सोचिए कक्षा में पिकनिक के लिए दो जगहों के नाम सामने आए। एक बच्चा बोला मुझे पहली जगह पसंद है, और दूसरा बोला मुझे तो दूसरी जगह पसंद है।
0: ठीक है,
1: अगर शिक्षक जो है जो पढ़ा रहा है वो बिना किसी की बात सुने खुद ही फैसला दे दे कि तो ये भागीदारी वाली प्रक्रिया तो नहीं कही जाएगी।
0: बिल्कुल,
1: कि नहीं, ना हमने उनकी सुनी ना उनकी सुनी, हमने तो अपना फैसला लागू कर दिया।
0: हाँ।
1: तो लेकिन अगर सबकी राय सुनी जाए और विकल्पों पर चर्चा हो और फिर उचित तरीके से निर्णय लिया जाए, तो ये लोकतांत्रिक सोच का एक छोटा सा उदाहरण है। यानी सरल शब्दों में कहें तो मेरी आवाज महत्वपूर्ण है लेकिन आपकी आवाज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
0: ये सबसे बड़ी बात है ना, कि हमारे विचार तो हमने थोप दिए किसी पर लेकिन सामने वाले के विचारों को देखा भी नहीं, लेकिन अगर आपने दोनों विचारों का सम्मान किया, यही लोकतंत्र है।
1: बिल्कुल,
0: है ना?
1: बिल्कुल।
0: और मान लीजिए घर में आज तय होना है कि रात के खाने में क्या बनेगा, है ना, होता है ना भाई, आज क्या बनाना है? तो पापा कहते हैं भाई आज तो पूरी सब्जी खाने का मन है, और बच्चे कहते हैं नहीं नहीं नहीं हमें तो पिज्जा खाना है, हमें तो बर्गर खाना है, है ना? लेकिन मम्मी कहती है कि आज तो खिचड़ी बनेगी,
1: हो गया फैसला।
0: ऐसे में क्या होता है कि वो लोकतंत्र खत्म हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और असंतोष घर में
1: प्राप्त
0: हो जाता है, है ना?
1: बिल्कुल।
0: तो
1: जी, और लोकतंत्र हमें सिखाता है कि असहमत होना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब हम दूसरे की बात सुनना ही बंद कर दें। तो लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि इसमें नागरिक केवल दर्शक नहीं होते बल्कि व्यवस्था में भागीदार होते हैं। यानी कि मम्मी को सबकी बात सुननी चाहिए। हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, सवाल पूछते हैं, अपनी राय रखते हैं और समाज के बेहतर भविष्य के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं।
0: बिल्कुल, और साथ ही हमेशा ये भी याद रखना चाहिए आरती हमें, ये अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं जिन्हें निभाते हुए लोकतंत्र का सम्मान किया जा सकता है। और अब मैं भी यहाँ सम्मान करूंगी लोकतंत्र का, आपसे पूछती हूँ कि एक अंतराल ले लें।
1: बिल्कुल लिया जाए।

0: तो इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से हम स्वागत करते हैं
1: जी।
0: तो हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है, हमारे सखियों और सखाओं ने,
1: हमारे जो सखियां हैं, जो हमारे सखा लोग हैं, सभी कुछ बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं। तो एक हमारे जो जो श्रोता है वो लिखते हैं कि इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में हुई थी। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र के महत्व को बढ़ावा देना, लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना है और इसी उद्देश्य से प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाता है।
0: बिल्कुल, हमारे श्रोता ने लिखा है कि लोकतंत्र में जनता की सरकार जनता के द्वारा और जनता के हित के लिए बनाई जाती है और

0: लोकतंत्र का यही एक मौलिक पहलू भी है। ऐसे में लोकतंत्र के परिवर्धन और संवर्धन का ये आज का अंतर्राष्ट्रीय दिवस खास मायने रखता है और इसीलिए इसे मनाया भी जाता है।
1: बिल्कुल, और साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र केवल मतदान का अधिकार नहीं बल्कि समानता, स्वतंत्रता, सहिष्णुता और अपनी बात कहने के अधिकार का सम्मान भी है। सच्चा लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब हम दूसरों के विचारों का सम्मान करते हुए अपने कर्तव्यों को भी ईमानदारी से निभाते हैं।
0: बिल्कुल, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2007 में एक प्रस्ताव पारित करके इस दिन की शुरुआत कर दी थी और इसका उद्देश्य दुनिया भर में लोकतंत्र के सिद्धांतों, मूल्यों और स्थिति की समीक्षा करना और इसे मजबूत करना है। यानी जब हर आवाज मायने रखती है तो लोकतंत्र बेहतर परिणाम देता है और ये खास आज के दिन मनाया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में हुई और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य था लोकतंत्र के महत्व को बढ़ावा देना, लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना और इसी उद्देश्य से प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया भी जाता है।
1: जी, तो इस समय लोकतंत्र क्या कहता है,
0: यही कि गीत सुन लिया जाए।
1: जी, बिल्कुल।

0: तो आरती, हमारी बहुत सारी सखियों ने, बहुत सारी महिलाओं ने ख्वाब को हकीकत का रंग भी दिया है।
1: बिल्कुल,
0: है ना। और उसी में एक नाम है सुमिता घोष का।
1: जी, तो कहते हैं ना कि किसी के पास हुनर होना बड़ी बात है, लेकिन उस हुनर को सही पहचान और सही अवसर मिलना उससे भी बड़ी बात है। हमारे देश की गांवों में सदियों से महिलाएं खूबसूरत कढ़ाई करती आई हैं, हाथ करके एक पर बुनाई करती आई हैं, कढ़ाई करती आई हैं, और अपनी पारंपरिक कलाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाती आई हैं।
0: बिल्कुल आरती, सही कहा तुमने। लेकिन एक सवाल ये कि अक्सर इतने सुंदर काम को देखकर भी मन में आता है कि क्या इन हुनरमंद हाथों को उनके हुनर का उचित मूल्य मिल सकता है। बस इसी सवाल को अपने काम का आधार बनाया हमारी आज की सखी विशेष यानी सुमिता घोष ने।
1: जी, और सुमिता घोष का जन्म हुआ कोलकाता में और उन्होंने मुंबई से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने अमेरिका के एक विश्वविद्यालय से कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में मास्टर डिग्री की उन्होंने हासिल की। और सुमिता का असली विश्वविद्यालय था उनका अपना देश, यानी कि अपना ग्रामीण भारत।
0: कितनी बड़ी बात है ना।
1: जी,
0: और एक लंबे समय तक सुमिता ने ग्रामीण राजस्थान में एक ट्रस्ट के साथ काम किया और उनका काम ग्रामीण विकास, समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास और विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ काम था, है ना।
1: और इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, सच में जो ग्रामीण भारत को चुनते हैं, सच में वो कुछ कर गुजरने के लिए मन में पहले ही सोच के रखते
0: ठान लेते हैं। मैं बताऊं, मैं एक ऐसी महिला से मिली थी जो एनएसडीएन थी और उन्होंने नागालैंड जाकर वहाँ के जो लोग थे उनको चुना कि मैं उनको एक्टिंग सिखाऊंगी।
1: अरे वाह।
0: जो वहाँ का जो ग्रामीण तबका था, जो अशिक्षित था, वहाँ जाकर उन्होंने एनएसडी पास आउट करने के बाद वहाँ स्थान चुना और वहाँ जाकर वो आज भी काम कर रही
1: है। बहुत बड़ी बात।
0: कितनी बड़ी बात है, जबकि हम एनएसडी से निकलकर सीधा मुंबई की शरण में आते हैं, है ना, और हम फिल्मों की तरफ आते हैं। लेकिन उन्होंने वो स्थान चुना जहाँ कोई जाना नहीं चाहता और उन लोगों की तरफ कोई देखना भी नहीं चाहता है, लेकिन उन्होंने वो स्थान चुना और वहाँ लोगों को कलाकारी से जोड़ा। तो ऐसे ही सुमिता घोष हैं जो कि वो सोच रही थी कि कैसी संस्थाएं होनी चाहिए जो समाज में जो असमानताएं हैं और अन्याय है उसे कम करने में हमारी मदद कर सकती
1: है। बिल्कुल। और ये सब सोचते हुए उनके मन में एक विचार आकार लेने लगा था कि गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करना बहुत जरूरी है। किस तरह कारीगर और ग्राहक के बीच सीधा रिश्ता बनाया जाए, परंपरा को आधुनिक बाजार से कैसे जोड़ा जाए, यही विचार आगे चलकर रंग सूत्र बना। लेकिन विचार को हकीकत में बदलना आसान भी नहीं था।
0: बिल्कुल, इतना आसान तो नहीं होता है। जब भी कोई व्यवसाय शुरू करना हो तो सबसे पहले उसकी जो जरूरी चीज है वो क्या है, पैसा।
1: बिल्कुल,
0: पूंजी, है ना। और सुमिता घोष को भी पूंजी की जरूरत थी, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने थी जो थी दान देने वाली संस्थाएं, और उन्हें इसलिए फंड नहीं करना चाहती थी क्योंकि रंगसूत्र एक चैरिटी नहीं बल्कि व्यवसाय के रूप में काम करने वाला सामाजिक उद्यम था।
1: बिल्कुल। और इसके अलावा बैंक भी ऋण देने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि पर्याप्त व्यवसायिक अनुभव और ऋण के लिए जरूरी चीजें उपलब्ध नहीं थी उनके पास। सुमिता के मन में यही बात चल रही थी कि अब क्या किया जाए। तभी उन्हें एक ख्याल आया, अगर इन्हीं कारीगरों के हुनर से ये संस्था बनेगी तो क्यों ना वो इसके मालिक भी बन जाए।
0: कितनी बड़ी बात उनके दिमाग में आई जो कि हर एक के दिमाग में नहीं आती
1: क्योंकि
0: है।
1: अपना तो सब सोचते हैं कि हम अपना व्यवसाय खड़ा कर लें, लेकिन जो हमारे साथ काम करने वाले हैं उनको, उनके लिए सोचकर इतनी बड़ी बात सोचना बहुत बड़ी।
0: बिल्कुल, और कि वही मालिक भी बने। हम क्या सोचते हैं, काम तो हम शुरू कर दें, मालिक भी हम बन जाएं।
1: जी,
0: है ना, हमारे विचार में यही रहता है ना ज्यादातर कि मालिकाना हक जो है हम पाना चाहते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि राजस्थान के लगभग 1000 कारीगरों ने आगे बढ़कर कंपनी में 1-1000 रुपए का निवेश किया, यानी शुरुआत हुई कारीगरों की अपनी भागीदारी से। और ये केवल पैसा जुटाने का तरीका नहीं था बल्कि एक सोच थी कि कारीगर सिर्फ काम करने वाला व्यक्ति नहीं है बल्कि व्यवसाय का भागीदार भी हो सकता है।
1: बिल्कुल, एक बहुत अच्छी शुरुआत करी। और यही रंग सूत्र की सबसे खास पहचान बनी। रंग सूत्र की यात्रा पहले 2004 में एक उत्पादक कंपनी के रूप में शुरू हुई और फिर 2006 को क्राफ्ट्स इंडिया के रूप में पंजीकृत हुई। और रंग सूत्र का उद्देश्य था कि ग्रामीण कारीगरों को नियमित काम और टिकाऊ आजीविका से जोड़ना, साथ ही उनके पारंपरिक कौशल को भारत और दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना।
0: सबसे बड़ी बात

0: ये थी।
1: जी
0: और यहाँ बात केवल आरती हस्तशिल्प बेचने की नहीं थी,
1: जी
0: बात थी हुनर, बाजार, सम्मान और स्वामित्व, इन सभी को एक
1: एक
0: साथ
1: साथ
0: लाने की।
1: जी
0: और रंगसूत्र से जुड़े कार्यक्रमों में बड़ी संख्या महिलाओं की थी, तो नीति आयोग के अनुसार रंगसूत्र में 2000 से अधिक कारीगर शेयर होल्डर रहे और लगभग 80% कारीगर महिलाएं हैं। तो कारीगरों की भूमिका सह मालिक, सह निर्माता, प्रबंधक और बोर्ड सदस्य के रूप में भी वहां पर रही है।
1: बिल्कुल। और यानी जो महिला है उनके हाथ में सिर्फ सुई और धागा नहीं आया, बल्कि साथ में उनके हाथ में निर्णय लेने की ताकत भी आई।
0: बिल्कुल
1: और सुमिता घोष के रंगसूत्र पर लिखे एक लेख में एक महिला कारीगर के अनुभव को बताया गया है कि कंपनी के शेयर उसके नाम की उन संपत्तियों में शामिल थे जिन पर उसका अपना अधिकार था। अपनी कमाई से उसके पास अपने बैंक खाते और खर्च के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी आई थी।
0: और यही वो बदलाव था जिसे सुमिता घोष सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानती थी।
1: जी
0: रंगसूत्र ने पारंपरिक कढ़ाई, हथकरघा और अन्य हस्तशिल्प कौशल को आधुनिक बाजार की जरूरतों से जोड़ने का काम किया और इसका उद्देश्य था ग्रामीण कारीगर केवल स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं रहे बल्कि बड़े ग्राहकों और वैश्विक बाजारों तक इनकी पहुंच बन सके।
1: बिल्कुल। और रंगसूत्र ने बड़े बाजार भागीदारों के साथ में काम किया है। इस तरह एक गांव में बैठा कारीगर अपने हाथों से तैयार किए गए उत्पाद को दुनिया के दूसरे हिस्से के ग्राहक तक पहुंचते हुए देख सकता था। सुमिता घोष के काम को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली। 2016 में उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें ग्रामीण कारीगरों और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े उनके कामों के लिए मिला था।
0: बिल्कुल सही कहा। तो एक तरफ गांव की कच्ची गलियां, दूसरी तरफ दुनिया का बड़ा बाजार, इन दोनों के बीच एक पुल बनाने की जो कोशिश, या यूं कहें बहुत बड़ी कोशिश, बहुत बड़ा काम सुमिता घोष ने किया, उस पुल का नाम क्या है?
1: रंगसूत्र।
0: और सुनीता घोष ने साबित किया कि अगर किसी महिला के हाथ में हुनर है तो उसे केवल काम नहीं, साथ में काम का उचित मूल्य, अपनी पहचान और अपने फैसलों की ताकत भी मिलनी चाहिए।
1: बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अगर आप किसी हुनर आपके आपके अंदर कोई हुनर है तो उसको तराशना बहुत जरूरी है ना। और उसको तराश के जब आप अपने लिए उसको उपयोग करते हैं ना, तो अपना ही नहीं, साथ में अपने परिवार का, अपने साथ में जितने भी जुड़े हुए लोग हैं या आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, उन सबका भी भला करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और ग्रामीण तबकों में क्या होता है आरती, महिलाएं एक साथ समूह में इकट्ठी होकर वो लघु उद्योग, लघु कुटीर उद्योग जिसे हम कहते हैं, शुरू करती हैं, छोटे छोटे, और उनमें अलग अलग चीजें बनाती हैं, फिर वो सब मिलकर अपना घर भी चलाती हैं। तो इस तरह के भी जो है कुटीर उद्योग गांवों की महिलाएं खासतौर से, लेकिन उनको एक बड़ा व्यक्ति ऐसा मिल जाए, बड़ी सोच वाला, जो उन सबको इकट्ठा करके इस तरह का एक बहुत बड़ा
1: एक मालिकाना हक भी दे दे साथ में,
0: इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हमने देखी हैं जो 70-80 महिलाओं का समूह इकट्ठा करके गृह उद्योग धंधे शुरू करती हैं और वो वहां पर सभी को जो है अपने अपने तरीके से मालिकाना हक भी मिल जाता है।
1: और ये काम करने से उनके अंदर भी एक आत्मविश्वास आता है ना कि हम भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें शहर जाना पड़े कुछ काम करने के लिए।
0: वो ग्रामीण तबके में रहकर भी
1: हम अपने घर में रहकर, अपने गांव में रहकर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं
0: और आर्थिक रूप से मजबूत हो जाती है। सबसे बड़ी बात है स्त्री का आर्थिक रूप से मजबूत हो
1: जी।
0: और अभी क्या जरूरी है?
1: अंतराल।

0: हाँ तो आरती, पता है कभी कभी हम बहुत बेचैन होते हैं ना, तो कागज के दिल पे कुछ ना कुछ लिखने लग जाते
1: हाँ बिल्कुल
0: हैं और इसी चक्कर में हम साहित्यकार भी बन जाते हैं, लेखक बन जाते हैं, कवि बन जाते हैं।
1: जी
0: और कहते भी हैं कई बार आपका मन बहुत बेचैन है, मन में बहुत सारी बातें हैं, तो उन्हें कागज पर लिख दो, एक डायरी मेंटेन करो, कहा जाता है ना कि डायरी लिखो, ताकि जो सहन शक्ति जवाब दे गई है वो आपकी कलम से आपकी किताब में एक संकलन के रूप में आ
1: आ
0: जाए।
1: जाएगी। और वैसे भी कहते हैं ना, अगर आप लिख लेते हैं ना कोई भी चीज, तो आपका गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाता है, आप थोड़े शांत हो जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो बहुत जरूरी, लिखना तो वैसे भी बहुत अच्छा है।
0: बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लेखक नहीं भी हैं तो अपनी सहनशीलता को बनाए रखने के लिए लिखने का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए, ताकि जैसे ही गुस्सा आया, लगा कि कुछ बोलने वाली हूँ, तुरंत कागज पेन निकाला और उस गुस्से को कागज के द्वारा अंकित कर दो, तो एक बार कागज पे वो गुस्सा उतर जाएगा।
1: बिल्कुल,
0: और
1: आप बाद में से इरेज कर सकते हैं,
0: हाँ,
1: मिटा
0: उसे
1: सकते
0: मिटा
1: हैं।
0: सकते हैं, आप मिटा सकते हैं, फाड़ सकते हैं कागज को कि आपका गुस्सा निकल गया, लेकिन मन आपका शांत हो जाता है। तो इसीलिए कहते भी हैं कि धैर्य रखिए, धैर्य का फल क्योंकि मीठा होता है। और आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में क्या है कि धैर्य रखने का जो कड़ा इम्तिहान है, एक तरह से बहुत बड़ी परीक्षा हो जाती है। अगर किसी से हमारी लड़ाई हो गई, किसी ने हमारी बात काट दी, तो हम गुस्से में आ जाते हैं, सड़क पर ट्रैफिक मिल गया तो हम परेशान हो जाते हैं, मोबाइल में हम इतना कुछ लिखते हैं, अगर हमें लाइक नहीं मिले पर्याप्त, किसी ने असहमति जता दी, किसी ने काट कर दी, किसी ने आपको पसंद नहीं किया, तो हम गुस्से से भनभना जाते हैं और लगते हैं क्या जो बात कर देंगे, और बात गर्मा गर्म स्थिति तक पहुंच भी जाती है।
1: बिल्कुल, अक्सर ट्रैफिक में तो अक्सर ही ऐसा होता है ना कि लोग एकदम से लड़ पड़ते हैं कि क्यों आप आगे निकल, अगर कोई आगे निकल जाए, कोई पीछे रह जा रहा है, तो वो लड़ रहे हैं। मतलब कोई भी किसी भी बात पर हम लड़
0: मतलब
1: सकते हैं।
0: हम अपने वाहन में बैठे बैठे भी गुस्सा निकाल देते हैं और इतने गुस्से में आ जाते हैं कि कई बार हम इस तरह की पढ़ भी रहे हैं स्थितियां कि ट्रेनों में दो लोगों के बीच में तकरार हुई और बात कहां से कहां पहुंच गई, यानी सहनशीलता की कमी होना।
1: बिल्कुल, और सहनशीलता का मतलब हर बात को चुपचाप सह लेना भी नहीं होता है। और जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ हों, उस समय आप थोड़ा सा धैर्य अगर हम बना के रखते हैं ना, और दूसरों के विचार को सुनते हैं और तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। कोई भी बात हो, तुरंत प्रतिक्रिया देने से ये होता है ना कि हम गुस्से में होते हैं उस समय, तो उस समय हमें पता नहीं होता कि हम क्या कह रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो हम सिर्फ गुस्से में अपनी गुस्सा निकाल रहे होते हैं, तो उस वक्त हम कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकते हैं, तो रिश्ते भी उससे खराब हो सकते हैं, दोस्ती टूट सकती है। तो इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए कि हम जो भी सोच समझ के
0: तोल मोल के बोल कहा जाता है ना। और आज की जो टेक्नो समय जो आ गया है, इसमें क्या हो गया है आरती, कि हमें हर चीज तुरंत पाने की आदत हो गई, एक क्लिक में हमें सारी चीजें मिल जाती है, सामान हुआ कुछ भी कुछ ही सेकंड से हमें मिल जाता है। एक समय होता था जब हमें सोचना पड़ता था कि हमें जाना है, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, सामान लाना पड़ेगा, अब बस केवल एक क्लिक करने की जरूरत होती है और सामान आपके घर पर आ जाता है।
1: 5 मिनट का अगर सामान हमारे पास 5 मिनट में नहीं पहुंचा, तो एकदम से हम गुस्से में आ जाते हैं, फिर हम उसको फिर चिल्लाने लगते हैं जो सामान लेकर आया, कि 5 मिनट से 1 मिनट कैसे ज्यादा हो गया,
0: ज्यादा कैसे आपने कर दिया। सोचिए हमारी सहन शक्ति कितना जवाब दे गई है। तो ये जो तनाव है, काम का जो दबाव है, प्रतिस्पर्धा है, और ये जो रोज की दिनचर्या में इतनी व्यस्तता है, हमारी झुंझलाहट को और हमारी स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रही है।
1: बिल्कुल, और जरा सोच कर देखिए, जब कोई हमारे संदेश का तुरंत जवाब नहीं देता है, तो मन में पहला विचार क्या आता है कि आखिर आया क्यों नहीं जवाब, हाँ,
0: क्या
1: जो लिखा था क्यों नहीं आया उसका जवाब, शायद मुझे जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। हम अक्सर जल्दबाजी में पूरी बात जाने बिना नतीजे पर पहुंच जाते हैं, और यहीं से गलतफहमी शुरू हो जाती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, हो सकता है आपने कोई सवाल पूछा और सामने वाले के पास टाइम नहीं हो, या वो उस वक्त यात्रा में हो या परेशानी में हो, जवाब नहीं दे पाया हो, हमने उसका तुरंत अपने तरीके से उत्तर निकाला और फटाफट उसे अपना ही जवाब दे डाला, और
1: या हो सकता है वो नहीं देना चाह रहा उस समय,
0: ये भी हो
1: कुछ सोचना
0: है।
1: चाह रहा हो, समझना चाह रहा हो, या उसके बारे में पड़ताल करना चाहता हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी स्थिति हो सकती है। तो सहनशीलता की जो कमी है, वो उसका असर हमारे व्यवहार पर ही नहीं पड़ता आरती, बल्कि हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है, हम जानते हैं। और परिवार में छोटी सी बात पर बहस, दोस्तों में नाराजगी और कार्यस्थल पर मतभेद होना, इन सब के पीछे कई बार हमारी ये जो अधीरता है, यही जिम्मेदार होती है।
1: बिल्कुल, सोशल मीडिया ने भी हमारी सहनशीलता को कम करने में बड़ी भूमिका निभाई है। अलग विचार रखना लोकतंत्र और समाज की स्वाभाविक विशेषता पैदा होती है, लेकिन असहमति को व्यक्तिगत विरोध मान लेना रिश्तों और सामाजिक संवाद दोनों के लिए नुकसानदायक होता है। कि असहमति अगर कोई हमसे असहमत है तो हमें लगता है कि वो हमारे विरोध में है, हम उसकी विचार को नहीं जानना चाहते, वो किस तरह से क्या सोच रहा है वो उसको नहीं जानना चाहते, बस हम सोचते हैं कि ये हमारे विरुद्ध है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और हम उसका सम्मान भी नहीं करना चाहते हैं कि उसकी विचारों का हम सम्मान करें। अगर वो हमारे विरुद्ध कोई बात कह भी रहा है तो पहले समझें कि वो क्यों कह रहा है।
1: सबका अपना अपना नजरिया
0: विचार हो सकता है, नजरिया हो सकता है आपके प्रति, और सहनशीलता को बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके लिए ये जरूरी है कि हम धैर्य रखें, धैर्य पूर्वक दूसरे को सम्मान दें, सुने, दूसरे व्यक्ति को अपनी बात पूरी करने का मौका दें और गुस्से में तुरंत जवाब नहीं दें, कुछ देर रुकें, सोचें, दूसरे की सोच को समझें, क्योंकि जरूरी नहीं कि सामने वाला गलत ही हो और हम ही सही हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत ही जरूरी बात ये भी है कि हमें छोटी छोटी बातों को जाने देना सीखना होगा, हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता, और कई बार हमारी चिड़चिड़ाहट हमारे जो सामने है उसके सामने वाले की गलती से ज्यादा हमारी अपनी थकान और तनाव का परिणाम होती है, जो हम चिड़चिड़ा रहे होते हैं इस समय। तो हम अक्सर सहनशीलता को कमजोरी मान बैठते हैं, जो बिल्कुल गलत सोच है।
0: बिल्कुल, हमें लगता है आक्रामक रूप बनाए रखना ही आज के जमाने में बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं होता। आपकी सहनशीलता बहुत बहुत मायने रखती है आपके लिए,
1: एक अलग पहचान बनाती है कि इतना सब सामने वाला इतना गुस्सा हो रहा है, इतना चिल्ला रहा है ना, लेकिन आप एकदम शांत खड़े,
0: आपने अपनी सहनशीलता को बनाए रखा है, कितनी बड़ी बात है, इसे कमजोरी नहीं समझना चाहिए। हम समझते हैं कि अरे सामने वाला कितना कमजोर है, देखो इतना सुनने के बाद भी चुप बैठा रहा, मैं होती तो ऐसा कर देती, है ना। ये जो
1: चुप बैठना है सबसे बड़ी ताकत,
0: बहुत बड़ी, और सामने वाले को भी हिला कर रख देती है,
1: बिल्कुल,
0: है ना आपकी चुप्पी। तो सहनशीलता का मतलब कमजोर होना बिल्कुल नहीं है, और देखा जाए तो अपने गुस्से और भावनाओं को नियंत्रण रखें, अपने आप अपने भीतर एक बहुत बड़ी ताकत महसूस करेंगे। इसके अलावा हम दूसरे को धैर्य से सुने, रिश्तों को समझें, और कम बोले, सोच समझ कर बोले तो विवाद भी कम होगा, और जब हम किसी की असहमति का सम्मान करेंगे तो लोगों में हमारा संवाद भी मजबूत होता है।
1: बिल्कुल, और हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर मतभेद को विवाद बनाना भी जरूरी नहीं है, और हर परिस्थिति को अपने अनुसार बदलना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी थोड़ा ठहर जाना, और सबसे जो कहते हैं ना सबसे बड़ा समझदारी वाला कदम होता है
0: वो ये होता,
1: तो थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सोचिए, थोड़ा समझिए, और दूसरे को भी समझने की कोशिश करिए कि वो अगर ऐसा व्यवहार कर रहा है तो उसके पीछे कोई कारण है, क्या है, तो उसके बिना आप एकदम से प्रतिक्रिया मत दीजिए,
0: मत दें, और स्पेस दें खुद को भी और दूसरे के विचारों को भी, ताकि सोचने समझने का मौका मिले। एक श्रोता लिखते हैं कि सहनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि भीतर की शक्ति है, ये हमें सिखाती है कि हर उत्तर शब्दों से देना आवश्यक नहीं होता, कुछ उत्तर स्वयं समय दे देता है, सहन करने की अपनी एक गरिमा है, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कुछ रिश्ते खामोशी से बच जाते हैं और कुछ सच वक्त के साथ सामने भी आ जाते हैं,
1: है ना। और एक श्रोता जो लिखते हैं कि सहनशीलता का मतलब हर बात सहना नहीं बल्कि हर बात पर रिश्ता को तोड़ना नहीं होता है, कुछ बातों को समझकर कुछ को मुस्कुराकर छोड़ देना ही शायद रिश्तों की सबसे खूबसूरत समझदारी है।
0: और हमारी एक श्रोता ने बहुत सुंदर कविता लिखी है हमारे आज के जो भी सेगमेंट है से उन पर, कि मंदाकिनी जी की मधुर आवाज, आरती जी का साथ, सखी सहेली सजाए हर दिन नई बात, लोकतंत्र का संदेश, सहनशीलता की पुकार, सुमिता घोष संग रंग सूत्र की सुंदर बहार, कान भरना मुहावरे की दुनिया का ज्ञान, खाने की अतरंगी आदतों से मुस्कान, विविध भारती की ये प्यारी सी महफिल, मंदाकिनी जी आरती जी बनाए हर पल दिलकश मंजिल।
1: बहुत अच्छा लिखा है। तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जीवन में कोई भी निर्णय लेते समय सहनशीलता की बड़ी जरूरत होती है, मगर आज के युग में जो चीज सबसे ज्यादा इंसानों के अंदर से खोती जा रही है वो है सहनशीलता का गुण। आक्रामकता को इंसान अपना गुण मानने लगा है, जीवन में आक्रामकता पूरा धागा ही उलझा देती है, ये इंसान सोचता ही नहीं। सहनशील और धीर गंभीर इंसान की छवि अलग ही दिखती है, सो सहनशील बनिए और जीवन को सुगम बनाइए।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर लिखा है। एक श्रोता लिखती है कि जहाँ सहनशीलता है वहाँ प्रेम, सम्मान और रिश्तों की गर्माहट भी बची हुई है, वरना आज की तेज रफ्तार जिंदगी में इंसान के पास सब कुछ है, बस ठहर कर सुनने और समझने का धैर्य कम होता जा रहा है। छोटी सी बात पर नाराजगी, जरा सी असहमति पर रिश्तों में दूरी और अपनी बात मनवाने की जिद सहनशीलता को धीरे धीरे पीछे छोड़ रही है। सहनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि रिश्तों को बचाए रखने की एक बहुत बड़ी ताकत है।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि खत्म होती जा रही सहनशीलता का कारण मानसिक तनाव है जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लगातार देखने को मिल रहा है। इसका मुख्य कारण मानसिक दबाव और धैर्य की कमी होती है। इसमें सोशल मीडिया का भी काफी प्रभाव है। इसके द्वारा तुरंत मिल रही जानकारी या मिल रहे मैसेज ने पुराने जमाने के खत लिखने के धैर्य भरे दौर को खत्म कर दिया है। मतलब हम जो सोच समझ के लिखते थे, दो दो तीन तीन दिन में खत
0: पहुंचते थे
1: जी, तो वो मजा इस टेक्नोलॉजी में कहां जो खतों के इंतजार में पोस्टमैन की राह तकते रहने में हुआ करता था। सहनशीलता पाने के लिए तनाव को छोड़कर शांत लहरों पर जीवन की नाव पर सवार होना पड़ेगा।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा लिखा है। और अब हम भी गीत संगीत की नाव पर सवार हो जाते हैं,
1: गीत सुनते हैं।

0: तो आरती, जब हम बात कर रहे हैं आदतों की कि हमारे अंदर सहनशीलता का होना कितना जरूरी है, वहीं कुछ आदतें ऐसी भी हैं जो हमारी हमें हंसी का पात्र भी बना देती हैं, है ना। अभी बताऊं तुम्हें, आज जब मैं सुबह चाय के साथ बिस्किट खाती हूँ हमेशा, आज मैंने सोचा कि नमक का पराठा खा लूं और चाय में डुबो कर खा लूं, है ना, तो कैसा लगेगा। और बाद में मुझे अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो पाई, क्योंकि ये कैसा कॉम्बिनेशन मैं सोच रही थी, ये खाने का भला कोई ऐसे खाता है क्या।
1: लेकिन
0: ऐसा
1: मजा आता है, बहुत
0: मजा आता है। तुमने खा के देखा
1: इसको? बिल्कुल मैंने खाया है।
0: ठीक है।
1: और मतलब हर व्यक्ति का खाने का अंदाज अपना अपना होता है। किसी को गरम गरम रोटी के साथ ठंडी ठंडी दही पसंद होती है, तो कोई चाय के साथ नमकीन की जगह बिस्किट को चाय में डुबोकर खाने का मजा लेता है। कुछ आदतें इतनी अनोखी होती हैं कि सामने वाला देखकर बस यही कहता है कि भला ऐसी भी कोई खाता है। जैसे कि मैं खाती हूँ कैसे, जलेबी को सॉस में
0: डुबोकर।
1: जी।
0: और मैंने देखा हमारी एक नून है, वो पहले दाल पी जाती है और उसके बाद जो चावल है ना वो सूखे खाती है। तो हम उन्हें हंसते थे कि अब आप क्या गोल गोल लौटने वाली हैं कि दाल चावल मिल जाएगा आपका। वो ऐसे ही खाती थी, पहले दाल का कटोरा जो लिया और दाल पूरी पी ली, उसके बाद वो सूखे चावल जो सफेद चावल हम उबाल के रखते हैं उन्हें खाती थी। तो ये भी एक अजीब ही किस्म की आदत है जिसे हम कई बार जब देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। बच्चों में तो ऐसी आदतें हमें मिल जाती हैं कि सब्जी अलग रोटी अलग, दाल को चावल के साथ मिलाने में वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। कुछ लोगों को मैंने, जैसा तुमने कहा, मीठी जलेबी और सॉस के साथ खाती हो तुम, और कुछ लोग खाने को बहुत धीरे धीरे चबाकर खाते हैं, जबकि कुछ लोग फटाफट एक रोटी को दो ही उसमें खा लेते हैं टुकड़ों में। तो ये खाने के जो तरीके हैं, हालांकि हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं, इसलिए सबसे बड़ी बात कि इसका भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हम कुछ भी खा रहे हो लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए।
1: जी बिल्कुल। जैसे कि हमारी एक श्रोता है जो लिखती है कि आज खाने की अतरंगी आदतें देखकर मुझे भी कुछ याद आ गया। मैं जब छोटी थी तब पापा जी के ट्रांसफर के कारण हम लोग दूसरे शहर में आए, और जिस घर में रहने के लिए आए वहां के मकान मालिक के बच्चों को हमने देखा कि वो चावल के साथ दूध का पाउडर खाते थे। उनको देखकर हमें भी शौक चढ़ा पर हम लोग नहीं खा पाए। सच में तो बहुत ही अलग चीज है।
0: बिल्कुल सही कहा। वही एक श्रोता लिखती है कि खाने की आदतें, भाई आदतें सभी की अच्छी हो ऐसा नहीं हो सकता, और यदि है तो फिर कहने ही क्या। लेकिन अतरंगी शब्द या ये तो कार्यक्रम से स्पष्ट हो सकता है कि भोजन सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं बल्कि हमारे मूड, दिमाग और विज्ञान से गहराई से भी जुड़ा है। भावना और मूड का असर खाने की तीव्र इच्छा अक्सर तब होती है जब हम तनाव में होते हैं या हमें किसी अपने की याद आती है। कई बार खाने के तुरंत बाद घबराहट होती है, बेचैनी महसूस होती है, क्योंकि हमारा पेट हमारे दिमाग से सीधे तौर पर जुड़ा होता है। अगर नाक बंद हो तो हमें खाने का असली स्वाद पता ही नहीं चलता, और 80% हिस्सा हमारी सूंघने की क्षमता पर भी निर्भर करता है। और अचानक कभी कभी किसी खास चीज को देखने से भोजन से अरुचि हो जाती है या हमें कै जैसे उल्टी महसूस होने लगती है। तो जब तक आपकी तीव्र इच्छा नहीं हो आप कोई भी चीज नहीं खाएं, ये ध्यान रखिए।
1: जी। और एक हमारी सखी है जो लिखते हैं कि सखियों, कभी कभी हरी मूंग की दाल वाली खिचड़ी में गुड़ डालकर खाया है कभी? बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा।
1: तो इन्होंने यानी खिचड़ी में गुड़ डाल के खाया। तो ये भी हमें करना चाहिए ट्राई इसका मतलब। और कि हमारे साथी जो लिखते हैं कि खाने की अतरंगी आदतें, भाई आदतें तो सभी अच्छी ही हो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन यदि है तो फिर कहना ही क्या। लेकिन अतरंगी शब्द है या अतरंगी, ये इन्होंने कार्यक्रम में स्पष्ट होगा तो अब इनको शायद स्पष्ट हो गया होगा।
0: वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे घर वालों की आदत है कि कटोरे में ही दाल सब्जी को मिला के मिक्स करके खाते हैं, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर मेरे घर वालों को लगता है कि जो मेरे घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको कि खाना खाने से इससे स्वादिष्ट लगता है, मतलब एक ही कटोरे में दाल चावल मिक्स करके खाया जाए, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे ही मेरे घर वालों की आदत है समोसे में सब्जी को पूरी तरीके से मिक्स करके खाने की, ये भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और लोग कहते हैं कि एक बार खाकर तो देखो, पर मैं इसे आज तक नहीं खा पाई। इन दोनों ही तरीकों को मैं कभी भी नहीं मतलब ये इसको स्वीकार ही नहीं कर पाए हैं कि कभी दाल भात को साथ नहीं खाया इन्होंने एक कटोरे में लेकर, और ना समोसा खा पाए हैं।
1: अच्छा। तो होता है ना कुछ अतरंगी आदतें ऐसी होती है ना कि समझ नहीं आता कि ये ऐसी क्यों होती है, मतलब इस तरह से हम कैसे खा लेते हैं। दूसरे को जब हम खाते देखते हैं ना तो लगता है कि कैसे खा रहा है इस तरीके से।
0: हाँ, एक लिखते हैं कि हमें कभी कभी बूंदी में सेव मिलाकर खाना अच्छा लगता है। हाँ, ये तो होता है। हाँ। बूंदी और जो भुजिया जिसे हम नमकीन भुजिया उसे मिलाकर लोग खाना पसंद करते हैं, लेकिन हर एक को वो भी पसंद नहीं आता है।
1: बिल्कुल, सबके अपनी अपनी आदतें अलग अलग तरीके से होती हैं।
0: हाँ, एक श्रोता लिखते हैं कि हल्की फुल्की आदतें, अतरंगी खाना खाने की आदत, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि बड़े अलग तरीके से खाना खाते हैं। और जैसे एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे कुछ याद आ गया, मैं जब छोटी थी तब पापा जी के ट्रांसफर के कारण हम लोग दूसरे शहर में आए और जिस घर में रहने आए वहां के मकान मालिक के बच्चे को हमने देखा कि वो, अच्छा अभी तुमने बताया कि चावल के
1: जी
0: साथ वो दूध, अमूल दूध इस्तेमाल करके खा रहा था, तो ये देखकर उन्हें बड़ी हंसी आई, उन्होंने इसको खा के देखा लेकिन उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और एक लिखते हैं कि मुझे चाय के साथ कुल्फी चूसना बेहद पसंद है।
1: अरे भैया, चाय के साथ कुल्फी,
0: सर्द
1: ये
0: गर्म
1: तो
0: नहीं
1: बहुत
0: होता
1: सच
0: है।
1: में बिल्कुल अलग है।
0: हाँ बस, ये मुझे भी एक साथी मिले और उन्होंने कहा कि अभी कॉफी पी है, चलिए अब जो है हम आइसक्रीम खा लेते हैं। आइसक्रीम खाने के बाद उन्होंने कहा कि चलिए अब गर्म दूध पी लेते हैं। मैंने कहा भाई
1: जी
0: ये कैसी आदत हुई आपकी, लेकिन वो आराम से कर रहे थे इन बातों
1: बिल्कुल
0: को।
1: नहीं, जिनको आदत होती है ना इस तरह की चीजें खाने की, तो उनको कोई परेशानी नहीं होती, वो खा खा
0: लेकिन
1: सकते हैं
0: हमें तो हो जाती है, अभी हमारे श्रोताओं को हो जाएगी अगर हमने उन्हें एक गाना
1: गीत नहीं
0: नहीं
1: सुनवाया।
0: सुनवाया तो।

0: तो हमारा एक सेगमेंट तो रह गया अभी, यानी कान भरना मुहावरों की दुनिया।
1: क्या बात है, हाँ हाँ।
0: तो कान भरना, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि कान भरना मतलब कान में कोई भौतिक चीज या वस्तु को भरना नहीं होता है। इस मुहावरे का अर्थ किसी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत, चुगली करना या उसके प्रति गलत भावना या संदेह पैदा करना होता है। गुजराती में इसे कान भंभेरणी बोला जाता है।
1: अच्छा, वही एक श्रोता लिखते हैं कि कान भरना यानी चुगली करना। मेरे हिसाब से चुगली करने वाले से ज्यादा गलती चुगली सुनने वालों की होती है, क्योंकि यदि हमसे कोई चुगली कर रहा है और अगर हम उसे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएं तो सामने वाला दोबारा चुगली करने की कोशिश भी नहीं करेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि किसी के मन में दूसरे के प्रति गलत या नकारात्मक बातें डालना, उसे भड़काना, जैसे कि हम कोई दो लोग अच्छे मित्र हैं तो उनके बीच में तीसरे व्यक्ति ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया किसी दूसरे के कान में, तो इससे दोनों के बीच में गलत फहमी पैदा हो जाए, तो इसे कान भरना कहते हैं।
1: बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखते हैं कि कान भरना, भाई कान है तो भरे ही जाएंगे ना। फिर कर्ण पूरण की विधिवत विधि भी बताई गई है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप कर्णेंद्रिय का विकास भी होता है, किंतु यहाँ कान भरने का तात्पर्य किसी के खिलाफ किसी को उकसाने मात्र से ही है, और कच्चे कान वाले लोग इसके शिकार शीघ्र बन जाते हैं, और इस दृष्टिकोण से ऐसे लोगों से सावधान रहना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल। और एक और हमें जो श्रोता जो लिखते हैं कि चुपके से किसी के खिलाफ ऐसी बातें कहना जिससे कि वो सामने वाले व्यक्ति से नफरत करने लगे या उस पर शक करने लगे। ऐसा माना जाता है कि यदि खाने में जहर मिल जाए तो उसका इलाज संभव है, लेकिन कानों में घोला गया जहर रिश्तों को अंदर से खोखला बना देता है और इसका कोई आसान इलाज भी नहीं है। तो क्या कह सकते हैं?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और कई कई इसका सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है जब हम जिक्र करते हैं कान भरने का। तो अब तो कार्यक्रम का समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम और कान भरें अपने श्रोताओं के।
0: बिल्कुल।
1: तो कार्यक्रम सखी सहेली से मंदाकिनी जोशी
0: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार।
0: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर वृद्धा और दिव्यांग पेंशन के भुगतान में देरी को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले 5-6 महीनों से पेंशन रुकी हुई है, जिससे बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग दवा और राशन के लिए तरस रहे हैं। श्री मरांडी ने सरकार से तुरंत संज्ञान लेकर बकाया राशि का जल्द भुगतान करने की मांग की है। राज्य के 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में संभावित परिसीमन को लेकर आदिवासी संगठनों ने गहरी चिंता जताई है। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की कि परिसीमन में केवल जनसंख्या को आधार न बनाकर CNT एक्ट, पेशा कानून और विस्थापन जैसे पहलुओं का ध्यान रखा जाए। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी की दिवंगत पत्नी प्रभा शाहबादी और दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार के आवास जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को ढांढस बंधाया और निर्भय शाहबादी को राजनीति में सक्रिय होने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने सुदिव्य कुमार को एक होनहार और सबको साथ लेकर चलने वाला नेता बताया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बुढ़मू में आयोजित श्री गणपति महोत्सव में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने भगवान गणेश से सभी क्षेत्रवासियों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल की कामना की। रांची रिम्स के डेंटल यूनिट में इंटर्न डॉक्टरों ने पिछले 4 महीनों से स्टाइपेंड नहीं मिलने के विरोध में आज करीब 3 घंटे तक पेन डाउन हड़ताल की। डॉक्टरों के हड़ताल पर बैठने के बाद रिम्स निदेशक ने खुद उनसे बातचीत की। चतरा में ACB ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व कर्मचारी सतीश कुमार दास को 10,000 रूपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सदर अंचल के कर्मचारी भवन से हुई इस गिरफ्तारी के बाद टीम आरोपी को हजारीबाग ले गई। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: कि मैं फिर से वापस सिनेमा करने लगूं, लेकिन शर्त यह है कि मुझे

0: संघर्ष तो खूब किया
1: जी
0: और बहुत समय लगा, मुझे लगता है पहचान बनाने में। तो ये पहचान आपकी कैसे बनी?
1: ओके, कुछ लोगों की इमारत जो है सबसे पहले बन जाती है, वो दिखने लगती है। कुछ लोग बुनियाद काफी देर तक बनाते रहते हैं, तो मेरे हिस्से में मेरा ख्याल बुनियाद ने काफी टाइम ले लिया। और फिर जब बुनियाद मिली तो उसके बाद लोगों ने काम भी अप्रिशिएट किया और फिर काम मिलना भी बाकायदा शुरू हो गया।
0: मेरे ख्याल बुनियाद की बात निकली तो बुनियाद सीरियल भी आपका काफी हिट हुआ था,
1: जी उसी,
0: उसी
1: हाँ
0: से बात बनी
1: जी
0: ना?
1: जी जी उससे काफी टेलीविजन में काम मिला उसके बाद।
0: अच्छा, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में क्या एक अजीब सी बात है कि आपकी फिल्म हिट होती है तो इसका फायदा तो सबको होता ही है, तो क्या सीरियल में भी ऐसा चलन है? क्योंकि चैनलों की भीड़ बढ़ती जा रही है, जैसे कि आप बहुत से सीरियल कर रहे हैं, सांस है, बुनियाद, दरार, किस्मत, फरमान वगैरह, तो ये कॉम्पिटिशन को आप कैसे फेस करते हैं?
1: ये सब ऐसा ही है जैसे फिल्मों में होता है, मतलब फिल्में अगर आपकी चलती हैं आपको काम मिलता रहता है, सीरियल आपके चलते हैं या चल रहे हैं, आपका काम अप्रिशिएट हो रहा है तो आपको काम मिलता रहेगा। देखिए बेसिकली अगर आप डॉक्टर हैं,
0: जी
1: आपके पास अगर पहले दो मरीज आए और वो आपके हाथों मारे जाएं, तो फिर मेरा ख्याल आपके पास कोई दूसरा मरीज नहीं आएगा। तो ऐसा ही है, एक्टर की अगर पहली फिल्म या पहले दो तीन सीरियल चल गए तो उस बेचारे को काम मिलता रहता है, वरना उसी डॉक्टर वाला हिसाब होता
0: अच्छा, आपने फिल्में भी बहुत की और सीरियल भी बहुत
1: है।
0: किए।
1: जी
0: शंकर हुसैन फिल्म की आपने, फिर सत्ते पे सत्ता की, अशांति की, माचिस हाल ही में की,
1: जी माचिस हाल में
0: एक शर्त भी फिल्म की थी, और सीरियल तो आपने मेरे ख्याल से सैकड़ों कर लिए। तो फिल्म और
1: ये आप
0: सीरियल
1: शिकायत कर रही हैं, ये बता रही हैं, मुझे लगता है समझ
0: क्योंकि मैं तो रोज ही जब टीवी
1: नहीं
0: ऑन करती हूँ तो आप ही आप दिखाई
1: नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। वो
0: देते
1: असल
0: हैं
1: में ये कई लोग ये सोचते हैं ऐसा, क्योंकि ये जो नए चैनल्स आए हैं इसमें प्रोग्राम्स क्योंकि रिपीट होते हैं तो ऐसा लगता है लोगों को कि ये बहुत आ रहा है, पर मैं ज़्यादा काम लेता नहीं हूँ, उतना ही लेता हूँ जितना मैं अच्छी तरह निभा सकूँ जिसे। हाँ
0: अच्छा, एनीवे
1: तो क्या कह रही थी आप?
0: फिल्म और सीरियल आप करते हैं इकट्ठे, तो अभिनय में क्या कुछ फर्क होता है? जैसे कि स्टेज और फिल्म में अभिनय का फर्क होता है, इस तरह से सीरियल और फिल्म में भी फर्क होता है क्या?
1: नहीं, अभिनय में फर्क थिएटर और सिनेमा में शायद हो और है भी थोड़ा सा, वहाँ पे एक दो सुर ऊपर करना पड़ता है थिएटर
0: लाउड
1: में।
0: होता
1: जी
0: है
1: हाँ थिएटर में,
0: जी।
1: सिनेमा में क्योंकि एक एक आपकी टाइट क्लोजअप में, इतने बड़े क्लोजअप में आपका एक एक नस दिखती है कैमरे को, तो उसमें आपको इतना एग्जैजरेट नहीं करना पड़ता। ऐसा ही मैं समझता हूँ, टेलीविजन और सिनेमा में एक्टिंग में कोई फर्क नहीं। हाँ डायरेक्शनल टेक्निक्स में फर्क हो सकता है भी, क्योंकि ये मीडियम जो टेलीविजन का है वो क्लोजर मीडियम है शॉट्स का, लेकिन एक्टिंग के लिहाज से मैं नहीं समझता हूँ। आप जैसे अपना कैरेक्टर किरदार वहां निभाते हैं सिनेमा में, वैसे ही आपको यहाँ पे करना पड़ता
0: ये फिल्म में तो बहुत ऑथेंटिसिटी दिखानी पड़ती है ना,
1: है। क्यों क्यों हम
0: कैरेक्टराइजेशन
1: लोग टेलीविजन में
0: पर
1: नहीं दिखाते? मेरा ख्याल हम लोग टेलीविजन में ज्यादा ऑथेंटिसिटी
0: ज्यादा
1: दिखाते
0: होते
1: हैं।
0: हैं। यही बात तो
1: बिल्कुल
0: उगलवाना चाह
1: गुस्सा आ गया मुझे गुस्सा
0: रही
1: दिलवा के है
0: थी। अच्छा, जब शुरू शुरू में सीरियल
1: हाँ
0: बनने शुरू हुए थे तो फिल्मी एक्टर इसे, माफ कीजिए, छूत की बीमारी समझते थे, कहते थे कि नहीं, छोटे से बक्से में कौन अभिनय करेगा सविता जी,
1: हाँ
0: अब तो बड़ा एक्टर जो भी है वो सब सीरियल में ही अपने आप को कैश कर रहे हैं। क्या ख्याल आते हैं इस बारे में?
1: देखिए मेरे ख्यालात जो हैं इस बारे में बड़े सीधे और ये हैं, मैं सिनेमा को नंबर वन समझता हूँ, बट टेलीविजन का शुक्रगुजार हूं कि इसने मुझे काम दिया और मेरा किचन चलाया। लेकिन सिनेमा जैसा मैजिक टेलीविजन पर नहीं है और नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि टेलीविजन जो देखा जाता है वो ऐसे माहौल में देखा जाता है जहां पे और इतनी 100 डिस्ट्रैक्शन है, आपका बच्चा रो रहा है, अभी खाना बनाना है, वो उसने स्कूल जाना है, कल के स्कूल की तैयारी करनी है, तैयारी करनी है, कुछ भी करना है। सिनेमा एक हॉल में देखा जाता है, इट इज अ ग्रेट मैजिक, इट इज अ मोस्ट ब्यूटिफुल आर्टिस्टिक अचीवमेंट आई थिंक सिनेमा इज। तो मेरे लिहाज से अगर मुझे आज कहा जाए सिनेमा और टेलीविजन में कौन सा बेटर मीडियम है, डेफिनेटली सिनेमा है। लेकिन क्योंकि सर्वाइवल हर एक को सर्वाइव करना है यहाँ, तो जो सिनेमा में नहीं है वो टेलीविजन में है, जो सिनेमा में बहुत अच्छा जिनका करियर जा रहा है वो टेलीविजन में नहीं आना चाहते, दैट इज अंडरस्टैंडेबल।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसी बात पे, इसी अच्छी बात पे एक अच्छा सा गाना सुना दे।

0: जी
1: तो फिर अच्छे से शायर का ही सुनाते हैं।
0: जो आपको पसंद हो।
1: गालिब की एक गजल है, मुझे बड़ी पसंद है और जगजीत ने बहुत खूबसूरती से गाई है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक।
0: वाह वाह वाह।

0: कमल जी, पहले एक्टर स्टेज को स्टेपिंग स्टोन बना के फिल्मों में आते थे, मतलब प्रवेश करते थे, और अब उल्टा हो रहा है कि फिल्मों से सीरियल में आ रहे हैं। ये उल्टी हवा कैसे बह निकली?
1: फिल्मों से सीरियल में आ रहे हैं, मेरा ख्याल इसलिए आ रहे हैं जो फिल्मों से निकाले जा रहे हैं उसी से आ रहे हैं। सीधी बात,
0: निकाले नहीं जा रहे, दोनों जगह काम कर रहे हैं।
1: जिनको काम नहीं मिला, जिनको मैंने वही पहले ही अर्ज किया है कि अगर जो जिसका करियर बहुत अच्छी तरह चल रहा है फिल्म में, वो टेलीविजन में नहीं आना चाहता है, एंड इट इज अंडरस्टैंडेबल, ऐसी कोई वही बात नहीं है, और ऐसा उसको अपटी बिहेवियर समझा जाए ऐसा भी नहीं मैं समझता।
0: रोजी रोटी का सवाल है,
1: नहीं रोजी रोटी का नहीं भाई, वो क्यों लेसर मीडियम में आएगा? अगर मैं नॉवल लिख रहा हूं तो मैं रिपोर्टिंग न्यूज़पेपर के लिए क्यों करूंगा? सीधी बात, अगर मेरा नॉवल बिक नहीं रहा है तो मैं न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग करूंगा, ये है।
0: अच्छा, स्टार सिस्टम, इसका फिल्म जगत में साम्राज्य है जो लंबे समय से चल रहा है। सिर्फ ऐसा होता है कि चेहरे बदल जाते हैं, और अब यही बात सीरियल में भी लागू होती है। आपके क्या विचार हैं?
1: वो इसलिए क्योंकि बेसिकली मीडियम जो हैं सारे ये हम मूवी बिजनेस कहते हैं, टेलीविजन बिजनेस है।
0: बिजनेस
1: जी हाँ। तो जब तक आपके प्रोग्राम बिकेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, तो आपको एडवर्टीजमेंट्स नहीं मिलेंगे। एडवर्टीजमेंट नहीं मिलेंगे तो चैनल कैसे रन करेगा? तो चैनल नहीं रन करेगा तो वो फिर पूरा विशेष सर्कल है बड़ा। तो इसमें जो एक्टर्स जो थोड़े बहुत ऊपर हैं, टॉप लेवल पे हैं, उनके प्रोग्राम हिट हो गए हैं या उनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो और क्योंकि लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो चैनल कहता है कि भाई इन एक्टर्स के साथ बनाओ।
0: मतलब यह ऐसा तो नहीं जो पैसा लगाता है वो बोलता है हमको यही चाहिए, जैसे फिल्मों में प्रोड्यूसर पैसा लगाता है?
1: नहीं नहीं, हाँ तो ऑब्वियसली
0: है ना,
1: जो पैसा लगाता है वो ये सोच के लगाता है कि मुझे पैसा रिटर्न होगा, मतलब रिटर्न में आएगा पैसा, वापस आएगा, जो लागत है मेरी वो कम से कम वापस वसूल होगी। तो वो कैसे होगी? केवल पॉपुलर एक्टर को लेंगे आप, पॉपुलर हर जो चीज है जो डिमांड में है, जिसे सराहा जा रहा है इस वक्त, पब्लिक उसे चाह रही है, उसे ही आप लेके बनाएंगे ना।
0: अच्छा, जो ऐसे एक्टर हैं जिनको काम नहीं मिलता तो उनको क्या करना चाहिए आपकी राय में?
1: आप देखिए, हमें भी तो काम नहीं मिला था,
0: फिल्मों में भी काम नहीं मिलता और सीरियल में भी काम नहीं मिलता।
1: एक तो
0: कहाँ तो उम्मीद जगी थी कि सीरियल बन रहे हैं, तो जिनको फिल्मों में काम नहीं मिलता उनको सीरियल में भी मिलेगा।
1: देखिए, अपने बारे में ऑब्जेक्टिव होना बड़ा मुश्किल है जिंदगी में। जब आदमी यहाँ पे ट्रेन में बंबई में उतरता है तो वो ये आप उससे पूछें भाई तेरा अपने बारे में क्या विचार है, क्या राय, तो वो ये थोड़ी कहेगा कि नहीं यार मुझे नहीं लगता मैं मेरा करियर यहाँ बनेगा और मुझे लगता है कि मुझे वापस लौट जाना चाहिए। ये कोई कहता है?
0: कोई नहीं कहेगा।
1: तो फिर तो या तो अपने बारे में बहुत ही ऑब्जेक्टिव आदमी हो, अपने आप को एक साल दे, दो साल दे, ढाई साल दे, तीन साल दे, या फिर बाप बहुत रईस हो, समझे ना, जिसे कोई फर्क ना पड़े कि बेटा कर रहा है स्ट्रगल तो करता रहेगा। तो अब ये तो अपने पे निर्भर करता है कि मैं अपने आप को कितना वक्त देता हूँ और मैं कितना मतलब मुझे कितनी अपने बारे में समझ है और मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ कि मैं कहूँ कि यार बस अब बहुत हो गया, लेट अस ट्राई समवेयर एल्स।
0: कमल जी, जिंदगी का सफर तो हमेशा चलता रहता है, जैसे सुख दुख आते हैं इसी तरह फिल्म सीरियल और सीरियल फिल्म, ये चक्र घूम रहा है, बरसों से घूम रहा है, कहीं ये थम गया तो क्या होगा, ये सोचकर कैसा लगता है?
1: हाँ, बहुत डर लगता है। देखिए, हर आदमी जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसका काम कब अच्छा चलता रहे और कब तक चलता रहे इसका कुछ भरोसा नहीं। तो ये तो हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है हर सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी को और हमारे कॉम के लोगों को यानी एक्टर्स को, कि भाई ये जो इस वक्त बड़ा अच्छा चल रहा है ये कल को ऐसा ना हो कि सब हमारे प्रोग्राम बंद हो जाएं और हमें काम ही ना मिले, क्योंकि हम तो एक ही काम जानते हैं ये, और यही मिलना बंद हो जाएगा तो फिर हम क्या खाएंगे? हमने माना दिल्ली में रहें मगर खाएंगे क्या?
0: अच्छा, आपकी पत्नी भी तो इसी मीडिया में है
1: जी,
0: तो आप दोनों अपने इस प्रोफेशन को, अभिनय को, किस तरह से एडजस्ट करते हो? कभी प्रोफेशनल जेलेसी का सामना तो नहीं करना पड़ता?
1: नहीं नहीं, क्यों, मैं जेलेसी इसलिए नहीं क्योंकि मेरी बीवी मुझसे बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है तो वो इसका मुझे अंदाजा है और मैं जानता हूँ इस बात को अच्छी तरह। दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल उसमें जितना सेक्रीफाइस, और मेरा ख्याल औरत जात में जितना सेक्रीफाइस करने की वो है
0: ताकत,
1: इसी वजह से जब से हमारे बच्चे हुए हैं अब तक उसने कोई काम नहीं किया। शी रिफ्यूज टू वर्क, मतलब वो अपना पूरा ध्यान बच्चों की ग्रोथ में लगाना चाह रही थी। तो अब रिसेंटली उन्होंने एक दो प्रोजेक्ट अभी साइन किए हैं, पायलट्स किए हैं, लेकिन मेरा बड़ा बेटा 9 साल का है, मेरा छोटा बेटा आदित्य 5 साल का है, बड़ा सिद्धार्थ, तो ये जब तक छोटे थे तब तक उन्होंने कोई काम लिया ही नहीं। तो इस वजह से कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि भाई वो बाहर है तो घर नहीं है। उसके उसके जहन में घर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस, जहाँ पे कुछ मतलब जहाँ पे सब सही रहना चाहिए।
0: तो ये एक तरह से एडजस्टमेंट कहीं या सेक्रीफाइस
1: नहीं
0: पति के लिए?
1: नहीं नहीं, वो वजह बहुत छोटी थी मेरी वाइफ अनुराधा, तो उन जब बच्ची थी खुद तो उनसे पूछा जाता था भाई बड़े होके तुम क्या बनोगी, तो कहती थी मम्मी। तो उसे शुरू से बच्चों का शौक रहा है, घर का शौक रहा है, उसे घर को सजाने का, घर को बनाने का, और बेसिकली शी इज अ होम बर्ड।
0: तो इसी एक सुंदर सी बात पे कुछ आपकी पसंद का सुंदर सा गाना,
1: सुंदर सी बीवी के लिए।
0: हाँ, सुंदर सी बीवी के लिए कितनी।
1: तो चलिए बीवी की बात चलिए तो फिर उन्हीं की फिल्म का एक गाना सुनाते हैं।
0: कौन सी फिल्म का?
1: उत्सव का, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन क्यों महका।

0: आप जब छोटे थे तो तभी से एक्टर बनना चाहते थे या बड़े होने पर इस तरफ रुझान हुआ? क्योंकि हमारे माँ बाप अक्सर कहते हैं हम अपने बच्चे को बड़े होने पर डॉक्टर बनाएंगे या इंजीनियर बनाएंगे वगैरह वगैरह।
1: जी आप क्योंकि मैं हूँ सहारनपुर का हूँ,
0: जी
1: और मेरा ना कोई चचा ना कोई ताया ना कोई अंकल ना कोई आंटी यहाँ पे बम्बई में थी, तो जाहिर है मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता था कि मैं बम्बई जाकर एक्टर बनूँ। तो सहारनपुर में पढ़ रहे थे, थोड़ा बीच में मसूरी भी पढ़ा मैं, तो फादर चाहते थे कि मैं आईएएस पे जाऊँ, पर इतनी पढ़ाई हमारे बस की बात नहीं थी। थोड़ा वो शायरी का शौक था, जो दोस्त थे हमारे और आज तक वही दोस्त हैं सहारनपुर में, वो भी बड़े आर्टिस्टिकली इंक्लाइंड थे, तो हमें फिल्में देखने का तो बड़ा शौक था। मैं दिलीप साहब का फैन था, देव साहब का फैन था बहुत बड़ा, और बल्कि हमारे ग्रुप्स होते थे, कुछ दिलीप साहब के फैन होते थे और उनके सामने आप दिलीप साहब की बुराई नहीं कर सकते थे, और कुछ दिले देव साहब के फैन होते थे, बाकायदा झगड़ा हुआ हो जाया करता था। लेकिन ये कि एक दिन मैं खुद एक्टर बनूंगा, इसका मुझे भी अंदाजा नहीं था।
0: तो कोई फिल्म देखी थी उसका असर हुआ कुछ तो बात हुई होगी, या कोई
1: नहीं,
0: ड्रामा किया उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा हुआ जहन पर दिमाग पर?
1: मुझे बेसिकली क्या सबसे जो जहन में प्राइम चीज थी वो ये थी कि अपने दो पांव पे खड़ा होना जल्दी से जल्दी जिंदगी में। तो जो भी उस वक्त कंपटीशन आते थे, जैसे एनडीए का आया, डफरिन का आया, ऑफिसर ट्रेनिंग यूनिट होता था उसका आया, तो मैं सब कंपटीशन में बैठ जाता था, और बल्कि मैं एनडीए में ऑलमोस्ट हो भी गया था, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम एक हो गया था उसकी वजह से मैं जा नहीं सका। तो जब ये सब चल रहा था तो उन दिनों एक फिल्म इंस्टीट्यूट का फॉर्म भी आया, तो वो मैंने फॉर्म चुपके से काट कर वो भेज दिया, और चुपके

0: से, और अपने दोस्तों को भी नहीं बताया, क्योंकि छोटे शहर में अगर ये पता लग जाए कि इसने फॉर्म भेजा था और ये सिलेक्शन नहीं हुई तो बड़ा मजाक उड़ाया जाता कि भाई लौंडा हीरो बनने गया था, कुछ नहीं हुआ समझा। तो इस वजह से मैंने बताया नहीं। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे कॉल आ गया, और
1: स्कॉलरशिप भी मिलता था ना
0: नहीं
1: वहां पे?
0: स्कॉलरशिप तो नहीं मिलता था,
1: नहीं,
0: नहीं इंस्टीट्यूट में
1: अच्छा।
0: स्कॉलरशिप उन दिनों नहीं था, इन दिनों हो तो मुझे मालूम नहीं। तो हमारा दिल्ली में स्क्रीन टेस्ट हुआ, ऑडिशन हुआ और हम सेलेक्ट हो गए।
1: अच्छा, अभी तो आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो उनको भी इस लाइन में लाना चाहेंगे या वो जो खुद बनना चाहते हैं, ऐसा कुछ सोचा आपने?
0: जाहिर है, देखिए हर बाप ये कहता है जो बनना चाहता है बच्चा वो बने, लेकिन मैं ये कहता हूं कि बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, ये उम्र कोई भी उम्र हो, तो वो इंडिकेशन देता है कि उसका रुझान किस तरफ है। तो बाप को ये कोशिश करनी चाहिए जिस तरफ उसका रुझान है उसे वो सब सप्लाई करे, चीजें इंसेंटिव उसके शौक को पूरा करने के, तो वो अपना इवेंचुअली करियर बनाएगा। तो वो मैं देख रहा हूँ मेरे बच्चों को, कुछ को एक को स्पोर्ट्स का शौक है, एक पढ़ाई का शौक है, तो अगर इसमें निकलते हैं और अगर उनको बीच में सिनेमा का भी हो जाता है और एक्टर बनना चाहते हैं तो व्हाई नॉट, आई थिंक इज द नोबलेस्ट प्रोफेशन।
2: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं टेलीविजन और फिल्मों से जुड़े अभिनेता कमलजीत। आपसे बातचीत की है सविता बजाज ने।
1: अच्छा, आजकल आजकल के समय में फिल्म इंडस्ट्री को कला का गढ़ माना जाता है, गढ़ है ना? तो इसमें तो मेरे ख्याल से 1 लाख से ज्यादा कोई बता रहा था कि कलाकार हैं जिन्हें काम नहीं मिलता, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा हो गई, क्योंकि हर आदमी इसी लाइन में आना चाहता है। तो आपकी क्या
0: ये
1: ख्याल है इस
0: आप
1: बारे में?
0: मेरा ख्याल फिगर्स इससे बहुत ऊपर
1: ऊंची है
0: ऊंचे
1: ना?
0: होंगे, क्योंकि
1: हाँ,
0: और आप इस बात की बात कर रही हैं, जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर रहा था उस वक्त मेरा दोस्त एक इंजीनियर बनने के लिए रुड़की यूनिवर्सिटी में गया था,
1: जी।
0: उस वक्त 75,000 इंजीनियर खाली था।
1: ओ
0: तो देखिए एक क्लास में 60 लड़के होते हैं, पहले दो तीन तो दो तीन ही आएंगे, पांच दो तीन थोड़े ही आ जाएंगे, तो किसी का वो जो 60वां है एक 60वां भी होगा वहां। तो उसको ये बात से घबराना नहीं चाहिए कि भाई मैं मेरा नंबर 60 आया, अब तेरा नंबर 60 यहां आया, कहीं कोई और चीज जिम में ट्राई करेगा वहां नंबर 1 हो जाएगा। तो अपने अपना पोटेंशियल खुद देखना चाहिए, खुद ढूंढना चाहिए ये।
1: मतलब इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए,
0: हाँ
1: चप्पा चप्पा कोशिश करते
0: बिल्कुल
1: रहना
0: बिल्कुल
1: चाहिए।
0: बाकायदा
1: इसी बात पे आपको आपको वो जो गाना अच्छा लगता है, आप भी थे ना
0: चप्पा च
1: माचिस फिल्म में,
0: माचिस माचिस
1: हो जाए
0: ये बिल्कुल हो जाए,
1: हैं? चप्पा
0: जलाइए
1: चप्पा चरखा
0: जलाइए
1: चले
0: माचिस
1: तो सुनते हैं वही गाना, चप्पा चप्पा चरखा चले,
0: जी।

0: कमल जी, आपको कभी कभी फुर्सत भी मिलती होगी, मतलब जब समय मिलता है शूटिंग से, तो उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं?
1: देखिए, जब मुझे समय मिलता है शूटिंग से, तो सबसे पहले तो मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। तो अपने बच्चों के साथ और घर पे अपनी बीवी के साथ हम लोग इकट्ठा रहते हैं। और अगर कुछ एक दो दिन की ज़्यादा छुट्टी हो जाए इकट्ठी, और बच्चों का भी वीकेंड हो, सैटरडे संडे हो, तो हम लोग खंडाला वंडाला चले जाते हैं। तो ऐसे हमको, हम पूरे परिवार को, हमको ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है। तो अंग्रेजी में कहते हैं, ड्रॉप ऑफ अ हैट वी स्टार्ट फॉर एनी डायरेक्शन ऑन दिस अर्थ। तो इसीलिए मैं हर हर साल अपनी छुट्टियां जो है वो बच्चों की छुट्टियों के साथ कोऑर्डिनेट करता हूँ। एक तो दिवाली में और एक समर वेकेशंस उनकी, तो उनके साथ मैं छुट्टियों पे चला जाता हूँ।
0: तो इसी बात पे कोई बच्चों के लिए गाना?
1: अब बच्चों के लिए क्या गाना, वो जब छोटा था, छोटे थे, तो इनको एक गाना बड़ा पसंद था, और मुझे आज तक समझ नहीं आई क्यों, क्योंकि वो उनकी उम्र का गाना है नहीं, लेकिन वो कुछ झूमने से लगता था, मेरा छोटा बेटा जो था। तो वो गाना है ना, रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है। तो मेरे ख्याल से वो मेरे बेटे को चांद लफ्ज समझ में आता होगा, तो उस वजह से वी यूज टू एंजॉय दैट नंबर। तो वो सुनवा देते हैं हम।
0: ठीक है, तो आइए सुनते हैं, रूप सुहाना लगता है।

0: अच्छा, कभी मन नहीं करता आपका भी कि मैं डायरेक्शन करूं?
1: आप दीजिए डायरेक्शन आप लाइए
0: क्योंकि
1: प्रोड्यूसर, तो मैं ये भी
0: बीस
1: कर
0: पच्चीस साल हो गए आपको
1: डालूंगा
0: लोगों की बातें सुनते कि ऐसा ऐसा करो, अभिनय ऐसा करो, तो आपका तो दिल करता होगा कभी मैं भी कैमरे की
1: कभी
0: बागडोर
1: मैं उसका
0: संभालूं।
1: मैं उस बंदे का कॉलर पकड़ के कहूं कि अब तुम ऐसा करो नहीं, मैं अब देखिए मैं यहाँ पे एक्टिंग कोर्स करके पूना से यहाँ आया था, बड़ा मज़ा आता है इस काम में, इस प्रोफेशन में, लेकिन एज यू गो ऑन तो आप भी बहुत कुछ अलावा एक्टिंग के और भी आपके जो मीडियम है से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो सीखते हैं, साउंड के बारे में सीखते हैं, पिक्चर के बारे में, फोटोग्राफी के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, तो ये मीडियम ही इतना फैसिनेटिंग है कि अगर मुझे कल को ये चांस मिलता है कि मैं डायरेक्टर डायरेक्शन करूं तो मैं जरूर इसमें भी एक क्या कहना चाहिए, गोता
0: चांस
1: बांधना
0: लेना
1: हाँ चांस लेना चाहूंगा,
0: अच्छा
1: व्हाई नॉट,
0: फिल्म में या सीरियल में?
1: किसी में भी।
0: किसी में भी।
1: हाँ
0: अच्छा, कहते हैं ना कि डायरेक्टर बड़े आर्टिस्टों को डायरेक्ट नहीं करता, बल्कि आर्टिस्ट उन्हें डायरेक्ट करते हैं। ये क्या बात सही है?
1: पहली बात तो बड़ा आर्टिस्ट कौन है, क्योंकि
0: आप बड़े आर्टिस्ट हैं भाई।
1: हाँ, तो मैं तो ऐसा नहीं करता हूं तो अगर आप हाँ मैंने आज तक कभी हमेशा अपने डायरेक्टर की सुनी है। हाँ देखिए आर्टिस्टिक डिस्कशन जो हमारी सेट पे होती है कि भाई अगर हम ऐसा कर लें तो शायद ये ज्यादा स्पॉन्टेनियस लगे, अगर हम यूं डायलॉग लाइन को यूं करें तो शायद ये डायलॉग ही ना लगे और ऐसे लगे कि वाकई बातचीत हो रही है दो कैरेक्टर्स के बीच में, तो इतना तो हमारा दखल है ही और होना भी चाहिए, आफ्टर ऑल वी आर नॉट पपेट्स, हम लोग कठपुतलियां नहीं है, एक्टर्स आर नॉट कठपुतलियां,
0: जी।
1: हम सोचने वाले जीव जंतु हैं और हमको इस बात का थोड़ा बहुत ज्ञान भी रहता है कि ये लफ्ज जो है या ये लाइन ये डायलॉग ही लगेगी, क्लीशेड लगेगी, मेलोड्रामेटिक लगेगी या के सच्ची लगेगी, सच्चा लगना बड़ा जरूरी है।
0: ये सच्ची बात जो है आपने बोला, सच्चा लगना जरूरी है। कहते हैं कि अच्छा एक्टर वही होता है जो कि अच्छा इंसान होता है, तो ये बात भी क्या सही है? क्योंकि मैंने देखा
1: पता
0: है
1: नहीं
0: कई एक्टर बड़े अच्छे हैं, बट बेसिकली दे आर नॉट गुड ह्यूमन बींग्स।
1: मुझे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आदमी एक्टर अच्छा है, अगर आर्टिस्ट अच्छा है, चाहे वो पेंटर है चाहे वो एक्टर है, तो उसके काम से आप लुत्फ लीजिए ना, वो बुरा है या अच्छा है भाड़ में जाए
0: वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा, कभी आप पीछे मुड़ के देखते हैं जहां से आपने शुरुआत की, और उसके आप तो बहुत सीढ़ियां आगे चढ़ लिए, तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो पीछे बहुत सारे साथी छूट चुके होते हैं, कुछ को सफलता मिलती है, कुछ को सफलता नहीं मिलती। आपको कैसा लगता है ये?
1: देखिए ऐसा आया कि मेरे साथ जो थे इंस्टीट्यूट से निकले वो मेरा ख्याल अगर इस लाइन में कुछ मकाम हासिल नहीं कर पाए तो कहीं और हैं और बड़े अच्छे ओहदे पे हैं, बड़ी अच्छी पोजीशंस पे हैं। पीछे मुड़ के मैं नहीं देखता, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ,
0: आप पीछे मुड़ के नहीं देखते?
1: मैं कोशिश नहीं करता पीछे न देखने की, पर मेरी फितरत में ही नहीं है, मैं पीछे देखता ज्यादा नहीं हूं,
0: मतलब जो छूट गया वो छूट गया।
1: मतलब कुछ उसमें मेरा फिलोसॉफिकल एटीट्यूड भी नहीं है या फिर मेरी ये कोशिश भी नहीं है कि मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूं, इतना एरोगेंस भी नहीं है उसमें, बस ये मेरे साथ रहा है कि कुछ पुराना याद नहीं आता मुझे ज्यादा, और ये भी नहीं एटीट्यूड मेरा कि मैं सिर्फ आगे बढ़ना चाहता हूँ, ये सब भी नहीं है, बस ये जो इस वक्त कर रहा हूँ बड़ा अच्छा लगता है। मेरे एक दोस्त हैं रमेश दत्त हमारे सहारनपुर में, वो बकौल उनके वो कहते हैं भाई अब बस जीना अच्छा लगता है,
0: वाह वाह,
1: हाँ तो ये काम अच्छा लगता है
0: मतलब
1: जो
0: छैया छैया।
1: हाँ छैया
0: तो
1: छैया
0: आइए फिर सुनते हैं छैया छैया,
1: बेशक
0: है आपको
1: बिल्कुल
0: पसंद है ना?
1: बहुत पसंद है।
2: चल छैया छैया छैया छैया, चल छैया छैया।

0: अच्छा कमल जी, आप एक्टिंग के अलावा क्या करते हैं?
1: एक्टिंग
0: एक्टिंग के अलावा एक्टिंग
1: देखिए बेसिकली
0: मतलब 24 घंटे आप एक्टिंग करते रहते हैं, वेदर कैमरा इज ऑन और
1: नहीं? ये मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सबसे पहले ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो एक्टिंग है जो मैं उसके सामने करता हूँ
0: कैमरे
1: के सामने, उसमें से एक्टिंग बिल्कुल खत्म कर दूं।
0: अच्छा,
1: तो हाँ, तो बाकी क्योंकि सारी जिंदगी में हम एक्टिंग करते ही रहते हैं, तो कम से कम यहाँ से बिल्कुल निकाल के इसका वजूद खत्म करना चाहता हूँ। कितना कामयाब हुआ हूँ ये पता नहीं, लेकिन कोशिश मेरी यही है। बाकी इसके अलावा मैं, मुझे शौक है खेलने के, आई हैव बीन अ स्पोर्ट्समैन बचपन में, स्कूल में भी, और अब भी टेनिस खेलता हूँ मैं, और टेनिस से बहुत लगाव है, बहुत इश्क है, और क्रिकेट से भी। अपने बच्चों के साथ घर में जब बीवी नहीं होती तो फुटबॉल खेलता हूँ, तो क्योंकि बीवी हम लोग को खेलने नहीं देती
0: शीशे टूट जाते हैं
1: तो जब वो घर में होती हैं तो हम लोग थोड़ा बाहर आंगन में खेल लेते हैं, जब वो बाहर होती हैं तो फिर हम लोग अंदर खेल लेते हैं मैं और मेरे दोनों बच्चे।
0: अच्छा, तो आप उनकी मदद भी करती होंगे किचन में, या वो आपकी मदद करती रहती
1: नहीं
0: है?
1: मैं उनकी मदद इस लिहाज से करता हूँ कि मुझे खाने का बड़ा शौक है तो वो खाना इतना अच्छा लजीज बनाती हैं कि मैं उसको खाने में मदद करता हूँ। बाकी मुझे खाना, हालांकि आई एम सरप्राइज माई सेल्फ, क्योंकि मैंने इतना लंबा अरसा बैचलर लाइफ लीड की है मुंबई में कि, और अकेला रहा हूँ जिंदगी में, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आया, और खाना बनाने की कोशिश भी नहीं की मैंने। हालांकि मेरा एक भाई है, वो बड़ा अच्छा खाना बनाता है, मुझे नहीं बनाना आता।
0: अच्छा, आपके आने वाले कोई सीरियल या फिल्म?
1: जी हाँ, एक अभिमान कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं राकेश सारंग, उनके साथ कर रहा हूँ, मनीष गोस्वामी का सीरियल है और वो आने वाला है। बाकी 3 ऑलरेडी चल रहे हैं तो मुझे वक्त भी नहीं है कि मैं ज़्यादा कर सकूँ। ये ख़त्म होने वाले हैं कुछ, सांस जैसे हुआ ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर दूसरा आई टेक ऑन। एक आधा पायलट किया हुआ है और पायलट किए नीना के साथ, दूसरा हमारा पायलट शूट होने वाला है, तो ऐसा ओवरलोड नहीं करता मैं काम से अपने आप को।
0: मतलब जितना कर सकते हैं उतना ही लेते हैं आप?
1: हाँ, जितना अपनी पूरी एबिलिटी, अपना पूरा कंसंट्रेशन मैं जिस काम को दे सकूं वही करता हूँ। तो अच्छा अच्छा, आप मेरी पसंद के गाने तो सुनते रहे, आपको क्या पसंद है?
0: मुझे, आपने एक बहुत बड़ी फिल्म की थी सत्ते पे
1: सत्ता, जी हाँ
0: है ना,
1: हाँ, तो उसका गाना प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया।
0: आया
1: चलिए साहब।

0: अच्छा कमल जी,
1: जनाब।
0: अगर आप अभिनय नहीं करते तो क्या करते?
1: हाँ, अभी नहीं करता। मैंने जैसे शुरू में बताया, मैं फौज में जाना चाहता था, एयरफोर्स में। तो वहाँ इवेंचुअली नहीं जा सका कुछ वजह। तो मुझे समझ नहीं आता वाकई मैं क्या करता, क्योंकि ये काम, इसमें आने के बाद मुझे इससे इतना इश्क हुआ है इस काम से, कि मुझे नहीं लगता कि मैं कोई और काम कर सकता।
0: मतलब आदमी बेकार हो जाता है
1: हाँ,
0: कुछ
1: बेकार
0: और
1: ही
0: कर ही नहीं सकता एक्टर बन के।
1: बिल्कुल
0: हाँ
1: नहीं, एक्टर बन के बेकार हो जाता है ये तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन इससे
0: मतलब
1: अगर
0: इश्क
1: इश्क
0: हो
1: हो जाए,
0: जाता है
1: अगर
0: ना।
1: इससे इश्क हो जाए तो फिर मतलब और कुछ कर नहीं सकता। हाँ, अगर मैं ना, अगर एक और चांस दिया जाता मुझे, तो शायद मैं स्पोर्ट्समैन होता, शायद मैं टेनिस खेलने लगता।
0: अच्छा कई ऐसे भी डायरेक्टर
1: हाँ,
0: हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते थे, आपको मौका नहीं मिला, या कोई ऐसे स्टार्स, आपने बहुत सारे स्टार्स के साथ काम किए, कोई बचा होगा जो आपके फेवरेट रहे हो और आपको मौका नहीं मिला होगा? तो आप तो अभी ऐसे स्टेज पर हैं कि आप जिसके साथ चाहें काम करना चाहें आप कर सकते हैं, तो अभी आप किनके साथ काम करना चाहते हैं?
1: देखिए, जिनके साथ मैंने काम किया है ऑलरेडी, उनको मैं जानता हूँ, और उनमें मोस्टली बड़ा मजा आया है सबके साथ काम करने में। और जिनके साथ मैंने काम नहीं किया उनके बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं, तो मैं कह नहीं सकूँगा। और मुझे अच्छा लगता है जब मैं वैरायटी ऑफ एक्टर्स के साथ काम करता हूँ, अलग अलग रिएक्शन मिलते हैं। वरना एक वो होता है इंस्टिंक्टिवली, आपको मालूम है अगला क्या करने वाला है, तो आपका परफॉर्मेंस और जो इंटरेक्शन है वो ज़रा रेपिटेटिव हो जाता है।
0: नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आप ऐसे कोई स्टार तो होगा ना आपका फेवरेट जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, या कोई डायरेक्टर कि इतने सालों तक तो आपको चांस नहीं मिला, अभी तो आपका समय आ
1: नहीं
0: गया
1: नहीं
0: कि मैं काम कर लूं,
1: मैं अच्छी स्क्रिप्ट में काम करना चाहता हूँ।
0: ऐसा कोई फेवरेट नहीं है या
1: नहीं,
0: लॉन्गिंग नहीं है कि मैं उसके
1: ना
0: साथ
1: ना
0: काम
1: ना ना
0: करूं,
1: ना
0: ऐसा कुछ भी नहीं है?
1: नहीं,
0: चलिए इसी बात पे एक गाना सुनवा दीजिए, थोड़ा मूड अच्छा हो जाए।
1: मूड अच्छा हो जाए। चलिए, तो फिर अपनी बीवी के बात जब करता हूँ तभी मूड अच्छा रहता
0: ठीक
1: हूँ तो उन्हीं की फिल्म का एक और गाना सुना देते हैं आपको, मेरा वो सामान लौटा दो। गुलजार साहब ने बहुत ही खूबसूरत गाना लिखा।

0: इस गीत के साथ ही मैं कमल जी आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में आए, विविध भारती स्टूडियो में आपने हमें अपना अनमोल समय दिया, धन्यवाद।
1: धन्यवाद
2: श्रोताओं, आज इस प्रोग्राम में आप सुन रहे थे टेलीविजन और फिल्मों से जुड़े अभिनेता कमलजीत से सविता बजाज की बातचीत। इस कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोग दिया दिनेश दाभोलकर ने, प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।
3: सेल्यूलॉइड के सितारे।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्यपाल को पत्र लिखकर नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. दिनेश कुमार सिंह को हटाने की मांग की है। उन्होंने अंकेक्षण रिपोर्ट का हवाला देते हुए कुलपति पर परीक्षा मद से 2.5 करोड़ की वित्तीय अनियमितता, अवैध नियुक्ति और साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की आशंका जताई है। जामताड़ा उपायुक्त आलोक कुमार ने आज जनता दरबार का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए 45 से अधिक ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए, जबकि कई शिकायतों का ऑन द स्पॉट निवारण भी किया गया। खूंटी के बिरसा कॉलेज में टीबी जागरूकता कार्यक्रम में 88 विद्यार्थी और युवा माई भारत वॉलंटियर बने। टीबी मुक्त भारत ऐप से पंजीकृत ये स्वयंसेवक जिले को टीबी मुक्त बनाने के लिए मरीजों को मानसिक संबल देंगे, उन्हें समय पर दवा लेने के लिए प्रेरित करेंगे और समाज को जागरूक करेंगे। गुमला में उपायुक्त दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में साप्ताहिक जन शिकायत निवारण दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने भूमि विवाद, राशन, पेंशन और प्रशासनिक अनियमितताओं से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराईं। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों पर प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। खूंटी में आगामी कर्मा, गणेश पूजा विसर्जन और दुर्गा पूजा को लेकर जिले में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने की तैयारी शुरू हो गई है। एसपी ऋषभ गर्ग की अध्यक्षता में हुई क्राइम मीटिंग में संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने और सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। सरायकेला में नई फसल का पहला अन्न इष्ट देवी माँ पावड़ी को अर्पित करने की सदियों पुरानी परंपरा के तहत वार्षिक जानताल नुआखाई महोत्सव श्रद्धापूर्वक मनाया गया। जिला खेल पदाधिकारी अमित कुमार ने यजमान के रूप में पूजा अर्चना की। यह महोत्सव सरायकेला की समृद्ध ओडिया संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मोहब्बत भी प्यार, दोस्ती, रूह का सुकून, दिल का करार भी। तू मेरा अपना भी है और मेरी दुनिया भी। मैंने खुद को तुझ में पा लिया। अब अगर कोई पूछे कहाँ है मोहब्बत, जवाब होगा सिर्फ तुम।
2: कौन है जो सब

मुझे शौक नहीं था मोहब्बत का, तुझे एक नजर क्या देखा, दिल बगावत कर बैठा, फिर ना अक्ल ने साथ दिया, ना दिल ने कोई दलील मानी, बस एक तुम और तुम्हारी याद जिसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। ये मोहब्बत मेरे दिल की किस्मत बन गई, तुझे गले से लगाकर बताऊं कितनी रातें तेरी याद में जागकर गुजर गईं, तुझसे दूरी में कितनी बेचैनी, तन्हाई में कितने लम्हे तेरा नाम लेते हुए ठहर गए, काश तू एक बार करीब आ बैठे, मैं लफ्जों के बगैर अपनी कैफियत सुना दूं कि तुम दूर होते हो तो जिंदगी सूनी बेनूर सी लगती है मुझे।

हम खामोश रहे और तुम बात समझते गए, हम नजरें चुराते रहे और तुम हाल पढ़ते गए, हम हाले दिल छुपाते रहे और तुम करीब आते गए, फिर बेपनाह इश्क हुआ और तुम दिल के मालिक बन गए। तेरे होने से जिंदगी में कोई सवाल नहीं, तेरा हाथ थामा तो सफर में कोई मलाल नहीं, तुझे पाकर अब किसी खुशी का इंतजार नहीं, राहे मोहब्बत में तू मिला तो दिल पे अब कोई अख्तियार

पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ, उसने मुझे छूकर नहीं देखा। छाया गीत कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। पलकों के किनारे जो हमने कभी भिगोए नहीं, उन्हें ये लगता है कि हम कभी रोए नहीं। पूछते हैं किसे देखती हो ख्वाबों में, उन्हें क्या खबर के हम बरसों से सोए नहीं। दिल में छुपा है जो जुबां से कहें कैसे, मोहब्बत है तुमसे अब ये बताएं कैसे। जज्बाए इश्क सच्चा ना होता तो रास्ता बदल लेते, मेरे रास्तों का गुजर तुमसे तुम तक है, सांसों का सफर तुमसे तुम तक है। हाँ मेरी मोहब्बत भी तुमसे तुम तक है, दिल जिसे भूल नहीं सकता वो धड़कन हो तुम। तुमसे है मेरी दुनिया हसीन, मेरी पहली मोहब्बत हो।

तुमसे मिलने की ख्वाहिश भी अजीब ख्वाहिश है। दिल ने हर ख्वाब में तुमको पुकारा है। तुम आओ करीब तो वक्त ठहरने लगता है। तुमसे बिछड़ना दिल को कहाँ गवारा है। ना तुमसे दूर रहने की ख्वाहिश, ना भूलने का हुनर। तुमसे जुड़ी मेरी हर बात अब किसी बात की तमन्ना नहीं दिल में। तुम मिले तो मुकम्मल हुई मेरी तन्हाई। तुम मिले तो मुझे खुद से भी हुई मोहब्बत। तुम्हारा जिक्र हुआ तो महक गई तन्हाई। जैसे खामोश फिजा में उतर गई रानाई। तेरी आवाज में कुछ पाया ऐसा सुकून, जैसे धड़कते हुए दिल को मिले अपनी गहराई। तुम्हें सोचा तो लगा वक्त भी ठहरने। दिल ने इश्क की एक नई दुनिया बसाई।

दिल से उतरकर दिल में ही रहा करते हैं, कुछ ताल्लुक भी अजीब हुआ करते हैं। लोग चेहरों से मोहब्बत का सबक पढ़ते हैं, अपने दर्द को दिल में ही छुपाए रखते हैं। किसी ने पूछा मुस्कुरा के हाल हमारा, दिलों में तूफान लब पे खामोशी रखते हैं। वफा के नाम पे ये जो जख्म मिल गए हमको, उन्हें दिल में तुम्हारी अमानत बनाए रखते हैं।

मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। साथियों, अब वक्त आ गया है छाया गीत कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का, तो आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार। विविध भारती से छाया गीत कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है राघवेंद्र सिंह नेगी।

आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। सायंकालीन सभा में आप सबों का स्वागत है। तो आइए सबसे पहले जानकारी लेते हैं अपनी सभा में प्रसारित किए जाने वाली शेष कार्यक्रम।

शाम 6 बजे आप सुन सकेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। शाम 6:02 पर आप सुनिएगा किसान वाणी कार्यक्रम।

शाम 6:55 पर हम शामिल होंगे अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र की प्रसारण सेवा में, जहां ठीक शाम 7 बजे आप सुनेगा प्रादेशिक समाचार शाम 7:10 पर जिले में आजकल। फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग आप सुन सकेंगे शाम 7:15 से। खुला आकाश का समय होगा शाम 7:45 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से आप सुनिएगा रात 8:45 पर। देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम देश का गान आप सुन सकेंगे रात्रि 8:45 पर।

रात्रि 9:30 पर हम शामिल होंगे विविध भारती के कार्यक्रम में। फिल्मी संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुन सकेंगे रात्रि 10 बजे से। हिंदी में समाचार रात्रि 11 बजे, अंग्रेजी में समाचार रात्रि 11:05 पर।

युवानी कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त आराध्या माही। आशा करते हो कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे और हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम इस कार्यक्रम में आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपके मनोरंजन का ख्याल रखते हुए फिल्मी गीतों को भी सुनवाएंगे। तो दोस्तों, आज हम दो महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, दूरदर्शन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रजातंत्र दिवस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दूरदर्शन दिवस। दोस्तों, भारत में दूरदर्शन केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि यह देश की संस्कृति, शिक्षा, समाचार और सामाजिक जागरूकता को लोगों तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को एक प्रयोगनात्मक सेवा के रूप में की गई थी। धीरे धीरे इसका विस्तार पूरे देश में हुआ और यह भारत के करोड़ों लोगों के बीच का जीवन का हिस्सा भी बन गया। दोस्तों, दूरदर्शन ने देश के गांवों और शहरों तक शिक्षा और जानकारी पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कृषि कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को नई तकनीकों की जानकारी मिली, शैक्षणिक कार्यक्रमों से विद्यार्थियों को सीखने का अवसर मिला और समाचारों के माध्यम से लोगों को देश दुनिया की घटनाओं की जानकारी भी प्राप्त हुई। दोस्तों, दूरदर्शन का एक महत्वपूर्ण योगदान भारतीय संस्कृति और विविधता को सामने लाना भी है। अलग अलग भाषाओं में लोक कलाओं, संगीत, साहित्य और परंपराओं से जुड़े कार्यक्रमों के माध्यम से इतने विविधता में एकता की भावना को मजबूत किया है। आज इंटरनेट, सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म का समय है। युवा मोबाइल पर कुछ ही सेकंड में दुनिया भर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी दूरदर्शन का महत्व कम नहीं हुआ। आज आवश्यकता है कि हम किसी भी माध्यम से मिलने वाली जानकारी को आंख बंद करके स्वीकार न करें, बल्कि उसकी सत्यता जांचें और जिम्मेदारी से उसका उपयोग करें। दोस्तों, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के बारे में।

दोस्तों लोकतंत्र हमें अधिकार देता है, कितने सात कर्तव्य भी। लोकतंत्र हमें अधिकारों के साथ साथ संविधान, कानून, देश की एकता और दूसरे नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना भी सिखाता है। दूरदर्शन हमें संचार और सूचना के महत्व को याद दिलाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हमें जिम्मेदारी नागरिक बनने की भी प्रेरणा देता है। दोनों दिवस हमें यह संदेश देते हैं कि सूचना तभी उपयोगी है जब उसका प्रयोग सही सोच और जिम्मेदारी के साथ किया जाए। दोस्तों सूचना के युग में केवल जागरूक होना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि सही और गलत में अंतर पहचानना भी जरूरी है। अपने अधिकारों को जानिए, अपने कर्तव्यों को समझिए, लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान कीजिए, समाज में सकारात्मक बदलावों को लाने का प्रयास भी कीजिए। दोस्तों क्योंकि एक मजबूत लोकतंत्र केवल मजबूत संस्थाओं से नहीं, बल्कि जागरूक, जिम्मेदार और सक्रिय नागरिकों से भी बनता है। दोस्तों अभी हम बातें कर रहे थे दूरदर्शन दिवस के बारे में। दोस्तों इस चर्चा के बाद आइए सुनाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, इस कहानी के बाद आइए सुनवाते हैं आपको वार्ता। विषय है पर्यावरण संरक्षण एवं युवा वर्ग की जिम्मेदारी। वार्ताकार है अभिषेक चंद्रा।
1: मनुष्य तथा पर्यावरण दोनों परस्पर एक दूसरे के इतने संबंधित हैं कि उन्हें अलग करना कठिन है। जिस दिन पर्यावरण का अस्तित्व मिट गया, उस दिन मानव जाति का अस्तित्व भी मिट जाएगा। यह आधारभूत सत्य है। पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूकता, सजगता तथा अपने दायित्वों का पूर्ण ईमानदारी से हर इंसान को निर्वाहन करना होगा। पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक सामाजिक जागृति लाने हेतु 1972 में संयुक्त राष्ट्र ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की थी। तब से लेकर विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। इस दिन पर्यावरण के प्रति लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने ज्वलंत मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है। आज पर्यावरण पूरे विश्व में एक गंभीर मुद्दा बन गया है। प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग से युक्त वातावरण में सकारात्मक बदलाव लाने की आवश्यकता है। आज वायु प्रदूषण, जल व मिट्टी प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, तापीय रेडियोधर्मी, नागरीय प्रदूषण, नदियों व नालों में प्रदूषण की मात्रा बढ़ना और जलवायु पर ग्लोबल वार्मिंग जैसे खतरे लगातार दस्तक दे रहे हैं। सुनामी, चक्रवात, बाढ़, सूखा, भूकंप, आगजनी और अकाल मृत्यु की घटनाएं बढ़ती जा रही है। इनके पीछे का प्रमुख कारण पर्यावरण को क्षति पहुंचाना ही है। इन्हीं खतरों को अवगत करवाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2018 के लिए प्लास्टिक प्रदूषण पर पराजित करो शीर्षक निर्धारित किया गया था। प्लास्टिक से हो रहे पर्यावरण को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचती है। मानव को प्लास्टिक का उपयोग एक बार करता है और उसके बाद जैसे ही प्लास्टिक पर्यावरण में जाता है तो वह बहुत लंबे समय तक बना रहता है। प्लास्टिक के दुष्प्रभाव का एहसास हिमाचल जैसे छोटे पहाड़ी प्रदेश को काफ़ी पहले ही हो चुका था। 1 जनवरी 1999 को हिमाचल

देश में रंगीन पॉलिथिन बैग का उपयोग पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद वर्ष 2003 में हिमाचल प्रदेश प्लास्टिक को बैन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। वर्ष 2004 में 70 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक बैगों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंधित लगाया गया। सरकार ने जुलाई 2013 से राज्य में पॉलिथीन में बंद खाद्य पदार्थों और अन्य सामान की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया है। हिमाचल प्रदेश पॉलिथीन को धरती से बचाने के लिए अग्रणीय भूमिका निभा रहा है। उपरोक्तर अभियानों के अतिरिक्त भी प्रदेश सरकार ने संतुलित आर्थिक एवं पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित बनाने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों को पुरस्कृत करने की योजना भी बनाई गई है। प्रदेश में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रम को अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा भूमि वन लगाने के लिए द्वारा सरकार ब्यास नदी बेसिन में स्थित 1200 पंचायत के करीब 7000 गांव में जलवायु परिवर्तन की संवेदनशीलता का आकलन किया गया है। हिमाचल भले ही भारत के मानचित्र पर एक छोटा सा राज्य है, परंतु हर पहाड़ी राज्य देश पर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। प्रदेश में 1986 से ही हरे पेड़ों को काटने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में निरंतर वनों में वृद्धि दर्ज की गई है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 13 वर्ग किलोमीटर की वन क्षेत्र वृद्धि दर्ज की गई है। हिमाचल को प्रकृति ने अपार प्राकृतिक उपहार भेंट दिए हैं। जनमानस को भी इसका संरक्षण के लिए उत्सुकता दिखानी होगी। पर्यावरण के क्षेत्र में प्रदेश सरकार बेहतरीन कार्य कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। हाल ही में शिमला जल संकट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाहाकार मचाया था। इसके साथ साथ प्रदेश के अन्य भागों में भी पानी की कमी देखने को मिली। इस वर्ष हिमाचल के जंगल भी बहुत बुरी तरह से जले तथा समाचार पत्रों में किसी न किसी जंगल के जलने की खबर सुर्खियां में ही रही। यहां तक कि एक वन अधिकारी की मृत्यु का भी समाचार भी मिला। हिमाचल प्रदेश को प्लास्टिक संरक्षण में अच्छा कार्य कर रहा है। यदि दोनों को इस तरह से जलाता रहा तो क्या हम वास्तव में पर्यावरण को बचा पाएंगे? आज हर जन मानस के समक्ष सबसे बड़ी समस्या यही है। इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए पर्यावरण का संरक्षण बहुत जरूरी है। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए आज हम सबको बड़ा संकल्प लेना होगा तथा पेड़ पौधों को नुकसान न पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी भी सुनिश्चित करनी होगी। हालांकि भारत के अन्य राज्यों में हिमाचल प्रदेश पर्यावरण संरक्षण में एक अग्रणीय राज्य है, लेकिन जिस तरह से प्रदेश में आपदाएं व मानव जनित समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उनका आकलन करें तो हिमाचल वासियों को अलर्ट करना पड़ेगा। हमारे देश और प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब भी किसी विशेष दिन को सेलिब्रेट करते हैं तो उसकी महक महक को 2-4-3 दिन में ही फीकी पड़ जाती है। चाहे नशा निवारण दिवस हो, पर्यावरण दिवस हो या जनसंख्या दिवस हो, हम उस दिन रैलियां निकालते हैं, जोर जोर से नारे लगाते हैं, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लोगों को संदेश देते हैं, लेकिन कुछ ही अगले दिनों में सब कुछ पुनः शून्य हो जाता है। शैक्षणिक संस्थानों में भी स्लोगन निबंध तथा बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, लेकिन वास्तव में इनका आचरण बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। यही हमारे देश व प्रदेश की सबसे बड़ी कमजोरी बनता जा रहा है। जब तक इन दिवसों को बनाने का परंपरा हमारे दिल के अंदर नहीं समा जाएगा, तब तक हम उनके वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमें युवा पीढ़ी को भी पर्यावरण संरक्षण तथा इसके महत्व से परिचित करवाना होगा तथा युवा वर्ग की दिनचर्या में पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को आदत में बदलना होगा, ताकि हर रोज पर्यावरण व मिट्टी की महक को युवा समझ सकें तथा इसके संरक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। इसके अतिरिक्त पेड़ों को काटने से हमारे पर्यावरण को बहुत क्षति पहुँचती है। मुख्य तौर पर
पेड़ों से बनने वाले

0: कागज की खपत पर भी अंकुश लगाना होगा। भारत डिजिटल इंडिया की तरफ तीव्र गति से बढ़ रहा है। हमें अपनी दिनचर्या में कागजों को अपेक्षा डिजिटल कार्य प्रणाली को भी अपनाना होगा ताकि वृक्षों का कटाव कम से कम हो सके।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता, विषय था पर्यावरण संरक्षण एवं युवा वर्ग की जिम्मेदारी, वार्ताकार थे अभिषेक चंद्रा। दोस्तों, इस वार्ता के बाद अब हम बातें करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के बारे में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की एक सुरक्षा परत है। इसी वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जिसे हम ओजोन परत भी कहते हैं। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें यानी कि यूवी किरणों के एक बड़े हिस्से को रोककर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। इसलिए ओजोन परत को पृथ्वी का एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। लेकिन बढ़ते औद्योगिकरण, प्रदूषण और कुछ रासायनिक पदार्थों के अत्यधिक उपयोग के कारण ओजोन परत को नुकसान पहुंचा। विशेष रूप से क्लोरोकार्बन यानी कि CFCs जैसे रासायनिक ने ओजोन सतह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओजोन परत के कमज़ोर होने से सूर्य की अधिक यूवी किरणें पृथ्वी तक पहुंच सकती हैं जिससे मनुष्यों में त्वचा संबंधी रोग, आंखों की समस्या और अन्य स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकते हैं। इसका प्रभाव पेड़ पौधे, समुद्री जीवन और पूरे पारिवारिक तंत्र पर भी पड़ सकता है। दोस्तों, इसी गंभीर समस्या के प्रति दुनिया को जागरूक करने के लिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को ओजोन परत के महत्व के बारे में बताना और इसके संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देना भी है। ओजोन परत की सुरक्षा के लिए कई देशों ने मिलकर महत्वपूर्ण कदम उठाए। 1989 में मॉकटिन प्रोटोकॉल अपनाया गया जिसके माध्यम से ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्पादन और उपयोग को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए। इसे पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दुनिया के महत्वपूर्ण सफल पहलों में गिना जाता है। दोस्तों, पहला सवाल याद आता है कि युवा इस विषय पर क्यों जाने और इसे क्यों समझना ज़रूरी है। दोस्तों, युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति होती है। आज के युवा ही कल के वैज्ञानिक, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, नीति निर्माण और जिम्मेदारी नागरिक बन सकते हैं। इसलिए पर्यावरण की संरक्षा की जिम्मेदारी भी युवाओं के कंधों पर ही है। हम अपने स्तर पर कई छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। अनावश्यक बिजली की खपत कम करना, सार्वजनिक परिवहन या साझा वाहन का इस्तेमाल करना, पेड़ लगाना और उनकी देखभाल करना, प्लास्टिक और अन्य प्रदूषणकारी वस्तुओं का कम उपयोग करना तथा पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना, ये सभी हमारे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण प्रयास हो सकते हैं। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि प्रकृति केवल हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरोहर है। यदि हम आज पर्यावरण की रक्षा करेंगे तभी आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, स्वच्छ जीवन और सुरक्षित पृथ्वी मिल सकती है। दोस्तों, अंत में मैं इस विषय पर ही कहना चाहूँगी कि ओजोन परत की रक्षा केवल वैज्ञानिकों या सरकार की जिम्मेदारी नहीं, यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। आइए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस पर हम सभी संकल्प लें कि पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, दूसरों को भी जागरूक करेंगे और पृथ्वी को सुरक्षित रखने में अपना योगदान देंगे। ओजोन परत सुरक्षित होगी तो पृथ्वी सुरक्षित होगी और पृथ्वी सुरक्षित होगी तो हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। दोस्तों, अभी हम बातें कर रहे थे ओजोन परत का अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के बारे में। दोस्तों, अब कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव हो चला है तो आइए सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

0: अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सोशल मीडिया पर देशवासियों से 17 सितंबर को अपने घरों प्रतिष्ठानों में आशीर्वाद का दिया जलाने का आग्रह किया है। यह विशेष अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनकी जनसेवा के 25 गौरवपूर्ण वर्षों के उत्सव के उपलक्ष्य में चलाया जा रहा है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा आज समडेगा के कोन मेरला और कहुपानी गांव में लाह प्रसंस्करण कार्यशाला आयोजित किया गया। इसमें शामिल हुए विभागीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि किसान जागरूक होकर कृषि और पशुपालन के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बने। रांची में आज आजसू पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। नेताओं ने गोमिया में सीसीएल खदानों और पलानी गांव में मिथेन गैस रिसाव से लगी आग पर चिंता जताई। साथ ही विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय में टेंडर गड़बड़ी और राधा गोविंद विश्वविद्यालय में फर्जी डिग्री घोटाले की उच्च स्तरीय जाँच की मांग की। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में पहली बार इंजीनियर्स डे मनाया गया। कुलपति प्रोफेसर इला कुमार के निर्देशन में बीसीए विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में छात्राओं को तकनीकी सोच, नवाचार और आध्यात्मिक क्षमता विकसित करने की सलाह दी गई। मौसम विभाग ने राज्य में 19 सितंबर तक वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 16.6 मिलीमीटर बारिश रांची के खलारी में दर्ज की गई। बिहार की राजधानी पटना में 22 से 24 सितंबर को होने वाली 37वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए झारखंड की 131 सदस्यीय टीम घोषित की गई है, जिसमें 69 बालक और 62 बालिकाएं शामिल हैं। संघ के सचिव एसके पांडे ने बताया कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी अक्टूबर में चेन्नई में होने वाली नेशनल जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से मुख्य समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: जय जवान जय किसान।
1: किसान वाणी कार्यक्रम में किसान भाई बहन बनकर स्वागत है संध्या
0: और विष्णु कर जोहार।
1: बताए देवीला कार्यक्रम कर प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
1: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
2: और विष्णु भाई बताओ क्या हाल चाल है?
3: एकदम नगदे है संध्या बहिन, रावरे कर कहो का हाल समाचार है?
2: हमरो नगदे है विष्णु भाई, और हमरे आसरा करेला कि हमरे कर किसान भाई बहिन मन कर हाल चाल हो नगद हुई है नी?
3: एकदम होए के चाहिए। अच्छा संध्या बहिन, अब तो खेती बाड़ी करे के लिए बेस ताक देवत है।
2: सही कहा थी, एकदम सालों भर खेती होएला और खेती कर नवा नवा तरीका मन आए जाए है नी? अरे कर संगे संगे सब चीज नवा नवा हो जाए।
3: एकदम हो जाए है, और पहले जो पुराना विधि रहे उकर से खेती करे में पटवन ले पानी ले बहुत सोचे पड़त रहे।
2: हाँ घट जात रहे, और अब तो ऐसा विधि भी आ जाए कि कम पानी में फसल हो सकेला।
3: और इकर में पानी तो कम लागेला, मकील खर्चा मन भी कम होएला, निकाय में और पटवन करे में भी समय कम लागेला।
2: और पहले तो देखत रहे कि पटवन में बहुत बगरा खर्चा होत रहे नी, कुनो डोभा मन बनाए चाहे कुआ मन कोड़ेक में।
3: हाँ, और खेत के फोड़ेक में आदमी के एकदम हमेशा उस जगह खड़ा रहे पड़त रहे।
2: हाँ, समय भी बर्बाद होत रहे। और ऐसे तो देखो टपक विधि सिंचाई से तो कम पानी में फसल होवेला है नी?
3: एकदम। और आजकल ड्रिप सिस्टम जो लगाए ना उकर में आदमी मन खेत के डीपरा कर देवे ना, और ऊपरे से प्लास्टिक के ढक देवे ना, माइद मने सब कुछ दे के, तो इकर में पाइप भी बिछाल रहेला, तो एखन जैसे कि कुछ भी खेती इकर में आराम से कर सकेला। पटवन जे होएला उ कम पानी में इकर में हो सकेला, और एक बार स्टार्ट कर दो अब तो गोटा खेत आराम से पट जाए।
2: अच्छा, तो अब एखन इकर में मटर बिलैती बीन मन के लगाए सकेला है नी? और ओहे खेत में दूसर फसल हमरे लगाए सकेला अगला मौसम में है नी? तो इकर में फायदा भी है, कम पानी कम खर्चा, समय भी बचेला है नी,
3: और कोड़न खोबन कर खर्चा भी बचेला।
2: हाँ, तो भाई नवा विधि के अपनाए है और खेती करे है, और किसान भाई बहन मन अपन आमदनी के बढ़ावे है नी?
3: एकदम नगद बात की कहली। तो अब हमरे मन कार्यक्रम के आगे बढ़ाई ला और बताए देवी ला आज कर कार्यक्रम में काका जोगाड़ा है सिके। तो आज कर बात में हमरे मन अरहर की खेती में फसल सुरक्षा इके बतावे विशेषज्ञ डॉक्टर सविता एक्का, और इनकर से गोठिया है कृष्ण जीवन पौराणिक। तले रीज रंग करब कृषि गीत में नागपुरी, लोकगीत में बशीर अंसारी और संगीमन कर गावल गीत के। तले नई उम्र कर नई फसल में बेस्ट महिला डेयरी किसान बिमला देवी से भेंट, और इनकर से गोठिया है मनोज कुमार।
2: हाँ, तो विष्णु भाई हमरे मन कार्यक्रम के और करीला आज की बात में जानकारी करीला।
4: किसान साथियों नमस्कार, आज हम जानेंगे अरहर की खेती में फसल सुरक्षा के बारे में, और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सविता एक्का, वरीय वैज्ञानिक पौधा रोग विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची। डॉक्टर सविता, आपको हमारे स्टूडियो में स्वागत है, नमस्कार।
5: जोहार सारे किसान बंधुओं को।
4: डॉक्टर सविता, आप हमारे किसान भाइयों हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि अरहर की फसल में हमारे किसान भाई किन किन बातों का ध्यान रखें।
5: जैसे कि हम जानते हैं कि झारखंड की जो जलवायु है और यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, अर्थात हम जानते हैं कि हमारे झारखंड में ज़्यादा बंजर और ताड़ जमीन रहती है, और कम वर्षा वाले क्षेत्र में अरहर की खेती को हम लोग सबसे ज़्यादा बेहतरीन मानते हैं। और हम जानते हैं कि अरहर लगाने वाले किसान कभी कभी अरहर की उपज में बहुत भारी कमी इनको मिलती है, और इसका मुख्य कारण इसमें पाए जाने वाले भिन्न भिन्न तरह के रोग और इस पर लगने वाले कीट हैं। जहाँ तक रोग की हम बात करेंगे तो हम जानते हैं कि अरहर में हम जानेंगे कि इसमें मुख्य रूप से तीन रोगों का प्रकोप होता है। पहला जो बीमारी है उसे उकठा या मलानी रोग कहते हैं। दूसरी बीमारी जो होती है इसमें हम देखते हैं बांझ रोग का प्रकोप होता है, और तीसरी बीमारी जो है वो तना अंगमारी रोग है।
4: जी, अभी तो आपने रोगों के बारे में बताया, लेकिन अरहर में उकठा रोग होने का कारण क्या है, और किसान इस उकठा रोग को कैसे पहचाने और इसका प्रबंधन कैसे करें?
5: उकठा रोग का मुख्य कारण बारिश के कारण खेत में जल का जमा

0: होना और अचानक तेज धूप का होना होता है। ऐसी स्थिति में मिट्टी में पाए जाने वाले रोग के कवक, जिसे फ्यूजेरियम कहा जाता है, ये रोग जो है, ये कवक जो है, यही इस रोग के को उत्पन्न करने वाले होते हैं। और इस रोग में हम जानते हैं कि पौधा जो है वो पीला हो जाता है और पूरा का पूरा पौधा सूख जाता है। एक ही खेत में कई वर्षों तक अगर हम अरहर की खेती करते हैं तो इस रोग की उग्रता जो है वो बढ़ती है। तो जैसे उग्रता अगर बढ़ती है रोग की, तो सबसे पहले किसान भाई ये देखेंगे कि उस खेत पर वो 3 से 4 वर्षों तक अरहर की फसल नहीं लेंगे, अर्थात फसल चक्र अपनाएंगे 3 से 4 वर्षों का। इसके अलावा किसान भाई कर सकते हैं कि अरहर की खेती में ज्वार के साथ में मिश्रित खेती करने से इसके रोग की तीव्रता इसमें कम हो जाती है। कुछ रोग रोधी किस्में हैं, या तो किसान भाई इनका उपयोग करें, जैसे शरद हुई, मालवीय अरहर हुई, नरेंद्र अरहर हुई, इनका चयन करने से इस रोग का प्रकोप कम पाया जाता है। और एक उपाय कर सकते हैं कि जब भी वो बुआई करते हैं, बुआई के समय बीज को जो है कवकनाशी कार्बेंडाजिम और थीरम 50% के मिश्रण में 2 किलोग्राम दवा प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करेंगे। और अगर कवकनाशी नहीं लेना चाहते हैं तो एक जैवनाशी जो ट्राइकोडर्मा है उसका भी 10 ग्राम दवा जो है वो 1 kg बीज पर उपचारित करके लगाएंगे।
1: तो अभी आपने रोगों के बारे में बताया, तो एक रोग है बांझ रोग, तो अरहर का बांझ रोग क्या है?
0: ये अरहर का बांझ रोग जो है ये दूसरी मुख्य बीमारी है जो अरहर के पौधे में हम देखते हैं, और ये विषाणु जनित रोग है और इसका वाहक जो है ये माइट होता है, कीड़ा होता है। और इस रोग की अधिकता से फसल में 75% उत्पादन में कमी आ जाती है, क्योंकि इस रोग में रोगी पौधा जो है पीला होकर झाड़ी नुमा हो जाता है, पत्तियों का आकार जो है वो छोटा हो जाता है, फूल या तो आंशिक या पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण फसल में फल नहीं लगते हैं। और फसल पकने की अवस्था में रोगी पौधे जो हैं वो हरे ही दिखाई देते हैं, जबकि स्वस्थ पौधा जो है वो परिपक्व होने पर सूखने लगता है।
1: तो हमारे किसान भाई इसका प्रबंधन कैसे करें?
0: जैसे उकठा रोग में प्रबंधन किए थे, फसल चक्र अपनाए थे, वैसे ही इसमें भी कम से कम 4 से 5 वर्ष का फसल चक्र अपनाएंगे। रोगी पौधे खेत पे जैसे ही दिखते हैं, इस तरह के झाड़ी नुमा बौने पौधे दिखते हैं, तुरंत उनको उखाड़ करके नष्ट कर देंगे। कुछ रोग रोधी किस्में हैं, जैसे पूसा 9, शरद, राजीव लोचन, इन किस्मों का चयन करेंगे अपने बुआई में। और एक कीटनाशी है डाइकोफॉल 18.5 EC, इसकी 2.5 ml मात्रा 1 लीटर पानी में छिड़काव करने से रोग के वाहक जो कीड़े हैं, माइट जो है, वो नष्ट हो जाएंगे।
1: जी, तो एक रोग है तना अंगमारी रोग
0: जी।
1: तो तना अंगमारी रोग के लक्षण हमारे किसान भाई कैसे पहचाने कि हमारे पौधों पर ये रोग लग गए हैं
0: जी,
1: ये कैसे पहचाने?
0: तना अंगमारी रोग का प्रकोप जो है वो 7 दिन से लेकर 1 माह के पौधे में दिखाई देता है, और शीघ्र पकने वाली मतलब अर्ली ड्यूरेशन की जो किस्में होती हैं उन किस्मों में इस रोग का प्रकोप जो है वो अधिक पाया जाता है। प्रभावित पौधों के पत्तियों पर पनीले धब्बे बनते हैं, और इसी तरह के गोलाई में धब्बे जो है वो शाखाओं पर भी बनते हैं, और ऐसी शाखाएँ जिस पर धब्बे बनते वो सूख जाते हैं। जल जमाव रहने पर रोग की तीव्रता जो है पूरे खेतों पर फैल जाती है
1: जी। तो इस रोग का हमारे किसान भाई प्रबंधन कैसे करें?
0: इस रोग के लिए बीज का उपचार, जैसे कि मैंने उकठा रोग में बताया कार्बेंडाजिम और थीरम, लेकिन इस रोग में जो है किसान भाई कवकनाशी रिडोमिल का उपयोग करेंगे। रिडोमिल की 2 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करेंगे। खेत में जल निकासी का उचित व्यवस्था करेंगे। रोग की प्रारंभिक अवस्था में मैनकोजेब और मेटालिक्सिल कवकनाशी, जो कि रिडोमिल MZ के नाम से बाजार में उपलब्ध है, उसकी 1.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर के पौधे में 10 से 12 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करेंगे। इसके अलावा कुछ रोग रोधी किस्में हैं, जैसे पूसा 9, बहार, अमर, शरद, इन किस्मों का चुनाव करेंगे बुआई के लिए अपने खेतों में
1: जी। तो ये तो आपने रोग के बारे में बताया, अरहर की फसलों में कीटों का भी प्रकोप होता है
0: जी।
1: तो इसमें लगने वाले कौन कौन से कीट हैं, इसके बारे में बताएं कि और ये कीट के लक्षण के बारे में बताएं।
0: अरहर में ऐसे तो बहुत सारे कीट लगते हैं, लेकिन दो कीट जो हैं इसमें मुख्य रूप से हम अपने झारखंड प्रदेश में देखते हैं। पहला कीट फली छेदक कीड़ा है, जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, और इस कीड़े को नहीं नियंत्रण करने से 75% उपज में कमी आ जाती है। यह कीड़ा जो है कोमल पत्तियों और फूलों को खाती है और साथ साथ फलियों में छेद करके अंदर का दाना भी खा लेती है, जिससे फलियाँ जो हैं वह सड़ने लगती है। इस कीड़े को फंसाने के लिए फेरोमोन ट्रैप आप लगाएं अपने खेतों में। यदि नुकसान कम है तो नीम एक्सट्रैक्ट 50 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें। अगर कीट का प्रकोप अधिक दिखता है तो इंडोक्सा कार्ब 14.5 ईसी 200 मिलीलीटर मात्रा या तो स्पिनोसेड 45 एससी की 60 मिलीलीटर मात्रा 100 से 125 मिलीलीटर पानी में घोल करके छिड़काव करेंगे प्रति हेक्टर में। दूसरा मुख्य कीट जो है वो बीटल है। अरहर में इस कीड़े का प्रकोप मुख्य रूप से फूल आने की अवस्था में होता है, जिससे पैदावार में 50% से अधिक का नुकसान पाया जाता है। इसके वयस्क कीट अकेले या तो फिर झुंड में फूलों पर बैठते हैं और फूलों के जो पुंकेसर है अर्थात एंथर और ओवरी जो अंडाशय है उसको खा जाते हैं। इस कारण जो पौधे के पुष्प क्रम जो है बिना फूलों के बांझ हो जाते हैं और फलियां नहीं बन पाती हैं। और इसके नियंत्रण के लिए सुबह के समय जब कीट कम सक्रिय होते हैं तो दस्ताने पहन करके आप मैकेनिकली हाथ से उसको इकट्ठा करेंगे, मग में पानी लेंगे और उस पर इकट्ठा करेंगे और फिर खेत के बाहर या तो गड्ढा कोड़ करके उसके अंदर डाल देंगे या तो फिर उसमें कीटनाशी डाल करके इन कीड़ों को मार देंगे, और नहीं तो फिर क्विनलफॉस नामक कीटनाशी दवाई जो है उसकी 2.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके शाम के समय छिड़काव करेंगे।
1: जी, तो अंतिम में आप हमारे किसान भाइयों को अरहर की खेती के बारे में कुछ सलाह देंगे?
0: किसान भाई, हम जैसे कि जानते हैं अरहर जो है काफी लंबी समय वाली फसल है, जो लंबी अवधि की फसलें हैं ये अप्रैल का महीना तक चला जाता है, लेकिन ये फसल जो है ये बहुत उपयोगी फसल, इसीलिए भी हम कहते हैं अपने झारखंड के परिपेक्ष में कि इस फसल से जो वातावरण की जो नाइट्रोजन है इसको, इस फसल की जड़ जो है ये मिट्टी में संचित करती है और हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति इससे बढ़ती है। इसीलिए मैं जरूर कहूँगी किसान भाइयों को कि अपने बंजर जमीन पे जिसपे कि अरहर को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता, हम लोग जानते हैं कि ये बहुत ही हार्डी क्रॉप है, इसको पानी का भी कम आवश्यकता होता है, तो बंजर जमीन को वो ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, उस पर जरूर अरहर की खेती करेंगे ताकि वो जो बंजर जमीन है वो उपजाऊ हो सके, क्योंकि ये अरहर की जो जड़ होती है वो नाइट्रोजन को संचित करती है मिट्टी में। इसीलिए मैं तो जरूर सजेस्ट करूँगी अपने किसान भाइयों को कि जो भी खाली जमीन है, बंजर है, कम उपजाऊ जमीन है, वहाँ पर अरहर की खेती वो करें और लाभ कमाएं।
1: जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सविता एक्का जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाइयों को अरहर की खेती के बारे में, उसमें लगने वाले रोग के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। आशा करते हैं कि हमारे किसान भाई आपकी बातों को सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: तो एखन हमारे मन सुनत रही अरहर कर खेती में फसल सुरक्षा और इके बतात रहे विशेषज्ञ डॉक्टर सविता का, और इनकर से गोठिया रहे कृष्ण जीवन पौराणिक।
3: हाँ, तो भाई जानकारी तो बड़ा नगद रहे, और जानकारी कर संगे संगे चलो रिज रंग करते चला भाई ने।
2: तो कृषि गीत में नागपुरी लोक गीत बशीर अंसारी और संगीमनकर गावल गीत के चलो सुनीला।

0: तो हमरे सुनत रही नागपुरी लोकगीत बशीर अंसारी और संगी मनकर गावल। तो आगे नई उम्र की नई फसल में हमरे मन एगो महिला डेयरी किसान बिमला देवी से करल गोइट के सुनब। इनकर से गोठियात है मनोज कुमार।
1: किसान वाणी कार्यक्रम आप सभी का स्वागत है, नमस्कार। किसान भाइयों, बहुत सारे ऐसे किसान भाई है जो की खेती बाड़ी तो करते हैं, लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जो खेती बाड़ी करते करते बहुत दूर तक चले जाते हैं और बहुत सारे अवार्ड लेकर आते हैं। इसी तरह आज हमारे साथ एक ऐसे महिला किसान हैं जिसको कि बेस्ट डेयरी किसान का अवार्ड मिला हुआ है, जो कि पूर्वी क्षेत्र के लिए एकमात्र ऐसे महिला किसान हैं जिनको ये मिला हुआ है। तो आज हमारे कार्यक्रम में वो आए हुए हैं। बहन, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: आप कहाँ के रहने वाले हैं?
2: जी, इटकी ठाकुर गांव।
1: इटकी ठाकुर गांव के आप रहने वाले हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई कुछ हुई थी क्या?
2: जी, 9 तक पढ़े थे, फिर छोड़ दिए थे।
1: 9 तक पढ़ के फिर आगे छोड़ दिए, पढ़ नहीं पाए? क्या वजह थी नहीं पढ़ने का?
2: कोई वजह नहीं था, पर पढ़ने का मन वैसा उस समय छोड़ दिए और सिलाई उलाई सीखे, फिर शादी हो गया।
1: चलिए कोई बात नहीं, पढ़ाई कर नहीं पाए तो अभी आप क्या करते हैं?
2: अभी हम गाय पालन करते हैं।
1: गाय पालन करते हैं,
2: खेती भी करते थे।
1: खेती भी करते हैं। ये जो गाय पालन के बारे में आपने बताया, तो कितने दिनों से कर रही है?
2: जी, जब शादी हुआ है तब से ही एक गाय थी शुरू में। 2005 से ही गाय पालन कर रहे हैं। शुरू में तो हम लोग के पास एक गाय थी।
1: तो आपको प्रेरणा कैसे मिला गाय पालन करने के लिए?
2: खेत उत ज्यादा नहीं था और अच्छा खेती उत्ती भी नहीं होता था, और सीजन में हम लोग तारबूज वो बेचते थे बाजार में, तो ज्यादा फायदा नहीं होने लगा, तो फिर गाय पालने लगे। तो एक गाय से तो बाजार में बेचते थे, तो उस समय हम लोग को फायदा नहीं होता था, पैसा भी सही से नहीं मिलता है। फिर 2008 में हम लोग मेधा डेयरी से जब जुड़े, तब हम लोग का पैसा भी अच्छा पेमेंट होने लगा और बोनस भी मिलता था 1 रुपया पर लीटर में। और उसके बाद हम लोग डेयरी से जुड़े, तो उसी के द्वारा हम लोग फिर आगे बढ़े और ज्यादा गाय रखने लगे।
1: तो बिमला बहन, अभी आपके पास कितने गाय हैं?
2: अभी मेरे पास दूध में है 30 गाय और जो बाच

0: है छोटी, वो है 10 और बाछा है 10।
1: कितना लीटर करीबन आप दूध उत्पादन कर लेते हैं?
0: पर डे हम लोग का सुबह शाम में 400 से प्लस ही होता है, 420-30 ऐसे।
1: तो बेचने के लिए कहीं जाना पड़ता है कि
0: जी
1: आपके
0: नहीं, हम
1: पास
0: लोग
1: आते हैं?
0: मेधा डेयरी से जुड़े हुए हैं। हम लोग के पास ठंडा करने के लिए अथी भी डाल रखा गया है, हम लोग उसी में देते हैं। और दूसरा किसान का भी दूध हम लोग लेते हैं।
1: और जैसा कि सुनने मिला है कि कुछ दिन पहले आपको कुछ अवार्ड मिला है, तो क्या अवार्ड, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
0: सबसे ज़्यादा मेरा दूध है इसीलिए मिला था, डेयरी की तरफ, डेयरी के माध्यम से ही।
1: कहाँ आपको मिला ये अवार्ड?
0: दिल्ली में मिला था, यशो भूमि में प्रोग्राम था वहीं पर।
1: तो आपको झारखंड से एकमात्र किसान थे कि और भी कोई किसान लोग
0: और
1: गए थे?
0: किसान भी थे, निखिल, हमको केवल मिला था। वो लोग केवल घूमने के लिए ऐसे ही वो लोग को ले जाया गया था दिखाने के लिए।
1: जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि पूर्वी क्षेत्र का एकमात्र किसान झारखंड से आपको मिला है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप?
0: बहुत अच्छा लग रहा है, कभी नहीं सोचे थे कि इतना आगे निकल जाएंगे। बहुत अच्छा लगा कि इतना सम्मानित मिला, और लगता है कि और आगे करे और ज़्यादा सम्मानित मिले।
1: अच्छी बात है विमला बहन की आपको इस तरह का अवार्ड मिला। तो आपको जब गांव में आप जब लौट के आए, तो आपके गांव वाले तो काफी खुश हुए होंगे।
0: जी बहुत खुश हुए,
1: तो कैसा महसूस हुआ गांव में
0: बहुत
1: आके? तो
0: अच्छा लगा
1: आपको
0: कि
1: देख के और लोग प्रेरित होते हैं कि नहीं होते
0: हो
1: हैं?
0: रहे
1: हो रहे हैं।
0: हैं। हम भी कहेंगे कि और अगला भी जो है कृषि के भी, पशुपालन में भी अपना आगे बढ़े, और हम मेरे ही जैसा उनको भी सम्मानित मिले।
1: तो जब आपको दिल्ली में जब पुरस्कार दिया गया, तो पुरस्कार में क्या क्या मिला आपको?
0: पुरस्कार में 51,000 का चेक मिला, एगो मोमेंटो मिला, शॉल मिला, और एगो
1: प्रशस्ति पत्र मिला आपको।
0: जी।
1: अच्छी बात है विमला बहन कि आप दूध उत्पादन करते करते दिल्ली तक गए और वहाँ से आप पुरस्कार लेके आए। तो इस तरह का जब आप लोगों को जब पुरस्कार मिलता है, किसी किसान को मिलता है, तो हमको लगता है कि काफ़ी लोग प्रेरित होते हैं और
0: जी
1: आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं और सोचते हैं कि आगे हम बढ़े हैं कि नहीं।
0: जी
1: तो जैसे दूध उत्पादन करते हैं, तो आपने बताया कि 400 लीटर पर डे आपका दूध उत्पादन होता है, तो दूध उत्पादन करने में क्या-क्या खिलाते हैं गाय को?
0: हम लोग देते हैं चोकर, हरा चारा, जैसे नेपियर, नेपियर और जई का जो घास होता है वो वाला भी देते हैं। और उस समय नहीं रहता है तो साइलेज, हम लोग जो मक्का का डंठल रहता है उसको काट के साइलेज बना के रखते हैं, उसको भी देते हैं। कुट्टी भी देते हैं, चोकर, खल्ली, कैटल फीड देते हैं, मिनरल मिक्सचर देते हैं।
1: और ये हरा चारा भी कुछ देते हैं?
0: हरा चारा में वही नेपियर और जो जई घास होता है वही हरा चारा में
1: उसे देते हैं।
0: जी।
1: तो दिन भर में कितना बार आपको खिलाते हैं?
0: 2 बार
1: 2 बार खिलाते हैं,
0: जी
1: सुबह शाम खिलाते
0: जी
1: हैं।
0: पानी भी देते हैं।
1: अच्छा, मान लीजिए कि अगर आपका गाय बीमार हो जाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं? कहीं जाना पड़ता है कि आप खुद उसके बारे में जानकारी है आपको?
0: थोड़ा बहुत जानकारी अपने से भी रखते हैं, और ज़्यादा हो जाने से फिर डॉक्टर को कॉल करते हैं। मेधा में भी हम लोग को डॉक्टर हैं, उनसे भी कॉल कर सकते हैं, और प्राइवेट से भी हम लोग बुला सकते हैं।
1: तो अच्छी बात है बहन कि कुछ कुछ बीमारियां ऐसे हैं जिसके बारे में आप जानते हैं। और जैसे कि गांव में खेती बाड़ी करते हैं और साथ में गाय भी पालन करते हैं, तो दोनों को अगर साथ में करते हैं तो कितना फायदा मिलता है हम लोग को? हम गाय पालन कर रहे हैं तो गोबर निकलता है,
0: जी
1: उससे खाद बनता है, खेतों में जाते हैं।
0: खेत में जैसे खेती करते हैं, जो मक्का, स्वीट कॉर्न होता है, उसका डंठल हम लोग खिलाते हैं गाय को हरा चारा के रूप में। और गाय से जो गोबर होता है उसमें खेती में भी डालते हैं, हरा चारा में भी डालते हैं, और अधिक होने से बेचते भी हैं हम लोग।
1: तो किसान भाइयों, आज आपने सुना कि बिमला देवी जो कि गाय पालन करते हैं और इतने अच्छे ढंग से गाय पालन करते हैं, इनका जो उत्पादन होता है वो काफ़ी मात्रा में होता है और इतना ज़्यादा मात्रा में होता है कि इनको दिल्ली तक बुलाया गया और इनको सम्मानित किया गया। और किसान भाई, आप लोग भी इस तरह अच्छे अच्छे उत्पादन कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको भी कहीं ना कहीं जा कुछ न कुछ अवार्ड मिले। तो किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। दूसरे दिन फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक जोहार, नमस्कार। और बिमला बहन, आपको भी जोहार, नमस्कार।
2: तो एखन हमारे मन सुनत रही नई उम्र कर नई फसिल में महिला डेयरी किसान बिमला देवी से करल भेंट के और इनकर से गोठिया रहे मनोज कुमार।
3: तो विष्णु भाई, इकरे संगे किसान वाणी कार्यक्रम कर बेरा सिरायला बताय देवीला, कार्यक्रम कर प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार,
2: और प्रस्तुति रहे प्रभु शरण कर।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: इस समय आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी।
7: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी हमारे रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 1 बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है ग्रामीण सभा।

ग्रामीण सभा सुनने वाले तमाम किसान भाई बहनों को प्रदीप का नमस्कार। आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मशरूम की खेती पर। हमारे किसान भाई, खासकर जो मशरूम है, जिसे हमारे प्रदेश में कई नामों से जाना जाता है, प्रायः लोग खुखड़ी के नाम से भी मशरूम को जानते हैं। यह जो है विटामिन का अच्छा स्रोत है। इसमें विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए एवं विटामिन डी और खनिज लवणों से यह भरपूर होता है। यह कई बीमारियों जैसे बहुमूत्र खून की कमी, बेरी बेरी, खांसी, मिर्गी, दिल की बीमारी में लाभदायक होता है। तो किसान भाई, मशरूम की खेती करके बेरोजगार नौजवानों के लिए यह एक अच्छा आय का साधन हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपको गुलाबी मशरूम की। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने झारखंड के जलवायु के अनुकूल परिवेश में गुलाबी मशरूम की खेती में सफलता पाई। यह बटन मशरूम से भिन्न तथा इसकी उत्पादन विधि ऑयस्टर मशरूम के समान होती है। कच्चा होने पर मशरूम का रंग काफ़ी गुलाबी होता है, पकाए जाने पर यह नारंगी ब्राउन रंग में बदल जाता है। अच्छे होटलों और रेस्तरां में इसकी काफ़ी मांग है। इसके उत्पाद में पैकिंग पर विशेष ध्यान देना होता है। छत्ता टूट जाने से बाजार मूल्य काफ़ी कम मिलता है। इसका आकार 2 से 5 सेंटीमीटर तक होता है। बसंत मौसम की समाप्ति के बाद इसका उत्पादन शुरू किया जा सकता है। इसकी खेती में सबसे पहले धान के पुआल की कुट्टी या गेहूं का भूसा को 12 से लेकर 16 घंटे तक पानी में भिगो लेते हैं या आधे घंटे तक उबाल लेते हैं। भिगोने वाले पानी को 100 से 125 मिलीलीटर फॉर्मलिन और 10 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति 100 लीटर की दर से मिला लेते हैं। पानी को निथार कर कुट्टी को सुखा लेते हैं और उसके बाद पॉलीथीन बैग बना करके इसे 5 से 6 तह तक बिजाई करते हैं। बैग के खुले मुख को रबर बैंड से बांध देते हैं और 10 से 12 छिद्र कर देते हैं। उसके बाद कुट्टी जब सफ़ेद होने लगती है तो पॉलीथीन बैग को काट कर हटा लेते हैं। ज़रूरत के मुताबिक 1 से 2 पानी का छिड़काव करते हैं। 2 से 3 दिनों में मशरूम के छत्ते निकलने लगते हैं। इसकी तुड़ाई अंगूठे और उंगली की सहायता से घुमाकर तोड़ लेते हैं। 1 किलोग्राम सूखे पुआल से करीब 800 से 900 ग्राम ताज़ा गुलाबी मशरूम प्राप्त होता है। इसकी उत्पादन लागत करीब 80 से 90 रुपये प्रति बैग पड़ती है और मार्केट में इसका अच्छा भाव

तो ये तो बात हुई जो हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने गुलाबी मशरूम का जो है उत्पादन करने में सफलता प्राप्त की है। वैसे तो आप जानते ही हैं कि जो मशरूम है, जो ज़्यादा हमारे जो जो सफ़ेद बटन मशरूम जिसको हम लोग कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा बाजार में बिकता है, धान पुआल मशरूम भी है। धान पुआल मशरूम की खेती ग्रीष्मकालीन होती है, इसे मार्च से सितंबर महीने तक 26 से 42 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किया जाता है। अपेक्षाकृत कम लागत एवं सरल तकनीक से इसकी खेती की जा सकती है। इस प्रजाति की खेती में प्रकाश की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए छायादार स्थान की खिड़कियां पूरब और पश्चिम दिशाओं में होना बेहतर होता है। घने पेड़ के नीचे बरामदे में सतह से 1 फीट ऊंची चौकोर बांस की सैया में 1.25 मीटर × 0.65 मीटर का फ्रेम जैसा बनाकर अथवा सीमेंट की पक्की फर्श अथवा ईंट पर ईंटें बिछाकर भी इसकी खेती की जा सकती है। अगर हम फसल चक्र अवधि की बात करें तो 10 से 15 दिनों की फसल चक्र अवधि होती है। इसके उत्पादन के लिए सर्वप्रथम नए एवं स्वस्थ पुआल का 2 फीट लंबे 1 किलोग्राम वजन का गट्ठर बांधें और इस तरह 35 गट्ठर बना लें। इसे पानी में या बड़े ड्रम या हौज में 12 घंटे तक भिगो दें। इसके बाद इसे उबालकर या फफूंदी नाशी से उपचारित कर लें। पुआल के गट्ठर में 80 से 85% तक नमी बनाए रखना चाहिए। फिर स्पॉन, जो बीज की तैयारी के लिए एक सैया के लिए किसी साफ सुथरे बर्तन में बीज को निकाल कर छोटे टुकड़े में तोड़ लेते हैं। इसे 4 बराबर भागों में विभाजित कर लेते हैं। बिजाई के लिए उपचारित पुआल के गट्ठरों को फ्रेम पर इस प्रकार सजाएं कि बंधे सिरे दोनों किनारों पर एवं खुले सिरे वाले सैया के बीच में सटे हुए हों। यह सैया की पहली तह है। इस पर स्पॉन, जो बीज है, उसके छोटे छोटे टुकड़ों को 10 सेंटीमीटर चारों किनारे छोड़ते हुए अंदर की तरफ डाल दें। स्पॉन छींटने के बाद उस पर बेसन का हल्का भुरकाव कर दें। इसके बाद गट्ठरों की दूसरी तह लगाएं। ध्यान रहे कि पहली तह के दूसरी दिशा, यानी पहली तह उत्तर दक्षिण है, तो दूसरी पूर्व पश्चिम की ओर लगाएं। इस प्रक्रिया को तीसरी तह तक दोहराएं। चौथी तह तक स्पॉन को पूर्ण रूप से छांट दें और शेष गट्ठर के पुआल को खोलकर उसके ऊपर से ढक देते हैं। फ्रेम पर पूरे तैयार पुआल की सैया को पॉलिथीन की चादर से चारों तरफ से कसकर बांध देते हैं। इसके बाद सैया में अंदर की नमी और तापमान बनी रहती है। 3 से 4 दिनों के बाद वायु संचार हेतु आधा से 1 घंटा तक पॉलिथीन चादर को ढीला छोड़ते हैं। 4 से 6 दिनों के बाद फिर इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं। 10वें दिन पॉलिथीन चादर को सैया के चारों ओर से खोल देते हैं। इसमें छोटे छोटे मशरूम हेड दिखाई देने लगेंगे, जो दूसरे दिन अंडेनुमा गोल दिखाई देंगे और तीसरे दिन अंडेनुमा मशरूम हेड छाते के आकार में खुल जाएंगे। दूसरे दिन का मशरूम हेड खाने में अति स्वादिष्ट होता है। तो किसान भाई, मशरूम की कई वेराइटियाँ हैं और आप इसे, हमने बात की थी आपको सफ़ेद दुधिया मशरूम की, तो इसके लिए भी किसान भाई दुधिया मशरूम की खेती मार्च से सितंबर महीने तक आप कर सकते हैं। इसके लिए भी तापमान 25 से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान पर आसानी से इसकी खेती आप कर सकते हैं। और जो एक और है सफ़ेद बटन मशरूम, इसके लिए भी जो है किसान भाई तकनीकी कौशल की आवश्यकता है। सफ़ेद बटन मशरूम की मौसमी खेती करने के लिए अक्टूबर से मार्च तक का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। जो अभी का जो समय चल रहा है वह सफ़ेद बटन मशरूम की खेती के लिए उपयुक्त है। इस दौरान मशरूम की आप 2 फसलें ले सकते हैं। बटन मशरूम की खेती के लिए अनुकूल तापमान 15 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड एवं सापेक्षिक आर्द्रता 80 से 90% और शुद्ध हवा का संचालन होना चाहिए। सफ़ेद बटन, जिसको हम लोग कुंभी भी कहते हैं,
इसकी खेती की प्रक्रिया जटिल है और फसल उत्पादन के लिए विशेष तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसकी वृद्धि के लिए दो भिन्न भिन्न तापक्रम की आवश्यकता होती है। बटन मशरूम की सफल खेती के प्रशिक्षण के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के पौध रोग विभाग द्वारा संचालित मशरूम उत्पादन इकाई से भी आप संपर्क कर सकते हैं। वैसे आप क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चियांकी में भी आप संपर्क कर सकते हैं, और जो भी अन्य जानकारियां जो आप समझते हैं आप वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं, जो बिल्कुल निःशुल्क है। तो ये तो बातें हुई मशरूम की खेती की। आइए अब सुनते हैं भेंट वार्ता, धान फसल में कीट एवं रोग प्रबंधन। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर राजीव कुमार, कृषि विशेषज्ञ, क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चियांकी पलामू, और इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे साथी भाई संतोष कुमार।

0: स्वागत है आपका कार्यक्रम में। किसान भाइयों, कार्यक्रम के आरंभ में आज हम लोग बातें करेंगे धान में लगने वाले कीट और उसके प्रबंधन की, क्योंकि हम एक मुश्त पूंजी लगा चुके होते हैं धान के खेत में और बहुत बार हम वैज्ञानिक तकनीकियां नहीं अपना पाते और कीट वगैरह का प्रबंधन नहीं करने के कारण भारी क्षति हो जाती है, लगाई गई पूंजी बर्बाद हो जाती है। इसलिए आवश्यक है कि वैज्ञानिक तकनीकियां अपनाते हुए आप कीट और रोग का प्रबंधन करें और किस प्रकार करें, इससे संबंधित विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए आज आपके साथ हैं पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय कृषि वैज्ञानिक सह कार्यालय प्रमुख डॉक्टर राजीव कुमार जी। स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सर्वप्रथम तो हमारे ग्रामीण भाइयों को बताया जाए कि अभी जो धान वगैरह जो हमारे किसान भाई लोग जो रोपा वगैरह कर रहे हैं, क्या क्या सावधानियां बरते और रोग कौन कौन से उसमें लगते हैं, बीमारियां कौन कौन सी लगती है, उसका बचाव कैसे करें।
1: बिचरा तैयार किए हैं, वहां से वो जहां रोपाई कीजिएगा खेत में वहां तक वो चला जाएगा।
0: अच्छा।
1: और धीरे धीरे जो है ना वो पत्ता को जो है वो नुकसान करता है, उससे जो है धान का बढ़वार जो है वो प्रभावित होता है। तो इसका रंग है जो भूरे रंग का होता है और जब आकार इसका जब बड़ा होता है तो लगभग गोलाकार जो है ना कई धब्बे पत्ते के ऊपर में दिखाई देंगे और पत्ता जो अंत में झुलस जाता है।
0: अच्छा।
1: तो झुलसने के बाद पौधे का बढ़वार प्रभावित होता है और अंत में उत्पादन भी प्रभावित होता है। तो जो किसान भाई अगर बीज उपचार करके लगाए होंगे, जो कार्बेंडाजिम से हम लोग बीज उपचार करते हैं, अगर बीज उपचार करके लगाए होंगे उनके धान के जो पौधे हैं ना उस पर इस तरह का धब्बा दिखाई नहीं देगा।
0: अच्छा।
1: लेकिन जो किसान भाई नहीं कर पाए हैं किसी कारण से, तो वो जो है कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से बीज स्थली में ही उसका छिड़काव कर दें और जो रोपाई कर दिए हैं तो उस रोपे गए धान पे जो है इसका छिड़काव कर देने से जो यह रोग जो है आगे जो नहीं बढ़ेगा। दूसरा जो धान का प्रमुख रोग है वो झुलसा रोग है।
0: अच्छा।
1: जो पौधों पे जो है बाली निकलने का अवस्था में अक्सर दिखाई देता है और पत्ते पे ही नहीं, धान का बाली कि नीचे का जो डंठल वाला भाग है वहां पर भी काले धब्बे के रूप में दिखाई देता है और पत्ते के ऊपर में नाव के आकार का और यानी तो आंख के आकार का 1 सेंटीमीटर के आसपास का लंबाई का है ना धब्बा दिखाई देता है और जब धब्बा बड़ा हो जाता है तो किनारे का भाग जो होता है भूरे रंग का दिखाई देता है और बीच का जो है वो राख के रंग का होता है। तो अगर जो बीज उपचार कर लिए हैं तो उनका जो है इससे बचाव हो जाता है, अगर नहीं किए हैं तो कार्बेंडाजिम का छिड़काव करके इस रोग का प्रबंधन निदान पा सकते हैं। तीसरा जो प्रमुख रोग है जिसको आभासी कंठ हम लोग इंग्लिश में फॉल्स स्मट कहते हैं, जो धान है ना दूध के अवस्था में जब रहता है खास करके
0: जी,
1: तो वैसे अवस्था में जो छोटे छोटे शुरू में अंडाकार जो है ना धान के दाने के ऊपर में
0: जी जी
1: वो दिखाई देता है, जिसका जो शुरुआत में जो रंग होता है वो पीले रंग से संतरा के रंग का पीला दिखाई।
0: अच्छा,
1: देता है।
0: अच्छा।
1: और उसका धीरे धीरे आकार बढ़ जाता है तो गहरा

0: हरा या जैतून हरा जिसको कह सकते हैं,
1: वैसा हो जाएगा।
0: हाँ उस आकार में वो दिखाई देता है, और धान के आकार से है ना 2 गुना से भी अधिक जो है उसका आकार बन जाता है, और हवा के बहने पे ये छोटे छोटे मतलब पाउडर के रूप में दूसरे धान के ऊपर में चला जाता है, और वहाँ पे भी संक्रमित कर देता है बीज को,
1: अच्छा
0: और फिर उस बीज को अगर अगले साल लगाएंगे तो पुनः ये बीमारी उसमें
1: आ
0: दिखाई
1: जाएगी।
0: देगा। तो धान जो दूध का अवस्था है वहाँ पे दाना बनने के जगह पे यह बीमारी दिखाई देगा।
1: अच्छा
0: तो खास करके जो हाइब्रिड धान है उसका ये बहुत बड़े समस्या है।
1: अच्छा
0: तो ऐसे में अगर उसका बचाव जो है बाली निकलने के पहले भी ये बीज उपचार करके लगाइए, बाली निकलने के पहले फफूंदनाशक जो है या तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है 10 ग्राम 25 लीटर पानी में मिला के 1 एकड़ में छिड़क सकते हैं, यानी दूसरा जो है टेबुकोनाजोल के साथ है ना ट्राइफ्लोक्साइस्ट्रोबिन आता है,
1: अच्छा
0: ये बहुत अच्छी दवा है और बहुत कारगर
1: कारगर।
0: है, जो कि 4 ग्राम 10 लीटर पानी में अगर मिला करके हम लोग छिड़कते हैं
1: तो काफी
0: तो
1: कारगर
0: इस बीमारी से बहुत हद तक हम
1: निजात पा
0: निदान
1: सकते।
0: निजात पा जाते हैं। इसके अलावा वो सड़ने वाला एक बीमारी लगता है,
1: अच्छा
0: जब कल्ला निकलने का जो अवस्था होता है उस समय जो है ना इस बीमारी का प्रकोप हो जाता है, और जैसे जैसे पौधा का बढ़वार होता है तो पत्ते के ऊपर में भी है ना जिसको कि वेवी रंग का कहते हैं ऊपर नीचे तरंग टाइप का धब्बा दिखाई देता है,
1: अच्छा
0: उसका जो नीचे जो पानी से लगा हुआ भाग होता है
1: जी।
0: वो सड़ जाता है। जब धान काटने का अवस्था आता है तो जब हम लोग हाथ से पकड़ते हैं
1: जी
0: तो बिना हसुआ लगाए हुए है ना वो मुट्ठी में आ जाता है, तो उससे जो है भारी नुकसान होता है। तो उस तरह का अगर पहले आपके खेत में दिखाई दिए हैं तो उसका सबसे अच्छा उपाय है कि बीज उपचार करके लगाएं, और ये जो टेबुकोनाजो और ट्राइफ्लोक्साइस्ट्रोबिन हम जो दवाई बता रहे हैं फफूंदनाशक है इसका प्रयोग अगर हम लोग करते हैं
1: तो लाभ हो सकता है।
0: हाँ, तो जो किनारे किनारे कल्ला निकलता है उसी समय से इसको स्प्रे करना होगा, 2 से 3 स्प्रे काफ़ी है, इससे जो है इसका प्रबंधन जो है हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो ये जो 4 धान का प्रमुख रोग जो किसान भाई अपने खेत में भी देखते हैं उसका प्रबंधन करना अति आवश्यक है, नहीं तो ये सीधे उत्पादन को प्रभावित करता है,
1: करता है जी।
0: उत्पादन जो है जितना
1: गिरावट ला
0: होना
1: देगा।
0: चाहिए उतना नहीं हो पाता
1: जी
0: है।
1: अब बात कीट की आती है।
0: और दूसरा जो है समस्या जो है कीट का है, तो कीट जो धान का फसल में शुरुआत से ही जब हम लोग धान लगाते हैं
1: जी
0: बिचरा तैयार करते हैं उस समय से लेकर काटने का अवस्था तक में ये जो है हमको परेशान करता है, जैसे साढ़ा कीट है किसान भाई साढ़ा कीट के नाम से ही उसको जानते भी हैं, तो धान का जो बढ़वार वाला बिंदु है उसमें ये प्रवेश कर जाता है और उसके भाग को नुकसान करता है, और उसका जो पत्ता जो गोल बीच वाला निकलता है
1: जी
0: तो प्याज के तरह
1: अच्छा
0: गोल निकलता है जो बीच में खाली रहता है,
1: अच्छा
0: ये इसका सबसे आसान
1: पहचान है।
0: तरीका है पहचानने का, और यह जब लगता है तो पूरा खेत का खेत जो है ना नुकसान कर
1: बर्बाद।
0: देता है बर्बाद कर देता है। तो किस्म का जैसे हमारे 36 का हम लोग चुनाव करते हैं, ललाट है राजेंद्र धान है, इस प्रभेद में इस कीट का प्रकोप जो है
1: कम दिखाई
0: कम
1: दे
0: देखा जाता है।
1: जी।
0: दूसरा जो किसान भाई बीज स्थली में उनका बिचरा है वो जो है फिप्रोनिल 0.3 g जो है 250 ग्राम 100 स्क्वायर मीटर में छिड़क देते हैं, उसके बाद उसको उखाड़ कर अगर खेत में रोपा भी कर देंगे तो इस कीट का जो है
1: प्रबंधन हो
0: प्रकोप
1: जाएगा
0: हो नहीं होगा।
1: जी।
0: लेकिन जो किसान भाई खेत में रोपा कर चुके हैं उनको जो है फिप्रोनिल जो दानेदार कीटनाशक है 10 किलोग्राम 1 एकड़ में उसको
1: छिड़कना ही
0: छिड़कना
1: है
0: चाहिए,
1: जी
0: तो इस कीट का जो है प्रबंधन हो जाएगा।
1: जी
0: अब किसान भाई अपना धान का स्थिति देख लें कि वो बीज स्थली में है या फिर रोपा कर चुके हैं,
1: जी
0: तो उसका जो है प्रबंधन कर सकते हैं। उसी तरह से है तना छेदक है,
1: अच्छा
0: तना छेदक में जो है जो बीच का भाग है ना वो सूख जाता है, उसको अगर हम धान ऊपर से खींचेंगे तो बाली आराम से खिंचा जाता है, और धान का जो बाद माँ की पत्ता रहता है वो हरा रहता है,
1: अच्छा
0: तो ये तनाछेदक का पहचान है। लेकिन अगर सारा कीट के प्रबंधन के लिए जो है, अगर बीज असली में अगर फिप्रोनिल का छिड़काव किए हैं या रोपाई के बाद फिप्रोनिल खेत में छिड़काव किए हैं, तो इससे जो है तनाछेदक का भी प्रबंधन हो जाता है उसी से।
1: अच्छा अच्छा
0: उसके लिए फिर अलग से देने का जरूरत नहीं
1: जरूरत
0: पड़ता
1: नहीं है
0: है।
1: जी।
0: उसके बाद जो है तीसरा जो है बकिया कीट, किसान भाई जानते हैं जिसको कि बोलचाल में बाकी लगिया बाकी लगिया
1: अच्छा
0: किसान कहते हैं, जिसमें कि अक्सर पत्ता जो है ना
1: सफेद हो जाएगा
0: सफेद हो जाता है,
1: जी जी
0: लगेगा कि पूरा कैंची से हम लोग पत्ता को ऊपर से काट दिए हैं।
1: अच्छा
0: तो ऊपर पहले जो साढ़ा कीट और तना छेदक के लिए हम लोग बताए हैं, अगर इसको हम लोग व्यवहार करते हैं तो उससे इस कीट का प्रकोप कम हो जाता है। दूसरा है कि जो देसी तरीका है ये जूट का रस्सी को किरासन तेल में भिंगा करके अगर इसके ऊपर से भी पार करते हैं
1: अच्छा
0: तो जो उसके कटा हुआ पत्ता जो झूल ऊपरी भाग से
1: जो
0: चिपका
1: सफेद हो
0: हुआ
1: उसे
0: सफेद हुआ है वो नीचे पानी में गिर जाएगा, और चूंकि किरासन तेल है ना वो जब पानी में गिरेगा तो उसका पेस्ट तनाव टूट जाता है, तो उस
1: अच्छा
0: पे जो भी कीड़ा रहेगा वो नीचे डूब जाएगा मर जाएगा।
1: अच्छा
0: तो ये
1: ये आपका एक नुस्खा देसी
0: देसी
1: नुस्खा
0: नुस्खा है जो
1: अच्छा
0: किसान भाई इसको बहुत आराम से अपना सकते हैं।
1: मतलब जूट को आप डुबा दीजिए
0: किरासन
1: किरासन
0: तेल में
1: तेल
0: डुबा
1: ठीक
0: दिए, कीड़ा पत्ता वाला गिरता है तो डूब जाता है पानी में
1: अच्छा अच्छा
0: और फिर वो मर जाता है। तो ये
1: जी
0: देसी तरीका है, या नहीं तो जैसे ही इसका प्रकोप होता है तो इमिडाक्लोपीड है ना, जैसे शुरुआत हुआ उसका छिड़काव किसान भाई कर सकते हैं 1 ml 3 लीटर पानी में। और दूसरा जो देसी और उपाय है कि पंछी को बैठने के लिए खेत में देखते होंगे किसान भाई, झाड़ जो है ना जिस खेत में ज़्यादा नाइट्रोजन का व्यवहार किसान
1: अच्छा
0: भाई करते हैं
1: वहीं पे
0: उसमें
1: से
0: ज़्यादा होता है।
1: अच्छा
0: और इसका जो नीचे जो भाग होता है एक नीचे वाले भाग में भी ले जाइए ताकि वहाँ पे जो भी कीटनाशक है कीट
1: हाँ
0: है ना
1: उस पर
0: उसका
1: स्प्रे हो
0: प्रबंध
1: जाए
0: है। तो कीटनाशक के रूप में फिप्रोनिल जो दानेदार शुरू में व्यवहार कर सकते हैं, अगर छिड़कना है तो 5 SC आता है 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। ये लगने के पहले का है, बचाव के रूप में हम लोग इसका कर सकते हैं। वैसे ही इमिडाक्लोपीड है 1 ml 3 लीटर पानी में व्यवहार कर सकते हैं, और
1: अच्छा
0: ये बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाला कीट है क्योंकि देखते ही देखते पूरा खेत जो है ना वो लगेगा कि
1: आक्रमण कर लेता है
0: पूरा खेत है जल गया है झुलस गया है।
1: हाँ
0: और ऐसे स्थिति में कुछ भी जो है ना जितना उम्मीद कर रहे हैं उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है, उत्पादन प्रभावित होता है।
1: जी
0: कभी कभी जो है रस रस चूसक कीट भी है
1: अच्छा
0: जो पत्ते से ये भी भूरा मधुआ भी रस चूसक ही है, और उसके अलावा भी रस चूसक कीट है जो पत्ते से हरे भाग से रस चूस लेता है
1: अच्छा
0: जिससे जो उसका भोजन है चूंकि क्लोरोफिल रहता है छिड़कने से ये कीट का बचाव किया जा
1: आप कर
0: सकता
1: सकते हैं
0: है।
1: जी
0: तो अगर अच्छा उत्पादन लेना है तो फसल में लगने वाले कीट का और बीमारी का प्रबंधन करना अति आवश्यक हो जाता है।
1: जी हाँ किसान भाइयों ये बातें हो रही थी धान फसल में प्रबंधन जो मुख्य फसल है और हमारे किसान भाई अभी इसी की खेती में मशगूल हैं और जानकारियाँ आपके साथ साझा कर रहे थे विस्तृत जानकारियाँ जो आपने प्राप्त की आपसे साझा कर रहे थे पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय कृषि वैज्ञानिक सह कार्यालय प्रधान डॉक्टर राजीव कुमार जी। सर आप कार्यक्रम से जुड़े और धान की खेती में किस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंधन कीट वगैरह के बारे में हमारे किसान भाई करें इससे संबंधित जानकारियां साझा की इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर नमस्कार।
0: नमस्कार और आपको भी धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता। अब एक नज़र आज के मौसम पर। आज स्थानीय शहर डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुबह में आर्द्रता रही 85% जबकि शाम की आर्द्रता 68% दर्ज की गई। वर्षापात मौसम संबंधी इसी सूचना

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण सभा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: वेक्टर जनित रोग मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
2: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
1: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: क्या बात है सुनीता, बहुत परेशान लग रही है।
4: बहन, मेरी बिटिया का बुखार उतर ही नहीं रहा और आज गांव का चिकित्सा केंद्र भी बंद है।
3: अरे बहन, परेशान मत हो, 104 नंबर डायल कर, जहां तुझे मिलेगी प्रशिक्षित सलाहकारों से चिकित्सा सलाह।
4: बहन, पर इतनी रात में कौन बात करेगा इस नंबर पर?
3: अरे झारखंड सरकार की ये 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन तो 24 घंटे खुली है। 104

0: की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं ताकि जो हमको ना मिला वो इनको मिले।
3: बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान, बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल की IUCD
4: कंडोम,
3: गर्भ निरोधक गोलियां।
5: खुशी का मंजर रखना यार, दूसरा बच्चा 3 साल बाद।
6: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
7: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। JPSC और JSSC परीक्षा रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार। समय पर राज्य सरकार को 18 सितंबर तक जवाब का अंतिम निर्देश। राज्य में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावा आपत्ति की तारीख दूसरी बार बढ़ी, अब 30 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देशवासियों से की अपील, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को घरों में जलाएं आशीर्वाद का दिया। सिमडेगा में आयोजित लाह प्रसंस्करण कार्यशाला में शामिल हुई कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, किसानों के बीच परिसंपत्तियों का किया वितरण। और पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए झारखंड की 131 सदस्यीय टीम घोषित, उम्दा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मिलेगा नेशनल का टिकट। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड उच्च न्यायालय ने JPSC और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने के सरकारी आदेश पर रोक बरकरार रखी है। इसके साथ ही अदालत ने समय दिए जाने के बावजूद सरकार द्वारा अब तक हलफनामा दाखिल न करने पर सख्त नाराजगी जताई और उसे 18 सितंबर सुबह 10:30 बजे तक हर हाल में जवाब दाखिल करने का अंतिम निर्देश दिया है। अधिवक्ता कुमार हर्ष ने इस सुनवाई की जानकारी दी।
8: न्यायालय ने ये आदेश पारित किया कि 7 तारीख को एफिडेविट राज्य सरकार दाखिल करेगी और अगर राज्य सरकार दाखिल करेगी तो उसके बाद रिजॉइंडर का भी समय दिया जाएगा। राज्य सरकार ने अभी तक कोई एफिडेविट दाखिल नहीं किया है। इसे पता चलता है कि कहीं ना कहीं दोनों में इनडायरेक्ट वे में कनेक्शन है। जो नव नियुक्त सरकारी कर्मचारी है उनको हेल्प करने का काम राज्य सरकार कर रही है।
7: राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, सुधार करने और हटाने के लिए दावा आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि दूसरी बार बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी पात्र नागरिक ECI नेट पोर्टल या BLO के माध्यम से अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अन्नपूर्णा देवी ने सोशल मीडिया पर देशवासियों से 17 सितंबर को अपने घरों और प्रतिष्ठानों में आशीर्वाद का दिया जलाने का आग्रह किया है। यह विशेष अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनकी जनसेवा के 25 गौरवपूर्ण वर्षों के उत्सव के उपलक्ष्य में चलाया जा रहा है। उन्होंने सभी से प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना के लिए एक दिया जलाने की अपील की है।
9: सत्रह सितंबर की शाम हम सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ मिलकर आशीर्वाद का दिया जलाएंगे। यह दीप उन करोड़ों परिवारों के आभार और आशीष का प्रतीक होगा जिनके जीवन में संवेदनशील नीतियों ने नई आशा और नए विश्वास की रोशनी भर दी है। इस शुभ अवसर पर हम सभी मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री से उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और निरंतर राष्ट्रीय सेवा के लिए अपनी मंगल कामनाएं प्रकट करें।
7: राज्य के 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में संभावित परिसीमन को लेकर आदिवासी संगठनों ने गहरी चिंता जताई है। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की कि परिसीमन में केवल जनसंख्या को आधार न बनाकर CNT एक्ट, पेशा कानून और विस्थापन जैसे पहलुओं का ध्यान रखा जाए।
10: परिसीमन से संबंधित जो आशंकाएं हैं उन चीजों को महामहिम राज्यपाल को बता दिया गया। इसके साथ जो आदिवासियों का है इशू है, एक तो डेमोग्राफी से संबंधित मामला है, फिफ्थ शेड्यूल का मामला है, ट्राइबल सब प्लान का मामला है, ये तमाम बातों को विस्तार पर हम लोग दो अलग अलग पहलुओं पर हम लोगों ने बताया।
7: राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने राज्यपाल को पत्र लिख

0: में फर्जी डिग्री घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के गिरिडीह आगमन पर बगोदर में विधायक नागेंद्र महतो और धावाटांड में दीपक श्रीवास्तव के नेतृत्व में भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद उन्होंने पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी की दिवंगत पत्नी और दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार के आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और परिजनों को ढांढस बंधाया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने नियुक्तियों में धांधली के खिलाफ CBI जांच की मांग करते हुए सरकार पर CID जांच के जरिए लीपापोती करने का आरोप लगाया।
1: प्रश्न है व्यवस्था। अभय तिवारी जैसे लोग कैसे करोड़पति बने, इस सिंडिकेट को किसने बढ़ाया, किसने इसके पूरी व्यवस्था को इसकी मुट्ठी में दी। इसीलिए छात्र हमारे झारखंड के और भारतीय जनता पार्टी मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले का CBI से जांच।
0: कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा आज सिमडेगा के कोनमेरला और कहुपानी गांव में लाह प्रसंस्करण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें शामिल हुई विभागीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि किसान जागरूक होकर कृषि और पशुपालन के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बने।
2: 9 लाख का योजना हम लोग लाए हैं, 7 लाख उसमें सरकार देगी, आपको 2-2.5 लाख रुपया अपने तरफ से मिलाना है। जो लोग बड़े स्तर पे बकरी पालन करना चाहते हैं, सरकार उसको 100 बकरी और 5 बकरा दे देगी। तो ये तमाम चीजों का लाभ लेके अपना आय को बढ़ाने का काम करिए।
0: उन्होंने किसानों से सीधा संवाद कर कृषि उपकरणों और परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। इस मौके पर विधायक नमन विक्सल कुंगाड़ी ने भी किसानों को लाह उत्पादन से आय बढ़ाने के तरीके बताए। चतरा में ACB ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व कर्मचारी सतीश कुमार दास को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सदर अंचल के कर्मचारी भवन से हुई इस गिरफ्तारी के बाद टीम आरोपी को हजारीबाग ले गई। सतीश कुमार ने लेम पंचायत में जमीन म्यूटेशन के एवज में यह घूस मांगी थी। आज देश भर में राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जा रहा है। यह विशेष दिवस हर साल 15 सितंबर को भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक सरमोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देश के सभी इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। इधर जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में पहली बार इंजीनियर्स डे मनाया गया। कुलपति प्रोफेसर इला कुमार के निर्देशन में BCA विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में छात्राओं को तकनीकी सोच, नवाचार और आध्यात्मिक क्षमता विकसित करने की सलाह दी गई। मुख्य अतिथि NIT जमशेदपुर के डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद ने छात्राओं से तकनीक का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने और रचनात्मक सोच रखने का आह्वान किया। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने राज्य में 19 सितंबर तक वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 16.6 मिलीमीटर बारिश रांची के खलारी में दर्ज की गई। बिहार की राजधानी पटना में 22 से 24 सितंबर को होने वाली 37वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए झारखंड की 131 सदस्यीय टीम घोषित की गई है, जिसमें 69 बालक और 62 बालिकाएं शामिल हैं। संघ के सचिव SK पांडे ने बताया कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी अक्टूबर में चेन्नई में होने वाली नेशनल जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। JPSC और JSSC परीक्षा रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार। समय पर राज्य सरकार को 18 सितंबर तक जवाब का अंतिम निर्देश। राज्य में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावा आपत्ति की तारीख दूसरी बार बढ़ी। अब 30 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देशवासियों से की अपील, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को घरों में जलाएं आशीर्वाद का दिया। सिमडेगा में आयोजित लाह प्रसंस्करण कार्यशाला में शामिल हुई कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, किसानों के बीच परिसंपत्तियों का किया वितरण।

0: और पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए झारखंड की 131 सदस्यीय टीम घोषित। उम्दा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मिलेगा नेशनल का टिकट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: बहन, मेरा बबलू तो ठीक से खाता पीता ही नहीं है, बार बार बीमारियां उसे घेर लेती हैं। समझ ही नहीं आता क्या करूं, किससे सलाह लूं?
2: अरे बहन, 104 नंबर डायल कर, जहां पर तुझे बच्चों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित चिकित्सकों से उचित सलाह मिलेगी।
1: 104 नंबर, वो क्या है बहन?
2: 104 है झारखंड सरकार की स्वास्थ्य संबंधी हेल्पलाइन।
3: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: माँ, मुझे भी सब्जी दाल दो ना।
6: नहीं, तू ऐसे ही खा, इसे भैया को खाने दे।
7: अरे अरे, आप ये क्या कर रही हैं?
8: बढ़ती बच्ची, किशोरियों के साथ खान पान में भेदभाव ना करें।
7: किशोरावस्था में लड़कियों का विकास तेजी से होता है,
8: उनमें कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं,
7: माहवारी प्रारंभ होती है,
8: उन्हें अच्छा और उचित पोषक आहार की आवश्यकता होती है।
7: याद रखें, स्वस्थ बालिका ही भविष्य में स्वस्थ माँ बन सकती है।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
9: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे गोड्डा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गोड्डा संवाददाता।
1: 5 सितंबर को गोड्डा महिला कॉलेज ने अपना 43वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के श्रम नियोजन मंत्री संजय प्रसाद यादव ने शिरकत किया। उन्होंने कहा कि यहां कौशल विकास के कार्यक्रमों को चलाया जाएगा ताकि छात्राएं बेहतर करने का काम कर पाएगी। उन्होंने कॉलेज के शैक्षणिक रूप से बेहतर बनाने की बातों पर बल देते हुए कहा कि जेपीएससी एवं जेएसएससी में भारी गड़बड़ी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यभर में सीबीआई की जांच की मांग की जा रही है। राज्यभर में भारतीय जनता पार्टी आंदोलन चलाकर इस मांग को प्रमुखता से उठा रही है। गोड्डा में गत दिनों आंदोलन का रूपरेखा तैयार करते हुए करीब 1 किलोमीटर की रैली का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिपक्ष के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने शिरकत किया। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि उनकी मांग सीबीआई जांच से है। श्री मरांडी ने अपने संबोधन में कहा कि
2: हम आंदोलन करें तो सरकार को विवश कर, सरकार नहीं मानेगी तो फिर हम जनता की अदालत में क्रोध जा रहे हैं। हमारा काम है एक राजनीतिक पार्टी होने के, कि भाई सरकार गड़बड़ करती है तो हमें जनता के यहाँ तक उस मैसेज को हमें पहुँचानी है, और सरकार अगर समझ जाती है सीबीआई जांच को तो सौंप देती है तो अच्छी बात है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 तारीख को मनाया जाएगा। 17 सितंबर से आरंभ होगा जो 1 माह तक लगातार जारी रहेगा। इस आशय की जानकारी कार्यक्रम के दौरान गोड्डा के पूर्व विधायक सह प्रदेश प्रवक्ता अमित कुमार मंडल ने बताया कि 17 सितंबर को आशीर्वाद के दिए कार्यक्रम से यह कार्यक्रम होगा और यह लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि
3: वडनगर मोदी जी का जन्म स्थान है और वहाँ से हम लोग एक यात्रा शुरू करेंगे। बनारस मोदी जी का कर्म स्थान है, वहाँ तक जाएंगे और इसमें हम लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे ताकि एक संदेश जनता के बीच में जाए, दोनों जगहों पर स्टॉपेज करके ये यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। ये यात्रा झारखंड में आएगी लेकिन ये यात्रा गोड्डा नहीं आएगी, ये गुमला होते हुए फिर बनारस निकल जाएगी।
1: विघ्नहर्ता भगवान गणपति बप्पा का पूजन महोत्सव आरंभ है। 2-3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम को लेकर जिला से लेकर प्रखंडों तक विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गोड्डा के शहरी क्षेत्रों में कर्पूरी नगर में भी ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आने वाले 2 दिनों तक मटकापुर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में आयोजक हेमंत कुमार ने बताया कि
4: गणेश महोत्सव 5 साल से कंटिन्यू किया जा रहा है और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे द्वारा ही पूरा का प्रोग्राम किया जाता है और 17 तारीख को मटकापुर का आयोजन किया जाएगा।
1: हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित साहित्यिक संस्थान की ओर से कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर रहे राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हाजी इकरारुल हसन आलम ने कहा कि हिंदी की वृद्धि लगातार हो रही है और यह अब जनमानस की भाषा बन गई है। उन्होंने कहा कि
5: हिंदी लोगों के बीच एक ऐसा पुल और कड़ी का काम कर रही है कि हर तबके के लोग गर्व से हिंदी बोलते हैं, हिंदी हमारी पहचान बन गई है।
1: करबा पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्यौहार है। गोड्डा में कुरीवी महतो समाज की ओर से दहरे कर्म कार्यक्रम का 4थी बार आयोजन किया गया। नाचते गाते और झूमते हुए हजारों की संख्या में महिलाएं और युवाओं ने इस कार्यक्रम को बेहतर बनाया तथा अपनी संस्कृति का लोगों के बीच बड़ा संदेश देने का काम किया। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से नीरज किशोर।
0: अभी आप सुन रहे थे गोड्डा जिले की पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

अभी आप सुन रहे थे हमारे रांची केंद्र का प्रसारण। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। एक रंग सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। आइए सुनते हैं आज के एक रंग कार्यक्रम में एक ही फिल्म के गीत।

0: हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खुला आकाश के अंतर्गत कहानी। कहानीकार हैं राकेश कुमार।
1: वाणी डाल्टन के श्रोताओं को राकेश कुमार का नमस्कार। सुधी श्रोतागण, हम जानते हैं कि भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया। इस ऐतिहासिक दिन को स्मरणीय बनाने के लिए 1953 ईस्वी से हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह और हिंदी पखवाड़े का आयोजन होने लगा। लगभग 60 करोड़ भारतीयों की मातृभाषा हिंदी आज विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में अग्रणी है। आज विश्व के कोने कोने में फैले भारतीय अपनी मातृभाषा के प्रचार प्रसार में तन्मयता से लगे हुए हैं। सोशल मीडिया ने इस काम को और आसान बना दिया है। विभिन्न डिजिटल विधियों पर सिनेमा, संगीत और साहित्य के माध्यम से हिंदी निस्दिन समृद्ध हो रही है। देवभाषा संस्कृत की उपज हिंदी के वर्तमान स्वरूप को गढ़ने में साहित्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आदिकाल के सरहप्पा, गोरखनाथ, विद्यापति, चंदवरदाई जैसे कवियों ने इसका बीजारोपण किया, तो भक्तिकालीन संत भक्त कवियों तुलसी, सूर, कबीर, जायसी, मीरा, नानक, रहीम, रसखान, रैदास आदि ने इसे खूब सींचा। रीतिकाल में केशवदास, बिहारी, देव, पद्माकर, घनानंद आदि ने इसे पुष्पित पल्लवित किया, तो आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे नई ऊंचाई प्रदान की। प्रसाद, निराला, महादेवी और सुमित्रानंदन पंत सरीखे कवियों ने नई भावभूमि प्रदान की। प्रेमचंद और फणीश्वरनाथ रेणु जैसे कथाकारों, उपन्यासकारों ने हिंदी को घर घर पहुंचाया, तो रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन और जानकी वल्लभ शास्त्री जैसे लोकप्रिय कवियों ने इसे जन जन के हृदय में आरोपित किया। आज हिंदी के कवियों कवित्रियों को देश ही नहीं विदेशों में भी पूरे मान सम्मान के साथ बुलाया और सुना जा रहा है। हिंदी भाषा को जितना साहित्य ने प्रचारित प्रसारित किया, उतना ही इसे स्थापित करने में सिनेमा जगत का भी हाथ है। भारतीय ज्ञान परंपरा को हिंदी के माध्यम से घर घर तक पहुंचाने में प्रसार भारती के दूरदर्शन के लोकप्रिय कार्यक्रमों और आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रमों की भूमिका भी वंदनीय है। आइए हिंदी पखवाड़ा के इस पावन अवसर पर कुछ स्वरचित दोहे प्रस्तुत करता हूँ। भाषा के परिवार में, भाषा

रहे जड़मति नित्य सुजान, जड़मति नित्य सुजान। और अगला दोहा,

और हिंदी का मान सम्मान बढ़ाने के लिए हमें कुछ और करने की आवश्यकता है। आइए एक गीत प्रस्तुत करता हूँ, मान करें निज भाषा का। बनी हुई है सारे जग में, बनी हुई है सारे जग में हिंदी की पहचान। मान करें निज भाषा का यदि करना है उत्थान, मान करें निज भाषा का यदि करना है उत्थान। और अंतरा है कि अक्षर अक्षर ब्रह्म समाया कहते हैं यह वेद, अक्षर अक्षर ब्रह्म समाया कहते हैं यह वेद। शब्द शब्द के अर्थ अलग हैं, अर्थों के भी भेद। शब्द शब्द के अर्थ अलग हैं, अर्थों के भी भेद। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब में एक समान। मान करें निज भाषा का यदि करना है उत्थान, मान करें निज भाषा का यदि करना है उत्थान। हर भावों को व्यक्त करे जो देकर अनुपम अर्थ, हर भावों को व्यक्त करे जो देकर अनुपम अर्थ। सागर सी गहराई इसमें दिनकर सा सामर्थ, सागर सी गहराई इसमें दिनकर सा सामर्थ। और सादगी ऐसी जैसे, और सादगी ऐसी जैसे बच्चे की मुस्कान। मान करें निज भाषा का यदि करना है उत्थान, मान करें निज भाषा का यदि करना है उत्थान। सारा भारत एक सूत्र में बंध कर बोले आज, सारा भारत एक सूत्र में बंध कर बोले आज। जन जन की भाषा है हिंदी फिर भी करे नाराज, जन जन की भाषा है हिंदी फिर भी करे नाराज। क्या कारण है अपने घर में, क्या कारण है अपने घर में ही लगती अनजान। मान करें निज भाषा का यदि करना है उत्थान। और इस गीत का आखिरी अंतरा कि निज भाषा निज जननी जैसी सकल सुखों की धाम, निज भाषा निज जननी जैसी सकल सुखों की धाम। जिस

के कारण बन जाते हैं सारे बिगड़े काम, जिसके कारण बन जाते हैं सारे बिगड़े काम। अपने नभ में मन का पंछी, अपने नभ में मन का पंछी, जी भर भरे उड़ान, मान करें निज भाषा का यदि करना है उत्थान। बनी हुई है सारे जग में, बनी हुई है सारे जग में हिंदी की पहचान, मान करें निज भाषा का यदि करना है उत्थान। मान करें निज भाषा का यदि करना है उत्थान। हम अपने देश भारत को भी भारती कहते हैं और भारत की भाषा हिंदी को भी भारती कहते हैं और विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को भी भारती कहते हैं। तो आइए माँ भारती के चरणों में एक आरती निवेदित करता हूँ कि भारती माँ भारती, माँ भारती माँ भारती, यह अकिंचन करे रहा माता तुम्हारी आरती, यह अकिंचन करे रहा माता तुम्हारी आरती। जीत

के वश हो सदा सद्भाव पर सब वारती, यह अकिंचन कर रहा माता तुम्हारी आरती, यह अकिंचन कर रहा माता तुम्हारी आरती। और अगला अंतरा कि तुम सदा कहती रही परिवार है सारा जहां, तुम सदा कहती रही परिवार है सारा जहां, जो चला आया उसे सर आंख पर रखा यहां, जो चला आया उसे सर आंख पर रखा यहां, गोद में जननी सदा ही, गोद में जननी सदा ही तुम सभी को धारती, यह अकिंचन कर रहा माता तुम्हारी आरती, यह अकिंचन कर रहा माता तुम्हारी आरती। और इस गीत का अंतिम अंतरा सत्य पथ पर पग चले मन में यही है कामना, सत्य पथ पर पग चले मन में यही है कामना, सच अहिंसा से करें हम दुश्मनों का सामना, सच अहिंसा से करें हम दुश्मनों का सामना, सामने कोई रहे, सामने कोई रहे हरगिज नहीं तू हारती, यह अकिंचन करे।

करती यह अकिंचन कर रहा माता तुम्हारी आरती, यह अकिंचन कर रहा माता तुम्हारी आरती। और अपने देश और अपनी भाषा की राह में केवल समस्याएं ही नहीं हैं, बहुत सी सफलताएं भी हैं। और आइए इस सफलता के नाम एक गीत पढ़ता हूँ भारत के उत्थान को, कि देख चकित है दुनिया सारी, देख चकित है दुनिया सारी भारत के उत्थान को। आसमान में उड़ने वाले सफल चंद्रमायान को, आसमान में उड़ने वाले सफल चंद्रमायान को। और अंतरा, कि कभी विदेशों में भारत को याचक समझा जाता था, कभी विदेशों में भारत को या

चक समझा जाता था, नतमस्तक रहते थे उसके जो बाहर से आता था, नतमस्तक रहते थे उसके जो बाहर से आता था। भूल गए थे हम तो स्वर्णिम, भूल गए थे हम तो स्वर्णिम, भारत की पहचान को देख चकित है दुनिया सारी, भारत के उत्थान को देख चकित है दुनिया सारी, भारत के उत्थान को। और अंतरा की युद्ध खे

आता अब दुनिया में भारत को है इज्जत से देखा जाता, अब दुनिया में भारत को है इज्जत से देखा जाता। हमें बढ़ाना है मिलजुल कर, हमें बढ़ाना है मिलजुल कर, हर दम इस किसान को देख चकित है दुनिया सारी भारत के उत्थान को। और अंतिम अंतरा है कि सभी सुखी हों सभी स्वस्थ हों, भारत का यह नारा है। सभी सुखी हों सभी स्वस्थ हों, भारत का यह नारा है। अन्यायी हैं दुश्मन अपने, न्यायी मित्र हमारा है। अन्यायी हैं दुश्मन अपने, न्यायी मित्र हमारा है। आमदनी है समझी जाती, आमदनी है समझी जाती, सबसे बढ़कर दान को देख चकित है दुनिया सारी भारत के उत्थान को। आसमान में उड़ने वाले सफल चंद्रमायान को देख चकित है दुनिया सारी भारत के उत्थान को। बहुत बहुत धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे काव्य पाठ, कार्यक्रम था खुला आकाश। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से।

0: फिल्म संगीत के कार्यक्रम चित्रपट से में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली पेशकश। फिल्म का नाम है सिलसिला।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

0: यूं ही साथ साथ चलते।
1: मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर।

0: बुरी मती, बुरी मती।
1: But where is Bhanumati?
2: Bhanumati? अरे भान

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन। हम आकाशवाणी के क्षमा करेंगे, फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत ने कहा, चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने कहा, खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया, लोगों से व्यापारियों को 2,000 रूपए से अधिक के यूपीआई लेन देन पर लगने वाला 0.4% शुल्क व्यापारियों पर लगेगा। लोगों के बीच होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की और दिल्ली में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और 3 पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग द्विपक्षीय साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने कहा कि दोनों देश परमाणु क्षेत्र में भी लंबे समय से सहयोग कर रहे हैं। सम्मेलन से अलग विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सऊदी अरब के विदेश मंत्री की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों पक्षों ने हौसी विद्रोहियों के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। भारत ने सऊदी अरब पर हाल के हौसी हमले की निंदा की। भारत लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती स्थिति से बेहद चिंतित है। श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
1: 50 के लगभग आउटकम्स हैं अलग अलग क्षेत्रों में और ये सब विकास आधारित आउटकम्स हैं और इन सभी पे लोगों के लिए अवसर पैदा होंगे। जब अर्बन मोबिलिटी की बात कही है, वहाँ भी हमारे देश में कई एक और ब्रिक्स देश में ई मोबिलिटी पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफी काम हो रहा है। तो ब्रिक्स देश आपस में अपने अपने उनके जो उनका एक्सपीरियंस है उसको साझा कर सकते हैं और फिर ये एक प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव पर लोगों को अब ध्यान देना है और उसको देखना है किस प्रकार से इसको आगे ले जाया जाए।
0: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
1: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
0: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योगों के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार्स तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन्स तक, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटी साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता।
0: देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पानी से जुड़ा ये 10वां विवाद है जो अब सुलझने वाला है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस समझौते का स्वागत किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक समझौता है।
3: आज एक बहुत बड़ा समझौता 6 राज्यों के बीच में हुआ है, जिसका फायदा सिंचाई का भी होगा, पीने के पानी का भी होगा, पर्यावरण की दृष्टि से भी होगा। ये समझौता आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार देश के अंदर जल बंटवारे को लेकर के लंबित इन प्रकरणों का समाधान हो रहा है।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के प्रयासों से ये समझौता संभव हो पाया है।
4: किसाऊ परियोजना हस्ताक्षर हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की पहल और सक्रिय प्रयासों से ही कई वर्षों से लंबित इस विषय पर राज्यों के बीच आज सहमति बनाने का रास्ता साफ हुआ है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच यूपीआई से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए ₹2000 तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। ₹2000 से ज्यादा के व्यक्ति से व्यवसायी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि ₹75,000 और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए MDR की सीमा ₹300 प्रति लेन देन होगी। मंत्रालय ने बैंकों को ये सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यवसायी या कारोबारी का ये शुल्क UPI से भुगतान करने वाले ग्राहकों पर न लगाएं। देश के माल निर्यात में इस वर्ष अगस्त में 26.12% की वृद्धि दर्ज की गई है और ये $43.81 अरब तक पहुंच गया। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में उछाल से माल निर्यात में ये वृद्धि दर्ज हुई है। सोने के आयात में गिरावट से व्यापार घाटा कम होकर 5 महीने के निचले स्तर $26.86 अरब पर आ गया। जून 2022 के बाद इस वर्ष अगस्त माह में निर्यात वृद्धि सबसे अधिक 30.12% रही। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैव E3 नीति और जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत पादप और मानव जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में एक साथ प्रगति देख रहा है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी को ऐसी तकनीकों में परिवर्तित किया जाना चाहिए जो कृषि संबंधी वास्तविक चुनौतियों का समाधान कर सकें और किसानों को लाभ पहुंचा सकें। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा है कि खेलों में प्रगति राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मिजोरम में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्रीमती खड़से ने ये बात कही।
7: We need to develop sports infrastructure.
8: हमें खेलों के बुनियादी ढांचे के साथ साथ युवाओं के विकास पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे युवा ही विकसित भारत का भविष्य है। केंद्र सरकार लगातार राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं।
7: यूथ फॉर्मेशन बिल्डिंग।
0: अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आज राजस्थान के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। 16 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से ये स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। नई दिल्ली में जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने कहा कि इन विद्यालयों के विद्यार्थी IIT और नीट प्रवेश परीक्षा में बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं।
9: इस साल जितने भी हमारे 500 से ऊपर स्कूल हमारे ऑपरेशनल हैं, उनमें से 450 से अधिक बच्चे IIT JEE एडवांस क्वालिफाई किए हैं और 350 से अधिक बच्चे नीट करे हैं। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो बच्चे एडवांस क्लियर करे हैं और नीट क्लियर करे हैं, वो जरूर किसी न किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
10: आपको हर खबर से रखें अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में आज मक्का, जेद्दा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए हैं। यमन में नए सिरे से शुरू हुई इस लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका की सराहना की है। श्री ग्रीन ने क्वाड संगठन की बढ़ती सक्रियता पर बल दिया। श्री ग्रीन ने भारत के राजनयिक नेतृत्व, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की भूमिका की प्रशंसा की। भारत ने एचआईवी एड्स के उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सहायता के लिए आज बोत्सवाना को 10 टन एंटी रेट्रोवायरल दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि इससे भारत के ग्लोबल साउथ साझेदारों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने की देश की प्रतिबद्धता का पता चलता है। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना गलत ट्रेड प्रैक्टिस, गलत अनुबंध और डार्क पैटर्न के लिए लगाया गया है। इसमें राइड कंफर्म होने से पहले राइडर्स से ज्यादा पैसे लेने के लिए कहा जाता था। केरलम के बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने कहा है कि राज्य में बिजली की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार उच्च दरों पर बिजली खरीदने पर विचार कर रही है। उन्होंने बिजली कटौती की समस्या के तुरंत समाधान का भरोसा दिलाया। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता वी मुरलीधरन ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बिजली कटौती से जनता त्रस्त है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
11: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 74,004 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 23,119 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 41 पैसे कमजोर होकर 95.96 रुपए पर बंद हुआ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नुआखाई के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये पर्व किसान, फसल और भाईचारे का उत्सव है और ये सद्भाव की भावना को मजबूत करता है। ओडिशा के प्रमुख पर्व नुआखाई का अर्थ है नया खाना। इसे धान की नई फसल आने पर मनाया जाता है। दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 148 रन बना लिए हैं। पहले मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही खेला जाएगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल के हिमालय क्षेत्र, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में गरज चमक और तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम समेत पूर्वोत्तर भारत में भी कल तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने कहा खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया लोगों से व्यापारियों को 2,000 रुपए से अधिक के UPI लेन देन पर लगने वाला 0.4% शुल्क व्यापारियों पर लगेगा। लोगों के बीच होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हौसी हमले के अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की और दिल्ली में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. New Delhi says core concerns of India-China relations should be guided by mutual respect, interest and sensitivity. India says targeting of commercial ships and seafarers in Gulf region is unacceptable, expresses concern on escalating situation in Red Sea. Finance Ministry clarifies charges of 0.4% to be levied on person-to-merchant UPI transactions above 2,000 rupee will be paid by merchants. No charges on person-to-person transactions. Saudi Arabia activates warning in Mecca amid Houthi attack speculations. And in men's cricket, second T20 international between hosts Afghanistan and India underway in Delhi. And now the news in detail. The Ministry of External Affairs has said several issues were discussed during the meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently. Addressing media in New Delhi this evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns.
1: Several issues came up during the discussions. Prime Minister referred to Indian concerns as well and underlined those that both sides should show sensitivity to each other's core concerns and be guided by the three mutuals, mutual respect, mutual interest and mutual sensitivity.
12: The spokesperson said External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with the Saudi Foreign Minister on the sidelines of the BRICS summit. During the meeting, they discussed regional and international developments. Mr. Jaiswal said that the issue of the Houthis was also discussed. There was recently an attack on Saudi Arabia, which India has condemned. Mr. Jaiswal said New Delhi is deeply concerned with the escalation in the situation in the Red Sea region.
1: We are deeply concerned with the escalation in the situation that we see in the Red Sea region. We have condemned the attack on the Saudi sovereign territory, including on civilian infrastructure and economic assets. Such attacks, they undermine regional stability and threaten freedom of navigation through the Bab el-Mandeb. These are unacceptable to us. We hope that there is early restoration of peace and stability in the region. Having said that, let me say that we continue to receive energy supplies from that part of the world.
12: On the attack on commercial vessel MTL Gaia off the coast of Oman, Mr. Jaiswal said targeting commercial shipping, seafarers, civilians and civilian infrastructure in the region is unacceptable to India. When asked about the reward of 70 lakh Pakistani rupees announced by Pakistan on Jaish-e-Mohammed chief Masood Azhar, the spokesperson said such gimmicks and attempts at hoodwinking by Pakistan are not new. He said Pakistan must take concrete action rather than making announcements that are ultimately of no consequence. In Saudi Arabia, civil defense activated emergency alerts in Mecca, Jeddah and Taif today. Alerts had also been issued and lifted in six cities, including Yanbu, Saudi Arabia's main Red Sea oil port. More from our West Asia correspondent.
13: Saudi Arabia today issued fresh emergency alerts in Makkah, Jeddah and Taif in the context of potential Houthi attacks. The alerts were lifted in just a few minutes, with authorities saying the danger had passed. Alerts were earlier issued and lifted also for the city of Yanbu, the main Saudi Red Sea oil port. Monday's Houthi attacks on Khamis Mushayt, Aba and Taif had injured 13 civilians and damaged homes and vehicles in Saudi Arabia. The Saudi-led coalition has promised a firm response and retaliation. In the Strait of Hormuz, UK MTO reported another vessel being hit on Monday. The daily commercial ship traffic through the strategic waterway fell to just 4 on Monday compared to 10 a day earlier. From Dubai, Manish Shiva for Akashwani News.
12: Meanwhile, a Houthi official today claimed that Saudi warplanes struck Taiz province of Yemen, killing three people, while Human Rights Watch accused the Houthi rebels of possible war crimes with its attacks on commercial vessels. The renewed fighting in Yemen is endangering civilians and threatening shipping through the Red Sea, a route that has become more important due to disruptions in the Strait of Hormuz. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today laid emphasis on India's strong commitment to multipolarity, which emanates from independent stance and belief in strategic autonomy. Delivering the valedictory address of Silver Jubilee celebration of Indian Council of World Affairs in Delhi, Dr. Jaishankar expressed confidence that India is destined to rise in a turbulent world. He underscored the contemporary trends shaping

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
1: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, तो मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गीतकार की जो विज्ञापनों की दुनिया से फिल्मों की दुनिया में आया और जिसके गाने सुनना आपको

जी हाँ, आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें कर रहे हैं एक ऐसे गीतकार की जिसके शब्दों में लालित्य है, कविता है और है जज्बात का समंदर।

प्रसून जोशी का जन्म 16 सितंबर 1971 को हुआ था। बचपन से ही उन्हें लिखने पढ़ने का शौक रहा और आगे चलकर उन्होंने दिल्ली के एक संस्थान से एमबीए किया। आगे चलकर वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करने लगे। लिखने का शौक तब भी जारी रहा और उनकी कॉपीराइटिंग में लिखने का वो शौक झलकता रहा। तब तक प्रसून जोशी की किताब भी छप चुकी थी। इस किताब का नाम था मैं और वो। जब ये किताब छपकर आई तब प्रसून की उम्र केवल 17 साल थी। कई बरस तक प्रसून एडवर्टाइजिंग की दुनिया में सक्रिय रहे। उसके बाद उन्होंने गायिका शुभा मुद्गल के लिए कुछ एल्बम के गीत भी लिखे। फिल्मों में उनका पहला कदम था फिल्म लज्जा के जरिए। राजकुमार संतोषी की इस फिल्म के कुछ गाने प्रसून जोशी ने लिखे थे। इसके बाद उन्हें यश चोपड़ा प्रोडक्शंस की फिल्म हम तुम में गाने लिखने का मौका मिला। हम तुम के गाने बहुत चले।

इसके बाद तो जैसे मुंबई फिल्म जगत में प्रसून जोशी के कदम जम गए। उन्होंने फिल्म फना के लिए भी गाने लिखे और इस फिल्म के सारे गाने बेहद लोकप्रिय हुए। प्रसून जोशी की सबसे बड़ी खासियत है वो जिंदगी के बहुत मामूली से जज्बात को पकड़ते हैं और अपने शब्दों के जरिए उसे एक खास रंग दे देते हैं। उनके गीत दिल को छू जाते हैं। फिल्म फना का ये देशभक्ति गीत सुनिए। ये उस दौर का गाना है जबकि देशभक्ति के बहुत नगमे नहीं आ रहे थे। नई फिल्मों में ऐसे गानों की जगह ही कहां बनती है, पर प्रसून जोशी ने अपनी कलम के जादू से इस गाने को अनमोल बना दिया।

प्रसून जोशी ने इसके बाद फिल्म रंग दे बसंती की पटकथा भी लिखी और इस फिल्म के गीत भी रचे। रंग दे बसंती अपनी तरह की एक अनमोल फिल्म थी, सबसे अलग, और इस फिल्म का असर भी बड़ा गहरा था। जरा इस फिल्म का ये गाना सुनिए जो आपके दिल की गहराई तक उतर जाएगा।

0: आमिर खान की फिल्म तारे जमीन पर जब बनी तो इसके गाने लिखने की जिम्मेदारी मिली प्रसून जोशी को, और इस फिल्म के लिए प्रसून जोशी ने कुछ अलग ही गीतकारी की।
1: खोलो खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे, खूटे से बंदी है हवा मिलके छोड़ाओ सारे,

इस फिल्म के इस गाने के लिए प्रसून जोशी को मिला सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार। आपको बता दें कि प्रसून जोशी कुल 2 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल कर चुके हैं। तारे जमीन पर के अलावा फिल्म चिटगांव के एक गाने के लिए भी उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था।

जुलाई 2013 में आई फिल्म भाग मिल्खा भाग, इस फिल्म की कथा, पटकथा, संवाद और गीत प्रसून जोशी ने लिखे थे। इस फिल्म का ये गाना सुनिए जो फिल्म का शीर्षक गीत तो है ही, साथ ही इस गाने में प्रसून जोशी ने फिल्म के पूरे मर्म को समेट दिया है।

इस फिल्म में ये मौज मस्ती भरा गाना भी प्रसून जोशी ने लिखा, जो शायद फौजी बैरकों में मौज मस्ती का सबब बन चुका है।

आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रसून जोशी के कुछ अनमोल नगमे। साल 2009 में आई फिल्म लंदन ड्रीम्स का ये गाना जो एक प्रयोग था, और ये प्रयोग बड़ा कामयाब रहा।

जैसा कि हमने आपको बताया, प्रसून जोशी ने गायिका शुभा मुद्गल के कुछ एल्बम्स के लिए नगमे भी लिखे। अब के सावन एल्बम का ये शीर्षक गीत सुनिए।

0: लगता है।
1: प्रसून जोशी का रचना कर्म अभी भी जारी है और उनके चाहने वाले उनसे नित नए नगमों की उम्मीद करते रहते हैं। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गीतकार प्रसून जोशी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती का प्रसारण हमारे मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। रजनीगंधा सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। आइए सुनते हैं चुनिंदा फिल्मी।

0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइला हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। हुती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में आज मक्का, जेदा और तर्फ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हुती विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपए तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यवसाय लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपए और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइलों से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटी साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
0: भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है, जो 19 सितंबर तक चलेगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के 32 पीठासीन अधिकारी और 18 सचिव भी शामिल हैं, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज 17वीं सदी के कवि संत मकुलदास महाराज की स्मृति में भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट का विमोचन किया। श्री सिंधिया ने संत मलुकदास को आध्यात्मिक शक्ति का वाहक बताया और देश में मुश्किल दौर में भी सनातन धर्म की मूल भावना को बनाए रखने में उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि गहरा सांस्कृतिक आत्मविश्वास भी है, जो दूसरे देशों से उसे अलग बनाता है। दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारत ने 14 ओवर और 5 गेंद में 3 विकेट खोकर 163 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।